महेंद्र कपूर और साथियों के स्वर में अभी आपने सुना ये माँ खप्पर वाली की आरती। और अब लीजिए सुनिए मन्ना डे, लक्ष्मी शंकर और साथियों के स्वर में माँ लक्ष्मी की आरती।

0: माँ लक्ष्मी की आरती के साथ ही आज का भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना अब यहीं समाप्त होता है। प्रातः के 6:30 हुए हैं। अब लीजिए सुनिए कार्यक्रम विचार बिंदु में आज का आलेख। विषय है स्वार्थ। संकलन और वाचन स्वर है प्रियंका सिंह का।
1: मनुष्य को सामाजिक प्राणी कहा जाता है। वह अकेले नहीं बल्कि परिवार, मित्रों, पड़ोसियों और समाज के साथ मिलकर जीवन व्यतीत करता है। यही कारण है कि उसके विचार, व्यवहार और निर्णय केवल उसके अपने जीवन को ही नहीं बल्कि दूसरों के जीवन को भी प्रभावित करते हैं। ऐसे में जब कोई व्यक्ति केवल अपने लाभ, सुख और स्वार्थ के बारे में सोचता है तथा दूसरों की भावनाओं और आवश्यकताओं की अनदेखी करता है तो उसे स्वार्थी कहा जाता है। स्वार्थ शब्द अपने आप में पूरी तरह नकारात्मक नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन को बेहतर बनाने, अपने परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करने और अपने भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए प्रयास करता है। यह एक स्वाभाविक मानवीय प्रवृत्ति है। लेकिन जब यह भावना संतुलन खो देती है और व्यक्ति केवल अपने हित को ही सर्वोपरि मानने लगता है तब स्वार्थ एक दोष बन जाता है। ऐसी स्थिति में वह दूसरों के दुख, संघर्ष और अधिकारों के प्रति संवेदनहीन हो जाता है। स्वार्थी व्यक्ति का दृष्टिकोण सीमित होता है। वह हर संबंध और हर अवसर में अपना लाभ तलाशता है। उसके लिए रिश्तों का मूल्य भावनाओं से नहीं बल्कि मिलने वाले फायदे से तय होता है। जब तक उसे किसी से लाभ मिलता है वह उस व्यक्ति के साथ अच्छा व्यवहार करता है। लेकिन जैसे ही उसका स्वार्थ पूरा हो जाता है उसका व्यवहार बदल जाता है। इसलिए स्वार्थ पर आधारित संबंध अधिक समय तक टिक नहीं पाते। उनमें विश्वास और आत्मीयता का अभाव होता है। आज के आधुनिक युग में स्वार्थ की भावना पहले की अपेक्षा अधिक दिखाई देती है। तेजी से बदलती जीवन शैली, बढ़ती प्रतिस्पर्धा और सफलता की अंधी दौड़ ने लोगों को अपने लक्ष्यों तक सीमित कर दिया है। धन, पद और प्रतिष्ठा प्राप्त करने की चाह में कई बार लोग मानवीय मूल्यों को भूल जाते हैं। वे अपने कार्यों और महत्वाकांक्षाओं में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि परिवार, मित्रों और समाज के लिए समय निकालना कठिन हो जाता है। परिणाम स्वरूप रिश्तों में दूरियां बढ़ने लगती हैं और भावनात्मक जुड़ाव कमजोर पड़ जाता है। स्वार्थ का प्रभाव केवल व्यक्तिगत जीवन तक सीमित नहीं रहता बल्कि पूरे समाज पर पड़ता है। जब समाज में स्वार्थ बढ़ता है तब सहयोग, विश्वास और भाईचारे की भावना कम होने लगती है। लोग एक दूसरे की मदद करने की बजाय केवल अपने हितों की चिंता करने लगते हैं। इससे सामाजिक समरसता प्रभावित होती है और आपसी विश्वास कमजोर पड़ता है। किसी भी समाज की प्रगति उसके नागरिकों के सहयोग, एकता और संवेदनशीलता पर निर्भर करती है। यदि ये गुण समाप्त होने लगे तो समाज में असंतोष और विभाजन की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इसके विपरीत निस्वार्थता मनुष्य को महान बनाती है। जो व्यक्ति बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की सहायता करता है, उनके सुख दुख में सहभागी बनता है और समाज के कल्याण के लिए कार्य करता है वह लोगों के दिलों में विशेष स्थान प्राप्त करता है।

0: इतिहास और वर्तमान दोनों ऐसे उदाहरणों से भरे पड़े हैं जहां लोगों ने अपने व्यक्तिगत हितों से ऊपर उठकर मानवता की सेवा की और समाज के लिए प्रेरणा बन गए। ऐसे लोगों को सम्मान, प्रेम और विश्वास सहज रूप से प्राप्त होता है। हमें यह समझना चाहिए कि जीवन केवल अपने लिए जीने का नाम नहीं है। हमारी छोटी छोटी मदद, एक मधुर शब्द, किसी जरूरतमंद का साथ या किसी दुखी व्यक्ति के प्रति संवेदना उसके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकती है। यदि हम अपने हितों के साथ साथ दूसरों के हितों का भी ध्यान रखें तो हमारा समाज अधिक संवेदनशील, मानवीय और खुशहाल बन सकता है। परिवार और शिक्षा संस्थानों की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। बच्चों को बचपन से ही सहयोग, सहानुभूति, सेवा और साझा करने के संस्कार दिए जाने चाहिए। जब नई पीढ़ी इन मूल्यों को अपनाएगी तब स्वार्थ की जगह परोपकार और मानवता की भावना विकसित होगी। स्वार्थ व्यक्ति की सोच को सीमित कर देता है जबकि निस्वार्थता उसके व्यक्तित्व को विशाल बनाती है। हमें अपने जीवन में ऐसा संतुलन बनाना चाहिए जिसमें अपने विकास के साथ साथ दूसरों की भलाई का भी ध्यान रखा जाए। जब हम केवल मैं तक सीमित न रहकर हम की भावना को अपनाते हैं तभी सच्चे अर्थों में एक बेहतर समाज और उज्जवल भविष्य का निर्माण संभव होता है।
1: कार्यक्रम विचार बिंदु में अभी आप सुन रहे थे स्वार्थ विषय पर आलेख। संकलन और वाचन स्वर था प्रियंका सिंह का। प्रातः के 6:35 हुए हैं। अब प्रस्तुत है गोस्वामी तुलसीदास कृत रामचरितमानस का गायन। मुख्य गायन स्वर है शिप्रा बोस और रामकिशन चंदेश्री के और संगीत संयोजक हैं सतीश भाटिया।
2: एपिसोड 105 105।

विधि के विधान के अनुसार श्री राम तथा जानकी का विवाह शिव के धनुष के अधीन था, जो उसके टूटते ही संपन्न हो गया। किंतु लोकाचार का अपना ही महत्व होता है। प्रत्येक कुल की अपनी मर्यादा तथा परंपरा होती है, जिसका परिपालन ऐसे शुभ अवसरों पर ही होता है। अतः वेदों में वर्णित तथा राज पुरोहितों द्वारा अनुशंसित आचार के लिए राजा जनक ने महाराज दशरथ के पास शुभ संदेश लेकर अपने दूत भेजे। संदेशवाहक पत्र लेकर श्रीराम की पवित्र नगरी अयोध्या पहुंचे। पाती बांचते हुए महाराज दशरथ का हृदय पुलकित हुआ और नैनों में आनंद के आंसू छलक आए। जनकपुरी से आए दूतों का समाचार सुन मित्र मंडली के साथ खेलते हुए भरत तथा शत्रुघ्न दौड़े आए। अपने प्राणों से भी प्रिय भाइयों श्री राम तथा लक्ष्मण का कुशल क्षेम जानने के लिए। जब से ऋषि विश्वामित्र के साथ राजा दशरथ के दो पुत्र ऋषि मुनियों की यज्ञ रक्षा के लिए गए थे, तब से आज पहली बार उन दो किशोरों के कुशल क्षेम का समाचार मिला था। दूतों ने धनुष यज्ञ में श्री राम के पराक्रम की कथा सुनाई, जिसे सुनकर सभी गदगद हो गए।

0: गोस्वामी तुलसीदास कृत रामचरितमानस का गायन अभी आप सुन रहे थे। मुख्य गायन स्वर थे शिप्रा बोस और रामकिशन चंदेश्री के, और संगीत संयोजक थे सतीश भाटिया। प्रातः के 6:45 हुए हैं। अब लीजिए सुनिए कार्यक्रम खेती की बात में सामयिक सुझाव। जानकारी का विषय है खरीफ में उड़द की खेती।
1: किसान भाइयों, खेती की बात में आज हम चर्चा करेंगे खरीफ में उड़द की खेती विषय पर। उड़द महत्वपूर्ण खरीफ की दलहनी फसल है। दलहनी फसल होने के कारण इसकी जड़ों में बनने वाली गांठों में उपस्थिति जीवाणु वायुमंडलीय नत्रजन को भूमि में स्थिर करके भूमि को उपजाऊ बनाती है। इस प्रकार यह फसल भूमि की उर्वरा शक्ति को बनाए रखने में भी सहायक है। उड़द में 25% प्रोटीन और प्रचुर मात्रा में फास्फोरिक अम्ल पाया जाता है। इस फसल का चारा पशुओं में दूध की मात्रा बढ़ाता है। भूमि का चुनाव। किसान भाइयों, हल्की रेतीली दोमट या मध्यम प्रकार की भूमि जिसका पीएच मान 7 से 8 के मध्य हो और पानी का निकास की समुचित व्यवस्था हो उड़द के लिए उपयुक्त है। बीज की मात्रा और उपचार 10 से 15 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर के मान से उपयोग करना चाहिए। बीज के लिए थायरम वेवस्टीन 2:1 की 3 ग्राम मात्रा द्वारा उपचारित करके बोना चाहिए। साथ ही राइजोवियम से भी उपचार करना चाहिए। बुआई का समय। किसान भाइयों, जून अंतिम सप्ताह या जुलाई प्रथम सप्ताह तक मानसून आने पर बुआई करना चाहिए। कतार से कतार की दूरी 30 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 10 सेंटीमीटर रखना चाहिए। साथ ही ध्यान रखना चाहिए कि बीज 1.5 से 2 इंच गहराई पर ही बोया जाए। खाद और उर्वरक। किसान भाइयों, खरीफ में उड़द की अच्छी खेती करने के लिए मृदा परीक्षण के बाद खाद और उर्वरक की सुझाई गई मात्रा का उपयोग करना चाहिए। उड़द के लिए विस्फूर की आवश्यकता होती है जिसकी पूर्ति 100 किलोग्राम डीएपी प्रति हेक्टेयर के मान से बोते समय कतारों में बीज के ठीक नीचे डालना चाहिए। सिंचाई। फूल फल बनने की अवस्था पर यदि खेत में नमी न हो तो एक सिंचाई कर देनी चाहिए। खरपतवार नियंत्रण। किसान भाइयों, फसल और खरपतवार की प्रतिस्पर्धा की अंतिम अवधि बुआई के 15 से 30 दिनों तक रहती है। इस बीच निंदाई करने का डोरा चलाने से खरपतवार नष्ट हो जाता है। साथ ही भूमि में वायु का संचार भी होता है जिससे पौधों की ग्रंथियों में क्रियाशील जीवाणुओं और वायुमंडलीय नत्रजन एकत्रित करने में सहायता मिलती है। निंदा नियंत्रण समय पर न करने से फसल की उपज में 20 से 50% तक की कमी देखी गई है। रासायनिक नियंत्रण के लिए खेत

0: तैयार करते समय बोने से पहले पड़ी मेथालीन 3 लीटर या एलाक्लीर 2 लीटर या फिर आक्सा डाइजान 4 लीटर को 500 लीटर पानी में मिलाकर बोने के बाद और अंकुरण से पूर्ण भूमि में फ्लेयर फैन नोजल युक्त पंप से मिलाना चाहिए। कीट नियंत्रण। किसान भाइयों, उड़द की फसल में फली वोटिन नामक कीट का प्रकोप अधिक होता है। इस कीट की इल्लियां बीज पत्र और छोटे पौधों की पत्तियों में छेद करते हुए खाते हैं, जिससे पत्तियों पर छेद ही छेद दिखाई देते हैं। नियंत्रण के लिए मिथाइल पैराथियन चूर्ण या क्लोरोपाइरीफास चूर्ण की 20 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर के मान से सुबह या शाम समय भुरकाव करना चाहिए। इसके अलावा माहू और सफेद मक्खी नामक रस चूसक कीटों का प्रकोप भी होता है। यह कीट पौधों के विभिन्न भागों जैसे पत्तियों, कोमल टहनियों, फूलों और कलियों का रस चूसते हैं, जिससे पौधे कमजोर हो जाते हैं। उनमें कलियों की संख्या कम बनती है। नियंत्रण के लिए ऑक्सी डिमेटान मिलाइल डाइमेथिएट की 300 मिलीलीटर 200 लीटर पानी में मिलाकर प्रति एकड़ की दर से छिड़काव करना चाहिए। रोग नियंत्रण। पीत सीरा रोग। उड़द की फसल में पीत सीरा रोग का प्रकोप प्रमुखता से होता है। रोग के लक्षण बुआई के 4 से 5 सप्ताह बाद दिखने लगते हैं। सबसे पहले पत्तियों पर गोलाकार पीले रंग के धब्बे दाने के आकार के बनते हैं, जो धीरे धीरे बढ़कर हरे पीले से चकत्तों के रूप में बदल जाते हैं और धीरे धीरे पूरी पत्ती पीली पड़कर सूख जाती है। रोग के नियंत्रण के लिए रोग प्रतिरोधी प्रजातियों का प्रयोग करना चाहिए और अगर नियंत्रण नहीं होता है तो ऐसी स्थिति में खड़ी फसल में नियंत्रण के लिए ऑक्सीमिथाइल डिमेटान या डाइमेथिएट 30 की 400 मिलीलीटर मात्रा को 200 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करना चाहिए। किसान भाइयों, इस तरह से कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर खरीफ में हम उड़द की खेती करके अधिक मात्रा में लाभ कमा सकते हैं।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेती की बात में सामयिक सुझाव। जानकारी का विषय था खरीफ में उड़द की खेती। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। प्रातः के 6:50 हुए हैं। अब हम आपको बता दें हमारे केंद्र से आज प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में रूपरेखा।

सुबह 7 बजे लोक गीतों के कार्यक्रम गूंजे जंगल में आप सुनिएगा कल साय राजवाड़े और साथी साधु राम और साथियों के स्वर में सरगुजिया लोक गीत, मानमती बड़ा और साथियों के स्वर में सादरी लोक गीत। सुबह 7:15 पर चंद गजलों के कार्यक्रम सुगम संगीत में सुनिएगा चंद गजलें। सुबह 7:30 पर जनसंपर्क से प्राप्त समाचार और पुराने फिल्म संगीत का कार्यक्रम नमस्कार सरगुजा प्रस्तुत किया जाएगा। सुबह 8:30 पर आप सुनिएगा फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट संगीत। सुबह 9 बजे बातों और गीतों का कार्यक्रम गुंजन आप सुनेंगे। सुबह 9:55 पर और सुबह 11:55 पर प्रादेशिक समाचार हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। सुबह 10 बजे आप सुनिएगा तापमान की सूचना, उसके बाद कार्यक्रम विवरण, फिर आप सुनेंगे लोक गीतों का फोन इन कार्यक्रम गांव कर गीत। सुबह 11:05 पर कार्यक्रम आपकी पसंद आप सुनेंगे। दिन में 12 बजे आप सुनिएगा NCERT और CIET द्वारा प्रायोजित शैक्षणिक कार्यक्रम उमंग। दिन में 12:30 पर कार्यक्रम चयन का प्रसारण किया जाएगा। दिन में 1:05 पर कार्यक्रम खेती की बात का पुनः प्रसारण आप सुनेंगे। दिन में 1:10 पर महिलाओं के कार्यक्रम घर आंगन में आप सुनेंगे क्रम बातचीत में नई तकनीक नई सीख जो सिखाता है आगे बढ़ना है, इस विषय पर बातचीत, क्रम गुलदस्ता, क्रम घरेलू नुस्खे और कुछ गीत संगीत। दिन में 1:40 पर और रात 9:30 पर श्रोताओं के ईमेल पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम ईमेल की गूंज का प्रसारण किया जाएगा। दोपहर 2:30 पर गैर फिल्मी गीतों और गजलों का कार्यक्रम गीत गंधा का प्रसारण समय

0: होगा। हमारी तीसरी सभा में शाम 5 बजे हम आपको सुनाएंगे प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोठ, गैर फिल्मी और फिल्मी भजनों का कार्यक्रम भजन संध्या आप सुनिएगा शाम 5:05 पर। शाम 5:30 पर युवा श्रोताओं का कार्यक्रम युववाणी में युवा साथी आज सुनेंगे क्रम युवा सोच और क्रम महफिल का प्रसारण किया जाएगा। शाम 6:05 पर कार्यक्रम विचार बिंदु का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं। शाम 6:20 पर लोक गीतों के कार्यक्रम गोधुली में हम आपको सुनाएंगे ठाकुर मिंज और साथियों के स्वर में सादरी लोकगीत और श्याम लाल उइके और साथियों के स्वर में सरगुजिया लोकगीत। शाम 7:20 पर ग्रामीण श्रोता और किसान भाई सुनेंगे अपना पसंदीदा कार्यक्रम चौपाल। इसमें आज सुनिएगा प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना और लोकतंत्र की रक्षा हर नागरिक की जिम्मेदारी, संविधान हत्या दिवस, इन विषयों पर सामयिक चर्चा। शाम 7:30 पर क्रम किसानवाड़ी में सुनिएगा किसानों व कृषि विशेषज्ञों से स्थल रिकॉर्डिंग पर आधारित कार्यक्रम किसान संध्या। कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ। प्रातः की 6:55 होने वाले हैं। अब हम संस्कृत समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करते हैं।
1: एम आकाशवाणी संप्रति वार्ता श्रूयंताम प्रवाचिका निधि झा। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ह्यः नवदेहल्याः सेवातीर्थस्थले प्रगति इति सूचना संचार प्रौद्योगिकी आधारित मंचस्य 250वें उपवेशनस्य अध्यक्षतां विहितवान्। अस्यां गोष्ठ्यां श्रीमोदी चतुर्षु राज्येषु विस्तृतान् मार्ग विद्युत औद्योगिकी वीथि तथा मेट्रो रेलवे क्षेत्राणां चतुर्प्रमुखान् आधारभूत संरचना प्रकल्पान् समीक्षितवान्। एतेषां प्रकल्पानां आहत्य व्ययः प्रायः 30,000 कोटि रूप्यकाणि अस्ति। आर्थिक विकासं क्षेत्रीय संपर्कं औद्योगिक विकासं तथा जनकल्याणं वर्धयितुं संधारिताः एते प्रकल्पाः। समयसीमा विभिन्न संस्थानां समन्वयः तथा प्रलंबित विषयानां शीघ्र निवारणाय विशेष ध्यानेन सह सन्ति समीक्षिताः। अद्यतावत् संविधान हत्या दिवसो वर्तते। दिवसोयं तस्याः घटनायाः स्मरणं कारयति यदा 75वें वर्षस्य जून मासस्य 25वें दिनांके भारतीय संविधानस्य अवमानना कृता। अनेन सहैव अयं दिवसः आपत्काले अत्याचारैः प्रताडितेभ्यः प्रत्येकं जनेभ्यः श्रद्धांजलिम् अर्पयितुं दिवसो वर्तते। अस्मिन्नेव दिने तत्कालीनः राष्ट्रपतिः फखरुद्दीन अली अहमदः आन्तरिक अशान्तेः कारणं प्रदर्श्य देशे राष्ट्रियापत्कालस्य घोषणाम् अकरोत्। देहल्याम् अस्य मासस्य 30 दिनांकात् आरभ्यमाणस्य मतदात्री सूचीनां विशेष गहन पुनरीक्षणस्य अन्तर्गतम् गृहं गृहं गत्वा गणना कार्यक्रमम् अभिलक्ष्य देहल्याः मुख्य निर्वाचनाधिकारिण ह्यः नवदिल्ल्यां विभिन्न राजनैतिक दलानां प्रतिनिधिभिः सह एका सभा आहूता। मुख्य निर्वाचनाधिकारिणः एकेन विवरणेन स्पष्टीकृतं यत् अस्यां गोष्ठ्यां भारतीय जनता पार्टी इति दलं, आम आदमी पार्टी इति दलं तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इत्यादि प्रमुखाणां राजनैतिक दलानां प्रतिनिधयः समुपस्थिताः आसन्। कार्यालयानुसारं मुख्य निर्वाचनाधिकारी प्रत्यपादयत् यत् कोऽपि योग्यः नागरिकः न वञ्चितः स्यात्, सहैव कोऽपि अयोग्यः जनः मतदात्री सूच्यां न सम्मिलितो भवेत्। अनेन सहैव गणना चरणे अनुपालनीयानां प्रमुखाणां गतिविधिनां विषयेऽपि राजनैतिक दलानि विस्तरेण सूचितानि। भारतीय ऋतुविज्ञान विभागेन अद्य देशस्य उत्तरपूर्वीय क्षेत्रेषु झारखण्ड, महाराष्ट्र, ओडिशा, उपहिमालय, पश्चिमबंग, तेलंगाना, तटीय कर्नाटक, कोंकणं समेत्य गोवा क्षेत्रस्य कतिपयेषु भागेषु अतिवृष्टेः पूर्वानुमानं प्रख्यापितम्। विभागानुसारं

0: अद्य पश्चिम राजस्थान क्षेत्रे झंझावातस्य संभावना अपि वर्तते। अत्रावधेयं यत् अद्य बिहार पूर्व मध्य प्रदेश पूर्व उत्तर प्रदेशस्य च नाना स्थानेषु उष्ण तरंगस्य अनुमानम् अपि विभागेन अनेन प्रकटीकृतम्। अपरत्र अद्य देहल्याम् आंशिक रूपेण मेघाच्छादनम् न भविष्यति। सहैव अपराह्णे सायंकाले वा विद्युद्गर्जनेन वृष्टेः संभावनापि वर्तते। सम्प्रति क्रीडा वार्तासु आईसीसी महिला T20 विश्व कप स्पर्धायाम् अद्य भारतस्य सम्मुखीकरणं बांग्लादेशेन सह भविष्यति। स्पर्धेयं मैनचेस्टर नगरस्य एमिरेट्स ओल्ड ट्रेफोर्ड क्रीडांगणे आयोज्यते। या भारतीय समयानुसारं सायंकाले 7 वादने समारप्स्यते। हरमनप्रीत कौरस्य नेतृत्वे भारतीय महिला दलं विमेन इन ब्लू संप्रति स्वसमूहे द्वितीयं स्थानं भजते। इति वार्ताः।
1: मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। सुबह के 7 बजे हैं। अब लीजिए सुनिए लोक गीतों का कार्यक्रम गूंजे जंगल। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं कल साय राजवाड़े और साथी साधुराम और साथियों के स्वर में सरगुजिया लोक गीत और मानमती बड़ा और साथियों के स्वर में सादरी लोक गीत। कार्यक्रम की शुरुआत में सुनिए कल साय राजवाड़े और साथियों के स्वर में सरगुजिया बायर गीत।

इस बायर गीत के बाद अब लीजिए सुनिए मानमति बड़ा और साथियों के स्वर में सादरी डोमकेच लोक गीत।

अभी आप सुन रहे हैं लोक संगीत का कार्यक्रम गूंजे जंगल। कार्यक्रम के अंत में लीजिए सुनिए साधुराम और साथियों के स्वर में किसुन खेल कर्मा सरगुजिया लोकगीत।

अभी आपने सुना किसुन खेल कर्मा सरगुजिया लोकगीत, और इसी गीत के साथ ही आज का लोक संगीत का कार्यक्रम गूंजे जंगल अब यहीं समाप्त हुआ। सुबह के 7:15 हुए हैं। अब लीजिए सुनिए चंद गजलों का कार्यक्रम सुगम संगीत। कार्यक्रम के शुरुआत में सुनिए जगजीत सिंह और लता मंगेशकर की आवाज़ में ये गज़ल।

अब लीजिए सुनिए अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन की आवाज़ में वालियासी की लिखी ये गज़ल। इसे हमने लिया है राहत एल्बम से। संगीत है अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन का।

अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन की आवाज़ में अभी आपने सुनी ये गज़ल, और इसी के साथ आज का चंद गज़लों का कार्यक्रम सुगम संगीत अब यहीं समाप्त होता है। मीडियम वेव 238.09 मीटर अर्थात 1260 किलो हर्ट्ज पर और एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। सुबह के 7:30 होने वाले हैं। अब प्रस्तुत है जनसंपर्क से प्राप्त समाचार और पुराने फिल्म संगीत का कार्यक्रम नमस्कार।

0: 14.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। सुबह के 7:30 होने वाले हैं। अब प्रस्तुत है जनसंपर्क से प्राप्त समाचार और पुराने फिल्म संगीत का कार्यक्रम नमस्कार सरगुजा।
1: जनसंपर्क से प्राप्त सूचना
2: और पुराने फिल्मी गीतों पर केंद्रित कार्यक्रम
3: नमस्कार सरगुजा।
4: नमस्कार सरगुजा।
0: स्वागत है श्रोताओं आप सभी का आज के सूचनात्मक कार्यक्रम नमस्कार सरगुजा में। आज के अंक में आपके साथ मैं हूं विजय कुमार। जंगली हाथियों की गतिविधियों और उनके संभावित विचरण क्षेत्रों की सटीक जानकारी देने वाला विशेष कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोठ प्रतिदिन शाम 5 आपके अपने 4 आकाशवाणी केंद्रों अंबिकापुर, रायपुर, बिलासपुर और रायगढ़ से प्रसारित हो रहा है। ये कार्यक्रम FM रेडियो चैनलों पर भी उपलब्ध है, जिसे आप आसानी से रेडियो सेट, मोबाइल फोन या गाड़ियों में चलते फिरते भी सुन सकते हैं। साथ ही सोशल मीडिया पर भी इसकी पहुंच है, ताकि हर जानकारी हो आपके हाथ में। इस कार्यक्रम से मिली जानकारी के कारण हाथी प्रभावित क्षेत्रों के लोग सुरक्षित रास्ते अपनाकर अपने घर सुरक्षित लौट रहे हैं। अब जंगल या गांव के किसी भी हिस्से में निकलने से पहले हाथियों की सही स्थिति जानने का सबसे भरोसेमंद माध्यम है हमर हाथी हमर गोठ। सुनते रहिए, सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए हमर हाथी हमर गोठ, जहां हर सूचना है आपकी सुरक्षा के लिए। और अब हम आपको बता दें सूचना MCB जिला से प्राप्त। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 के तहत जिले की 22 ग्राम पंचायतों में 4 प्रकार के कचरे का होगा पृथक संग्रहण। स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण और संसाधनों के पुनः उपयोग की दिशा में महत्वपूर्ण पहल। स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 लागू होने और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अधीन पारित दिशा निर्देशों के अनुरूप जिले की 22 ग्राम पंचायतों में प्रथम चरण के तहत 4 प्रकार के अपशिष्टों को गीला, सूखा, सेनेटरी एवं विशेष जोखिमपूर्ण अपशिष्ट का पृथक संग्रहण किया जाएगा। इस पहल में जिले की 3 NGT प्रभावित तथा 5 पर्यटन स्थल वाली पंचायतों सहित चयनित ग्राम पंचायतों को शामिल किया गया है। इस व्यवस्था के लागू होने से गांवों में स्वच्छता के मानकों को बेहतर बनाने, अपशिष्टों के वैज्ञानिक प्रबंधन और उनके सुरक्षित भंडारण और निस्तारण को सुगम बनाया जा सकेगा। ग्रामीण क्षेत्रों में घर घर से पृथक कचरा संग्रहण कर उसे निर्धारित श्रेणियों के अनुसार संसाधित किया जाएगा। इस नई व्यवस्था के कई महत्वपूर्ण लाभ होंगे। इससे हवा, पानी और मिट्टी के प्रदूषण को नियंत्रित करने में सहायता मिलेगी और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा। अपशिष्टों से खाद, बायोगैस और पुनर्चक्रण जैसी गतिविधियों को प्रोत्साहन मिलेगा, जिससे संसाधनों की पुनः प्राप्ति संभव होगी। कूड़े के ढेरों में कमी आएगी और गांव अधिक स्वच्छ और स्वस्थ बन सकेंगे। इसके साथ ही सर्कुलर इकोनॉमी की अवधारणा को भी बढ़ावा मिलेगा, जिसमें अपशिष्ट को संसाधन के रूप में उपयोग कर खाद, बायोगैस, रिसाइकलिंग और RDF के माध्यम से अतिरिक्त आय के अवसर विकसित किए जा सकेंगे। और इस सूचना के बाद अब हम आपको सुना रहे हैं कार्यक्रम का पहला गीत, गीता दत्त और तलत महमूद की आवाज़ में।

और अब हम आपको बता दें, जनसंपर्क विभाग सरगुजा से प्राप्त सूचनाएं 29 एवं 30 जून को विश्व की प्राचीनतम नाट्यशाला रामगढ़ में होगा आयोजन। विभिन्न विभागों के अधिकारियों को सौंपे गए दायित्व। आषाढ़ माह के प्रथम दिवस के अवसर पर आयोजित होने वाले रामगढ़ महोत्सव 2026 की तैयारियां प्रारंभ हो गई हैं। विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी राम वन गमन पर्यटन परिपथ स्थल एवं विश्व की प्राचीनतम नाट्यशाला रामगढ़ में 29 एवं 30 जून 2026 को दो दिवसीय रामगढ़ महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। महोत्सव के सफल आयोजन के लिए मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सरगुजा को नोडल अधिकारी और सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग सरगुजा को सहायक नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। जिला प्रशासन द्वारा आयोजन की समुचित तैयारियों और व्यवस्थाओं के लिए विभिन्न विभागों के अधिकारियों को अलग अलग दायित्व सौंपे गए हैं। पार्किंग, वाहन व्यवस्था, ट्रैफिक रूट चार्ट, कानून ब्लड ग्रुप व्यवस्था के लिए पुलिस अधीक्षक जिला सरगुजा, विभागीय प्रदर्शनी से संबंधित स्टॉल के लिए जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, अपर कलेक्टर सरगुजा एवं अनुविभागीय अधिकारी राजस्व उदयपुर को प्रोटोकॉल, कारकेट कानून व्यवस्था, मंच पर साज सज्जा, होर्डिंग, मंच की डिजाइनिंग, फ्लैक्स बैनर एवं डेकोरेशन, मंच पर अतिथियों के बैठने की व्यवस्था, नियत स्थल पर मंच एवं ग्रीन रूम का निर्माण, बैरिकेटिंग, टेंट, कुर्सी की संपूर्ण व्यवस्था, विकास प्रदर्शनी हेतु पृथक से टेंट एवं स्टॉल की व्यवस्था के लिए लोक निर्माण विभाग के कार्यपालन अभियंता, कार्यक्रम स्थल पर साउंड माइक, LED और जनरेटर की व्यवस्था के लिए लोक निर्माण विभाग के कार्यपालन अभियंता अंबिकापुर को जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसी प्रकार रामगढ़ महोत्सव के कार्यक्रम स्थल पर राष्ट्रीय शोध संगोष्ठी एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम

अतिथियों के फूल माला एवं बुके की व्यवस्था के लिए उद्यानिकी विभाग के उपसंचालक ग्रीन रूम एवं मंच के सामने अतिथि दीर्घा में स्वल्पाहार की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था हेतु जिला खाद्य अधिकारी प्रबंधक, जिला नागरिक आपूर्ति निगम प्रबंधक, मार्कफेड प्रबंधक वेयर हाउस को जिम्मेदारी सौंपी गई है। अब लीजिए सुनिए शैलेंद्र सिंह की आवाज में फिल्म बॉबी का गीत। गीतकार हैं आनंद बख्शी और संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

0: राहुल, ये अपनी डायरी में बार बार 230, 600 क्या लिख रहे हो? कोई लकी नंबर है क्या?
1: लकी ही समझो रिया, ये वो जादुई नंबर है जो मेरे बिजनेस को रातों रात पूरे अंबिकापुर में हिट कर देगा।
0: अच्छा, वो कैसे?
1: अरे बाबा, ये आकाशवाणी अंबिकापुर की पहचान है। यहाँ विज्ञापन देने का मतलब है अंबिकापुर का हर घर, हर दुकान और हर चौक चौराहा सिर्फ मेरी दुकान का नाम सुनेगा।
0: ओ, समझ गई। यानी 230-600, पर इस पर कॉल कैसे लगेगा?
1: बहुत सिंपल है, अंबिकापुर का STD कोड लगाओ 07774 और मिला दो 230-600।
0: अरे वाह, 07774 230-600, ये तो सच में लकी नंबर है। तो फिर देर किस बात की? अभी पधारो आकाशवाणी कार्यालय और अपने व्यापार को दो नई उड़ान।
1: बिल्कुल, आकाशवाणी अंबिकापुर, मेरे और आपके व्यापार की सफलता का सच्चा साथी।
2: कलेक्टर एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने शासकीय बाल संप्रेक्षण गृह का किया निरीक्षण, सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ करने के दिए आवश्यक निर्देश। बच्चों से आत्मीय संवाद कर भोजन, स्वास्थ्य एवं शिक्षा व्यवस्था की ली जानकारी। सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के दिए निर्देश। कलेक्टर एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने कल शासकीय बाल संप्रेक्षण गृह अंबिकापुर का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान संस्था की आधारभूत सुविधाएं, सुरक्षा व्यवस्था और बच्चों के रहन सहन, स्वास्थ्य एवं शिक्षा संबंधी व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने संस्था भवन की सभी खिड़कियों, निकास मार्गों और सुरक्षा व्यवस्था का परीक्षण किया। उन्होंने भवन की आवश्यक मरम्मत कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए। साथ ही किशोर न्याय बोर्ड के प्रवेश द्वार की सुरक्षा और अधिक मजबूत बनाने के लिए वहां कंटीले तार लगाने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए गए। कलेक्टर ने संस्था में निवासरत बच्चों से आत्मीय और सहज वातावरण में संवाद स्थापित किया और उनके दैनिक जीवन से जुड़ी आवश्यकताओं की जानकारी ली। उन्होंने बच्चों से भोजन की गुणवत्ता, स्वास्थ्य सेवाओं की जानकारी, अध्ययन व्यवस्था और उनकी नियमित दिनचर्या के संबंध में चर्चा की और उनकी समस्याओं एवं सुझावों को गंभीरता से सुना। उन्होंने कहा कि बाल संप्रेक्षण गृह में निवासरत प्रत्येक बच्चे की सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं समग्र विकास सुनिश्चित करना सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। बच्चों को सुरक्षित, सकारात्मक और प्रेरणादायी वातावरण उपलब्ध कराना सभी संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। और अब लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत, मुकेश की आवाज़ में। फिल्म का नाम है मिलन, गीतकार हैं आनंद बख्शी और संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

0: राम राम हो विष्णु भैया,
1: राम राम विष्णु भैया।
0: ए दे भाई नगद, ए दे फट फट फट फट ट्रैक्टर में, ए दे राउर भीड़े ही।
1: कैसे कहिया विष्णु भैया, ए दे आगू तो ए दे वर्धमान ले खेत ला जोतत रहे।
0: हाँ
1: है नहीं।
0: हाँ।
1: बेरा हर ज्यादा लगे।
0: हाँ
1: मैं ए दे रेडियो कर कार्यक्रम ला सुने।
0: कौन कार्यक्रम ला?
1: ए दे किसान वाणी।
0: हाँ
1: तेकर में यदि जानकारी भेटाइस नहीं।
0: हाँ।
1: यदि राउत ला हालू हालू बढ़िया लेहन खेती करना है नहीं तो नवा तकनीक ले खेती करी। अब यदि विशेषज्ञ मन कर जानकारी ला सुन पारे में।
0: हाँ।
1: आए?
0: हाँ।
1: तेकर में कहन की ट्रैक्टर ला बिसोहू बने राउर बिसोए के तो देखी राउर कर उपज नहीं बढ़ी नहीं।
0: हाँ।
1: ताहा
0: तो राउर ऐसे कहा थी कि ये दे सांझा 7:30 बजे रोज जे कार्यक्रम आयल किसान वाड़ी तेला सुन के
1: हो
0: ये दे बढ़िया बढ़िया तकनीक ला सीखे ही। ये तो महू तो सुनू भाई, ये दे आकाशवाणी अंबिकापुर कर ये सुघर कार्यक्रम किसान वाड़ी ला रोज 7:30 बजे ले 8 बजे कर बीच और मीडियम वेव 238.09 मीटर चाहे कही तो 1260 किलोहर्ट्ज पर नहीं। अब आज कर तो भाई कहता है कि ये दे FM में भी 100.2 मेगाहर्ट्ज में भी एला है दे सुन सकते हैं।
1: हाँ, अबे तो शुरू है कि साहेब।
0: हाँ तो नागा तो देखी भाई अब माहू सुनू आकाशवाणी अंबिकापुर ले आए वाला कार्यक्रम खेती पाती ले जुड़ल कार्यक्रम
1: किसान वाड़ी।

28 से 30 जून तक चलेगा पल्स पोलियो अभियान। जिले के 1,00,000 से भी अधिक बच्चों को पिलाई जाएगी खुराक। 693 पोलियो बूथ पर होगी व्यवस्था। 0 से 5 वर्ष के बच्चों को पोलियो की 2 बूंद अवश्य पिलाने की अपील। कलेक्टर के मार्गदर्शन और मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के नेतृत्व में जिले में राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस अंतर्गत पल्स पोलियो अभियान 2026 का आयोजन 28 से 30 जून 2026 तक किया जाएगा। इसका उद्देश्य जिले के सभी 0 से 5 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाकर भारत को पोलियो मुक्त बनाए रखना और बच्चों को इस गंभीर बीमारी से सुरक्षित रखना है। जिले में अभियान के प्रथम दिवस 28 जून 2026 रविवार को निर्धारित 693 पोलियो बूथों पर 1,386 स्वास्थ्य कर्मियों और सहयोगी दलों द्वारा बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई जाएगी। इसके पश्चात 29 एवं 30 जून को स्वास्थ्य विभाग की टीमें घर घर जाकर छूटे हुए बच्चों को पोलियो ड्राप पिलाने का कार्य करेंगी। अभियान के दौरान जिले के 0 से 5 वर्ष आयु वर्ग के कुल 1,07,731 बच्चों को प्रातः 8 बजे से शाम 5 बजे तक पोलियो की खुराक पिलाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने जिले के सभी अभिभावकों से अपील की है कि अपने 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों को निकटतम पोलियो बूथ पर अवश्य लेकर जाएं और पोलियो की 2 बूंद जीवन की खुराक पिलाकर उन्हें सुरक्षित भविष्य दें। उन्होंने कहा कि पोलियो मुक्त भारत की उपलब्धि को बनाए रखने में जन सहभागिता की महत्वपूर्ण भूमिका है और प्रत्येक बच्चे तक पोलियो की खुराक पहुंचाना हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। नशा मुक्त भारत सप्ताह के तहत विशेष विद्यालय में जागरूकता कार्यक्रम। विद्यार्थियों ने ली नशा मुक्ति की शपथ। नशा मुक्त भारत अभियान योजना के अंतर्गत आयोजित नशा मुक्त भारत सप्ताह के तहत कल समाज कल्याण विभाग द्वारा होली क्रॉस आशा निकुंज श्रवण बाधित विशेष विद्यालय अंबिकापुर में नशा मुक्ति जन जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विद्यार्थियों और विद्यालय स्टाफ को नशे के दुष्प्रभावों से अवगत कराते हुए नशा मुक्त जीवन अपनाने के लिए प्रेरित किया गया। समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों ने नशा मुक्त भारत अभियान की रूपरेखा, उद्देश्य और समाज में इसकी आवश्यकता पर विस्तार से प्रकाश डाला। इस अवसर पर उपस्थित छात्र छात्राओं

0: को नशा मुक्त भारत अभियान के तहत नशा मुक्ति की शपथ दिलाई गई और स्वस्थ, सुरक्षित और जागरूक समाज के निर्माण में अपनी सहभागिता निभाने का आह्वान किया गया। और इसी सूचना के साथ आज का कार्यक्रम नमस्कार सरगुजा यहीं समाप्त होता है।
1: जनसंपर्क से प्राप्त सूचना
2: और पुराने फिल्मी गीतों पर केंद्रित कार्यक्रम
3: नमस्कार सरगुजा।
4: नमस्कार सरगुजा।
0: सुबह के 8 बजने वाले हैं। अब हम समाचार प्रभात और मॉर्निंग न्यूज आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करते हैं।
5: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रगति की बैठक में लगभग 30,000 करोड़ रुपए की अवसंरचना परियोजनाओं की समीक्षा की। टीबी उन्मूलन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग और साइबर धोखाधड़ी रोकने के लिए मजबूत व्यवस्था पर जोर दिया। देश में आपातकाल के दौरान पीड़ित लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आज संविधान हत्या दिवस मनाया जा रहा है। उत्तराखंड के लिपुलेख दर्रे से भारत चीन सीमा व्यापार 6 वर्ष बाद फिर शुरू होगा। 26 व्यापार पास जारी किए गए। अमरीकी संघीय न्यायाधीश ने डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन को मतदान के लिए नागरिकता प्रमाण अनिवार्य करने से रोका। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी अमरीका के साथ ईरान के प्रारंभिक शांति समझौते के तहत ईरान में निरीक्षण करेगी। और ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के ग्रुप ए मुकाबले में आशा मैनचेस्टर में भारत का सामना बांग्लादेश से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परियोजनाओं की समीक्षा के डिजिटल मंच प्रगति की 52वीं बैठक की कल नई दिल्ली में अध्यक्षता की। बैठक में सड़क, बिजली, औद्योगिक गलियारे और मेट्रो रेल क्षेत्रों की लगभग 30,000 करोड़ रुपए की 4 प्रमुख बुनियादी ढांचागत परियोजनाओं की समीक्षा की गई। एक रिपोर्ट।
6: प्रधानमंत्री ने कहा है कि परियोजनाओं में देरी से लागत बढ़ती है और जनता को समय पर लाभ नहीं मिल पाता। उन्होंने मंत्रालयों और राज्य सरकारों को लंबित समस्याओं का शीघ्र समाधान करने तथा परियोजनाओं की नियमित निगरानी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक में टीबी मुक्त भारत अभियान की भी समीक्षा की गई। प्रधानमंत्री ने तपेदिक उन्मूलन के लिए AI के उपयोग पर बल दिया तथा NCC कैडेटों और माय भारत स्वयंसेवकों को जन जागरूकता अभियान से जोड़ने का सुझाव दिया। श्री मोदी ने साइबर अपराध और डिजिटल गिरफ्तारी से जुड़ी शिकायतों की भी समीक्षा की। उन्होंने साइबर धोखाधड़ी की रोकथाम, शिकायतों के त्वरित निपटारे और एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय पर जोर देते हुए राज्यों से E0 FIR व्यवस्था लागू करने की दिशा में कार्य करने का आह्वान किया। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नाज।
5: आज संविधान हत्या दिवस मनाया जा रहा है। ये दिवस 25 जून 1975 को लगाए गए आपातकाल की याद दिलाता है, जब देश में संवैधानिक अधिकार और लोकतांत्रिक मूल्य गंभीर रूप से प्रभावित हुए थे। ये दिन उस सभी लोगों को श्रद्धांजलि देने का अवसर भी है जिन्होंने आपातकाल के दौरान दमन, उत्पीड़न और कठिन परिस्थितियों का सामना किया। इस अवसर पर देश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।
7: आज ही के दिन वर्ष 1975 में तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत आंतरिक अशांति से उत्पन्न खतरों का हवाला देते हुए राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की थी। आपातकाल लागू होने के बाद कार्यपालिका को व्यापक अधिकार प्राप्त हो गए और राज्यों पर केंद्र का नियंत्रण अधिक मजबूत हो गया। अनुच्छेद 358 के तहत अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त अधिकारों, जिनमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सभा करने और देश में स्वतंत्र रूप से आवागमन करने का अधिकार शामिल था, पर प्रतिबंध लगा दिया गया। नागरिकों को इन अधिकारों के उल्लंघन के विरुद्ध न्यायालय की शरण लेने के अधिकार से भी वंचित कर दिया गया। समाचार पत्रों पर पूर्व सेंसरशिप लागू कर दी गई और प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए स्थापित वैधानिक संस्था प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को भी समाप्त कर दिया गया। आपातकाल लागू किए जाने के 50 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में संस्कृति मंत्रालय आज नई दिल्ली में वर्ष भर चलने वाले कार्यक्रमों के समापन समारोह का आयोजन कर रहा है। इस अवसर पर संविधान हत्या दिवस तथा लॉन्ग लिव डेमोक्रेसी प्रदर्शनी के साथ साथ संविधान हत्या दिवस विषय पर आधारित लघु फिल्म का प्रदर्शन भी किया जाएगा। केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। सकलेन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।

0: पंजाब में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान की शुरुआत आज से होगी। ये अभियान 24 जुलाई तक चलेगा। राज्य की मुख्य चुनाव अधिकारी अनन्ता मित्रा ने बताया कि अंतिम मतदाता सूची इस वर्ष 1 अक्टूबर को जारी की जाएगी। इधर दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के लिए घर घर जाकर गणना 30 जून से शुरू होगी। इस संबंध में मुख्य चुनाव अधिकारी ने कल राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। बैठक में भाजपा, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस सहित विभिन्न दलों के प्रतिनिधि शामिल हुए। ग्रामीण विकास विभाग आज नई दिल्ली में ग्रामीण विकास में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग पर राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित करेगा। कार्यक्रम में नीति निर्माता, विशेषज्ञ, उद्योग जगत के प्रतिनिधि, स्टार्टअप्स और शिक्षाविद भाग लेंगे। पश्चिम बंगाल सरकार ने कोलकाता के तारातला इलाके में निर्माणाधीन गोदाम की छत गिरने की घटना की जांच के लिए विशेष जांच दल SIT का गठन किया है। इस मामले में भवन पर्यवेक्षक और 2 श्रमिक आपूर्तिकर्ताओं सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि हादसे में मृतकों की संख्या बढ़कर 5 हो गई है, जबकि 20 लोग घायल हुए हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में स्थित लिपुलेख दर्रे से भारत चीन सीमा व्यापार 6 वर्ष बाद फिर शुरू होने जा रहा है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि कल 26 भारतीय व्यापारियों का पहला दल तिब्बत क्षेत्र में प्रवेश करेगा।
1: धारचूला के उप जिलाधिकारी एवं व्यापार अधिकारी आशीष जोशी ने बताया कि पहले चरण में 26 व्यापार पास जारी किए गए हैं, जिनमें 17 व्यापारी और 9 सहायक शामिल हैं। व्यापार को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए गुंजी में सीमा शुल्क कार्यालय भी स्थापित किया गया है। व्यापारियों ने अपना सामान लिपुलेख दर्जे के निकट स्थित गोदाम तक पहुँचा दिया है। 103 से अधिक व्यापारियों ने व्यापार पास के लिए आवेदन किया। दूसरे चरण में 25 अन्य व्यापारियों को भी अनुमति दी जाएगी। सामान को लिपुलेख दर्जे तक पहुँचने के लिए नाभी डांग से निकट घोड़े खच्चरों की व्यवस्था भी गई है।
2: गुंजी में जितनी भी हमारी व्यवस्थाएं थी वो अभी सुचारू हैं। बुधवार तक वहाँ पे कस्टम्स का पूरा स्टाफ नियुक्त हो जाएगा और जो घोड़े कचरों को लेके पड़ाव था उसमें एक संयुक्त बैठक हुई ITBP, आर्मी, व्यापारी और प्रशासन की। उसमें भी एक आपसी सहमति से नाभीडांग के समीप भी एक पड़ाव चयनित किया गया है।
1: गौरतलब है कि भारत चीन सीमा व्यापार वर्ष 2019-20 में COVID-19 महामारी के कारण बंद हो गया था। अब इसके दोबारा शुरू होने से सीमांत क्षेत्र के व्यापारियों और स्थानीय लोगों में उत्साह है। साक्षी आकाशवाणी समाचार देहरादून।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज 3 दिन की आधिकारिक यात्रा पर ब्रिटेन जा रहे हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया है कि ये यात्रा 15 जुलाई को भारत ब्रिटेन के बीच होने वाले ऐतिहासिक व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते तथा सामाजिक सुरक्षा से जुड़े दोहरे अंशदान समझौते के लागू होने से पहले हो रही है। एक रिपोर्ट।
3: इस दौरान श्री गोयल ब्रिटेन के व्यापार और वाणिज्य मंत्री पीटर कायल के साथ उच्च स्तरीय द्विपक्षीय बैठक करेंगे। इसमें व्यापार समझौते के कार्यान्वयन की तैयारियों पर चर्चा होगी। मंत्रालय ने कहा कि दोनों पक्ष दोहरे अंशदान समझौते को लागू करने की कार्य योजना की भी समीक्षा करेंगे, जिससे दोनों देशों के बीच पेशेवरों और व्यवसायों की आवाजाही में वृद्धि होने की उम्मीद है। श्री गोयल लंदन में आयोजित इंडिया ग्लोबल फोरम के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे, जिसका विषय है पूंजी नवाचार और ब्रिटेन भारत मूवमेंट। वे उद्योग जगत के नेताओं और निवेशकों के साथ सरकार से व्यापार संबंधी कई बैठकों में भाग लेंगे। समाचार कक्ष से अमीशा।
0: भारत आज से ब्रिक्स अध्यक्षता 2026 के अंतर्गत हरियाणा के गुरुग्राम में 11वीं ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। ये बैठक कल तक चलेगी। बैठक में 3 प्रमुख प्राथमिकताओं पर चर्चा की जाएगी, जिनमें ऊर्जा सुरक्षा और स्थिरता, ऊर्जा का उपयोग और समानता तथा प्रौद्योगिकी और नवाचार शामिल हैं। अमेरिका की एक संघीय अदालत ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के चुनाव संबंधी कार्यकारी आदेश के अधिकांश प्रावधानों पर स्थायी रोक लगा दी है। बोस्टन की अमेरिकी जिला न्यायालय की न्यायाधीश डेनिस कैस्पर ने कहा है कि अमेरिकी संविधान चुनावों के नियमन का अधिकार राज्यों और संसद को देता है तथा ट्रंप के प्रस्तावित प्रावधान शक्तियों के पृथककरण के सिद्धांत का उल्लंघन करते हैं। राष्ट्रपति ट्रंप के आदेश में मतदाता पंजीकरण के लिए नागरिकता का दस्तावेजी प्रमाण अनिवार्य करने, चुनाव के बाद प्राप्त डाक मतपत्रों की गिनती रोकने तथा नियमों का पालन न करने वाले राज्यों के लिए संघीय धनराशि रोकने जैसे प्रावधान शामिल थे। वेनेजुएला और जापान में आज सुबह भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। वेनेजुएला के याराकोए के युमारे शहर में

0: 7.5 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया। अमरीकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार इससे ठीक 39 सेकंड पहले वेनेजुएला के सैन फेलिप में भी 7.2 तीव्रता का भूकंप आया। इस दौरान कई इमारतें क्षतिग्रस्त हो गई। वहीं जापान के उत्तरी भाग में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए, जिसकी तीव्रता 6.9 थी। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA ने कहा है कि वह अमरीका और ईरान के बीच हुए प्रारंभिक शांति समझौते के तहत ईरान में परमाणु निरीक्षण करेगी। एक रिपोर्ट।
1: IAEA के महानिदेशक राफेल ग्रोसी ने जापान में पत्रकारों को बताया कि निरीक्षण जल्द ही शुरू होंगे और इसकी तारीखों तथा प्रक्रियाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि पिछले सप्ताह हुए समझौते में ईरान के उच्च स्तर पर संवर्धित यूरेनियम को कम करने की प्रक्रिया IAEA की निगरानी में किए जाने का प्रावधान है। हालांकि ईरान के उप विदेश मंत्री ने कहा कि क्षतिग्रस्त परमाणु प्रतिष्ठानों और परमाणु सामग्री तक पहुंच का मुद्दा अमेरिका के साथ अंतिम समझौते के दायरे में ही तय किया जाएगा। इस बीच अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात की। इसके बाद वे समझौते पर चर्चा के लिए कुवैत और बहरीन की यात्रा पर रवाना हो गए। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: और अब खेल के मैदान की खबरों के साथ हैं सिद्धार्थ सिंह।
2: ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में ग्रुप ए के मुकाबले में आज भारत का सामना बांग्लादेश से होगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 7 बजे से मैनचेस्टर में खेला जाएगा। हरमनप्रीत कौर की अगुवाई वाली भारतीय टीम ग्रुप ए में 3 में से 2 मैच जीतकर दूसरे स्थान पर है, वहीं बांग्लादेश चौथे स्थान पर है। दूसरी ओर भारत ए और श्रीलंका ए के बीच 2 मैचों की मल्टी डे क्रिकेट श्रृंखला आज से शुरू हो रही है। मैच भारतीय समय के अनुसार सुबह 10 बजे से श्रीलंका के गाले अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेला जाएगा। श्रृंखला के दोनों 4 दिवसीय मैच इसी मैदान पर खेले जाएंगे। भारत ए टीम की अगुवाई ध्रुजुरेल करेंगे। अब बात फुटबॉल की, जहां फीफा विश्व कप में मोरक्को ने हैती को 4-2 से हराकर नॉकआउट में प्रवेश कर लिया है। मोरक्को के अशरफ हकीमी को 1 गोल और 1 असिस्ट के लिए मैच का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया। वहीं विनिसियस जूनियर के 2 गोलों की बदौलत ब्राजील ने स्कॉटलैंड को 3-0 से हराया। इस जीत के साथ ब्राजील ग्रुप सी में शीर्ष पर रहते हुए नॉकआउट दौर में पहुंच गया है। एक अन्य मुकाबले में बोस्निया हर्जेगोविना ने कतर को 3-1 से हराकर टूर्नामेंट से बाहर कर दिया, जबकि स्विट्जरलैंड ने कनाडा को 2-1 से मात देकर ग्रुप बी में शीर्ष स्थान हासिल किया। इसके साथ ही कनाडा भी पहली बार विश्व कप के नॉकआउट चरण में पहुंचने में सफल रहा है।
0: मौसम विभाग ने आज कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों, झारखंड, कोंकण और गोवा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के हिमालय के तराई क्षेत्र और सिक्किम में तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। बिहार, झारखंड, पश्चिम मध्य प्रदेश, पश्चिम राजस्थान, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में तेज आंधी और गरज के साथ बारिश हो सकती है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
3: धन्यवाद प्रियंका। भारत अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौते से जुड़ी वार्ता को जनसत्ता सहित कई अखबारों ने प्रमुखता दी है। अमर उजाला ने लिखा है, टैरिफ की समय सीमा करीब पर अंतरिम समझौते पर असमंजस, अब रोकनी ही होगी जंग, शीर्षक से दैनिक भास्कर ने लिखा है, अमेरिकी संसद में ईरान युद्ध रोकने के प्रस्ताव पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विरुद्ध वोटिंग, 53 साल में पहली बार संसद में हारे राष्ट्रपति, देश बंधु की खबर है, कच्चे तेल की कीमत 4 महीने के निचले स्तर पर, अमरीका ईरान के बीच शांति वार्ता से आपूर्ति श्रृंखला में सुधार, दैनिक जागरण ने लिखा है, क्रूड के दाम में नरमी से सेंसेक्स 790 अंक चढ़ा, -269 डिग्री पर धड़का भारत का क्वांटम सपना, राजस्थान पत्रिका ने लिखा है, अमरावती वैली की उपलब्धि, अब देश में ही क्वांटम तकनीक की पड़ताल, पत्र ने बताया है कि उस भविष्य की तैयारी है जहां ताकत का पैमाना चिप्स, डेटा सेंटर या सुपर कंप्यूटर नहीं बल्कि क्वांटम कंप्यूटर हो गई। भगौड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी को बैंक ऑफ इंडिया को $1,15,00,000 चुकाने के लंदन हाईकोर्ट के फैसले को दैनिक ट्रिब्यून सहित कई अखबारों ने प्रकाशित किया है। अब झमाझम बारिश का दौर शीर्षक से दैनिक भास्कर ने लिखा है, मध्य प्रदेश पहुंचा मानसून, 3 दिन बाद रफ्तार पकड़ेगा, फिर 5 दिन पूरे देश में बरसेगा। अमर उजाला ने अपने संपादकीय में लिखा है, भारत के कुछ हिस्सों में हाल के दिनों में हुई बारिश ने भीषण गर्मी से फौरी तौर पर राहत बेशक दिलाई हो, लेकिन दुनिया भर में बढ़ता तापमान इशारा करता है कि जलवायु परिवर्तन अब सिर्फ एक देश या महाद्वीप की समस्या नहीं रह गया।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रगति की बैठक में लगभग 30,000 करोड़ रुपए की अवसंरचना परियोजनाओं की समीक्षा की। टीबी उन्मूलन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग और साइबर धोखाधड़ी रोकने

0: have a full 7.5 magnitude earthquake hits Venezuela, causing collapse of multiple buildings. And in cricket, India to take on Bangladesh in Group A match of ICC Women's T20 World Cup in Manchester this evening. And with that, we end the morning news. Have a nice day. Akashwani se.
1: मीडियम वेव 238.09 मीटर अर्थात 1260 किलोहर्ट्ज पर और एफएम बैंड 14.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। सुबह के 8:30 हुए हैं। अब लीजिए सुनिए फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट संगीत। कार्यक्रम में पहले हम आपको सुनाने जा रहे हैं फिल्म डिस्को बलमा का गीत किशोर कुमार की आवाज में। गीत के बोल लिखे हैं अनजान ने और धुन तैयार की है बप्पी लहरी ने।

शैलेंद्र का लिखा गीत, अब लीजिए सुनिए फिल्म आपकी खातिर के लिए। स्वर दिया है लता मंगेशकर और साथियों ने, और संगीत है बप्पी लहरी और साथियों का।

आराम करूं। फिल्म नैया का गीत अब हम आपको सुनाने जा रहे हैं येसुदास की आवाज में। गीत और संगीत है रविंद्र जैन का।

अभी आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट संगीत आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से। अब लीजिए सुनिए हेमलता की आवाज़ में फिल्म अखियों के झरोखों से का ये गीत। गीतकार और संगीतकार हैं रविंद्र जैन।

मनहर उदास और कविता कृष्ण मूर्ति की आवाज़ में अब लीजिए सुनिए फिल्म मैं तेरा दुश्मन का गीत। गीत के बोल लिखे हैं इंदिवर ने और धुन तैयार की है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

साथियों, अभी आपने सुना मनहर उदास और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ में फिल्म मैं तेरा दुश्मन का गीत। गीतकार थे इंदिवर और संगीतकार थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। और इसी गीत के साथ ही आज का फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट संगीत अब यहीं समाप्त होता है।

मीडियम वेव 238.09 मीटर अर्थात 1260 किलोहर्ट्ज पर और एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 9 बजे हैं। अब लीजिए सुनिए बातों और गीतों का कार्यक्रम गुंजन।

स्वागत है श्रोताओं आप सभी का आज के बातों और गीतों के कार्यक्रम गुंजन में। आज के सफर में आपके साथ मैं हूं आपका हमराही विजय कुमार। साथियों, हमारा भारत देश एक लोकतांत्रिक गणराज्य है जहां संविधान को सर्वोच्च माना गया है। हमारा संविधान नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान करता है और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करता है। इसी संविधान और लोकतंत्र की महत्ता को स्मरण करने के लिए 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाया जाता है। साथियों, भारत सरकार ने वर्ष 2024 में घोषणा की कि प्रत्येक वर्ष 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इसका उद्देश्य वर्ष 1975 में लगाए गए आपातकाल की उस घटना को याद करना है जिसे लोकतंत्र और संवैधानिक मूल्यों पर गंभीर आघात माना जाता है। साथियों, आपातकाल के दौरान नागरिक स्वतंत्रताओं पर अनेक प्रतिबंध लगाए गए। प्रेस की स्वतंत्रता सीमित कर दी गई, राजनीतिक विरोधियों को गिरफ्तार किया गया और कई मौलिक अधिकारों का प्रयोग प्रभावित हुआ। ये अवधि 21 मार्च 1975 तक चली। साथियों, बातें आगे और करेंगे, फिलहाल आपको सुनाते हैं कार्यक्रम का ये पहला गीत किशोर कुमार की आवाज़ में।

साथियों, भारतीय संविधान केवल एक कानूनी दस्तावेज नहीं है, बल्कि ये देश की एकता, अखंडता और लोकतांत्रिक व्यवस्था का आधार है। संविधान सभी नागरिकों को समानता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुत्व का अधिकार देता है। जब संविधान के मूल सिद्धांतों का सम्मान किया जाता है, तब लोकतंत्र मजबूत होता है। इसलिए हर नागरिक का ये दायित्व है कि वो संविधान के प्रति सम्मान बनाए रखे और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में सक्रिय भागीदारी निभाए। साथियों, आज का युवा भारत का भविष्य है। संविधान हत्या दिवस युवाओं को ये समझने का अवसर देता है कि लोकतंत्र की रक्षा केवल सरकारों का नहीं, बल्कि हर नागरिक का दायित्व है। जागरूक मतदाता बनना, कानून का सम्मान करना और सामाजिक सौहार्द बनाए रखना लोकतंत्र को मजबूत बनाने के जरूरी उपाय हैं। दोस्तों, संविधान हत्या दिवस केवल इतिहास की एक घटना को याद करने का दिन नहीं, बल्कि ये लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा का संकल्प लेने का अवसर है। ये दिन हमें याद दिलाता है कि संविधान की शक्ति ही भारत की सबसे बड़ी ताकत है। हमें अपने अधिकारों के साथ साथ कर्तव्यों का भी पालन करना होगा और लोकतंत्र की रक्षा के लिए हमेशा सजग रहना होगा। और इन बातों के बाद अब लीजिए सुनिए अनुराधा पौडवाल और मोहम्मद अजीज की आवाज़ में फिल्म

दो दिलों का संगम का ये गीत गीतकार हैं श्याम अनुरागी और संगीत है मिलिंद सागर का।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: साथियों, आज 25 जून है और हिंदी फिल्म संगीत में, इतिहास में ये दिन एक ऐसे महान संगीतकार की जन्म जयंती के रूप में याद किया जाता है जिनकी धुनों ने प्रेम, विरह और भावनाओं को सुरों का अमर रूप दिया। हम बात कर रहे हैं महान संगीतकार मदन मोहन की। 25 जून 1924 को जन्मे मदन मोहन को हिंदी फिल्म संगीत का गज़लों का शहजादा कहा जाता है। उनकी रचनाओं में शास्त्रीय संगीत की गहराई और भावनाओं की मिठास का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। साथियों, उन्होंने ऐसे अनेक गीत दिए जो आज भी श्रोताओं के दिलों में बसे हुए हैं। जब भी मदन मोहन का नाम लिया जाता है तो लग जा गले, नैना बरसे, रिमझिम रिमझिम, आपकी नज़रों ने समझा और वो चुप रहें तो, जैसे सदाबहार गीत हमेशा याद आ जाते हैं। इन गीतों को स्वर कोकिला लता मंगेशकर ने अपनी मधुर आवाज़ से अमर बना दिया। तो आइए, हम भी आपको सुना रहे हैं मदन मोहन के संगीत निर्देशन में ये गीत। लता मंगेशकर की आवाज़ है।

0: चाहिए, वो भी ऐप से। वाह,
1: फसा। अनजान ऐप से बचें।
2: RBI कहता है,
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: साथियों, मदन मोहन की धुनों की खासियत ये थी कि वे सीधे दिल को छू जाती थी। उन्होंने संगीत को केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं बनाया, बल्कि भावनाओं की अभिव्यक्ति का सशक्त साधन भी बनाया। उनकी रचनाएं आज भी नई पीढ़ी को उतनी ही पसंद आती हैं जितनी अपने समय में आती थी। आज उनकी जयंती पर हम उन्हें श्रद्धापूर्वक नमन करते हैं और उनके संगीत को याद करते हुए यही कहेंगे कि कलाकार भले ही दुनिया से चला जाए, लेकिन उसकी कला हमेशा जीवित रहती है। इसी भावना के साथ आइए सुनते हैं मदन मोहन के संगीत से सजा एक और सदाबहार गीत।

साथियों, आज 25 जून हिंदी सिनेमा की चुलबुली मुस्कान, शानदार अदाकारी और बेहतरीन नृत्य शैली के लिए पहचानी जाने वाली लोकप्रिय अभिनेत्री करिश्मा कपूर का जन्मदिन है। इस अवसर पर आइए उनके जीवन और फिल्मी सफ़र पर एक नज़र डालते हैं। 25 जून 1974 को मुंबई में जन्मी करिश्मा कपूर भारतीय फिल्म जगत के प्रतिष्ठित कपूर परिवार से संबंध रखती हैं। दोस्तों, ये प्रसिद्ध अभिनेता रणधीर कपूर और अभिनेत्री बबीता की बड़ी पुत्री हैं। बचपन से ही इनके आसपास फिल्मों और कला का वातावरण था, जिसने अभिनय के प्रति उनके आकर्षण को और बढ़ाया। दोस्तों, करिश्मा कपूर ने मात्र 17 वर्ष की आयु में फिल्म प्रेम कैदी से अपने अभिनय करियर की शुरुआत

प्रसिद्ध अभिनेता रणधीर कपूर और अभिनेत्री बबीता की बड़ी पुत्री हैं। बचपन से ही इनके आसपास फिल्मों और कला का वातावरण था, जिसने अभिनय के प्रति उनके आकर्षण को और बढ़ाया। दोस्तों, करिश्मा कपूर ने मात्र 17 वर्ष की आयु में फिल्म प्रेम कैदी से अपने अभिनय करियर की शुरुआत की। शुरुआती दौर में इन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन इन्होंने अपनी मेहनत और लगन से खुद को साबित किया। धीरे धीरे उनकी पहचान एक प्रतिभाशाली अभिनेत्री के रूप में बनने लगी। तो आइए आपको सुनाते हैं फिल्म राजा हिंदुस्तानी का ये गीत। गीतकार हैं समीर और संगीतकार हैं नदीम श्रवण, और इस गीत में स्वर दिया है उदित नारायण, अलका याग्निक और सपना अवस्थी ने।

0: राहुल, ये अपनी डायरी में बार बार 230, 600 क्या लिख रहे हो? कोई लकी नंबर है क्या?
1: लकी ही समझो रिया, ये वो जादुई नंबर है जो मेरे बिजनेस को रातों रात पूरे अंबिकापुर में हिट कर देगा।
0: अच्छा, वो कैसे?
1: अरे बाबा, ये आकाशवाणी अंबिकापुर की पहचान है। यहाँ विज्ञापन देने का मतलब है अंबिकापुर का हर घर, हर दुकान और हर चौक चौराहा सिर्फ मेरी दुकान का नाम सुनेगा।
0: ओ, समझ गई। यानी 230, 600। पर इस पर कॉल कैसे लगेगा?
1: बहुत सिंपल है, अंबिकापुर का STD कोड लगाओ 07774 और मिला दो 230, 600।
0: अरे वाह, 07774, 230, 600, ये तो सच में लकी नंबर है। तो फिर देर किस बात की? अभी पधारो आकाशवाणी कार्यालय और अपने व्यापार को दो नई उड़ान।
1: बिल्कुल, आकाशवाणी अंबिकापुर मेरे और आपके व्यापार की सफलता का सच्चा साथी।
2: साथियों, इस संदेश से पहले आपने सुना फिल्म राजा हिंदुस्तानी का गीत। और साथियों, हम बात कर रहे हैं अभिनेत्री करिश्मा कपूर की। आज उनकी जन्मतिथि है। वर्ष 1990 का दशक करिश्मा कपूर के नाम रहा। राजा हिंदुस्तानी ने उन्हें अपार लोकप्रियता दिलाई। इस फिल्म में उनके अभिनय को दर्शकों और समीक्षकों दोनों ने सराहा। इसके बाद फिल्म हीरो नंबर वन, जुड़वा, बीवी नंबर वन, हसीना मान जाएगी और हम साथ साथ हैं जैसी फिल्मों ने उन्हें सफलता के शिखर पर पहुंचा दिया। करिश्मा की जोड़ी अभिनेता गोविंदा के साथ बेहद लोकप्रिय रही। दोनों की कॉमिक टाइमिंग, नृत्य और जीवंत अभिनय ने दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया। साथियों, उस दौर के गीत सोना कितना सोना है, मैं तो रास्ते से जा रहा था और ऊंची है बिल्डिंग, ये गीत आज भी लोगों की जुबान पर हैं। बातें आगे और करेंगे, अब लीजिए सुनिए फिल्म जुड़वा का गीत। अभिजीत, पूर्णिमा और साथियों के स्वर में। गीत लिखा है देव कोहली ने और संगीत है अनु मलिक का।

0: वो अपनापन, वो भरोसा जो सालों साल आपने दिखाया हम पर,
1: उसे और मजबूत बनाने हम ला रहे हैं FM 100.2 MHz पर अपना प्रसारण।
0: साफ और स्पष्ट आवाज अब और भी बेहतर अंदाज में आपके दिलों तक।
1: तो जुड़िए आकाशवाणी अंबिकापुर से और जोड़िए आपके अपनों को भी।
0: आपका अपना आकाशवाणी अंबिकापुर, मीडिया वेव 1260 किलोहर्ट्ज के साथ अब FM 100.2 MHz पर भी।
2: साथियों, अभी आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से बातों और गीतों का कार्यक्रम गुंजन। और अभी हम बात कर रहे हैं अभिनेत्री करिश्मा कपूर की। साथियों, वर्ष 1997 में आई फिल्म दिल तो पागल है करिश्मा कपूर के करियर का महत्वपूर्ण पड़ाव साबित हुई। इस फिल्म में उनके संवेदनशील अभिनय के लिए उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और अन्य कई सम्मान प्राप्त हुए। इसके बाद फिजा और जुबैदा जैसी फिल्मों में उन्होंने अपने अभिनय की गंभीरता और विविधता का परिचय दिया। करिश्मा कपूर केवल एक सफल अभिनेत्री ही नहीं बल्कि एक प्रेरणा स्रोत भी हैं। उन्होंने ये साबित किया कि निरंतर मेहनत, आत्मविश्वास और समर्पण से किसी भी लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। समय के साथ उन्होंने फिल्मों से कुछ दूरी अवश्य बनाई, लेकिन दर्शकों के दिलों में उनकी लोकप्रियता आज भी बनी हुई है। आज उनके जन्मदिन के अवसर पर हम उन्हें हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। उनकी मुस्कान, अभिनय और फिल्मों के यादगार किरदार हिंदी सिनेमा के इतिहास में सदैव याद किए जाते रहेंगे। और अब लीजिए सुनिए उन्हीं का फिल्माया ये गीत। फिल्म का नाम है दिल तो पागल है। स्वर दिया है लता मंगेशकर और उदित नारायण ने। गीत के बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने और संगीत है उत्तम सिंह का।

साथियों, अभी आपने सुना फिल्म दिल तो पागल है का ये गीत, और इसी गीत के साथ ही आज का बातों और गीतों का कार्यक्रम गुंजन अब यहीं समाप्त होता है।

0: मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। सुबह के 9:55 होने वाले हैं। प्रादेशिक समाचार अब हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।
1: ये आकाशवाणी रायपुर है, प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं राहुल सिन्हा। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। प्रदेश में बहुमंजिला भवनों, कोचिंग संस्थानों, होटलों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की सुरक्षा व्यवस्था का विशेष ऑडिट कराया जाएगा। मुख्यमंत्री ने नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर छत्तीसगढ़

0: में अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान की स्थापना का प्रस्ताव रखा और अगले एक दो दिनों में उत्तर छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में मानसून के सक्रिय होने की संभावना है। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राज्य में जन सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बहुमंजिला भवनों, कोचिंग संस्थानों, होटलों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की सुरक्षा व्यवस्था का विशेष ऑडिट कराने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव को राज्यभर में अग्नि सुरक्षा, भवन सुरक्षा और आपातकालीन व्यवस्थाओं की जांच कराने को कहा है। सभी जिलों में विशेष निरीक्षण अभियान चलाया जाएगा। इसमें फायर, एनओसी, अग्निशमन उपकरण, आपातकालीन निकास, विद्युत व्यवस्था और भवन की सुरक्षा जांची जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सुरक्षा मानकों की अनदेखी करने वालों पर नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नई दिल्ली में केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर छत्तीसगढ़, विशेषकर बस्तर क्षेत्र के विकास कार्यों और जन कल्याणकारी योजनाओं पर चर्चा की। इस दौरान उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री ने बताया कि बस्तर में सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल और संचार सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है तथा हमारी सरकार सेवाएं लोगों तक पहुंचा रही है। उन्होंने छत्तीसगढ़ में अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान की स्थापना का प्रस्ताव भी रखा। मुख्यमंत्री ने कहा कि बस्तर विकास और पर्यटन के नए केंद्र के रूप में उभर रहा है। केंद्रीय मंत्री ने राज्य को हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया। देशभर में आज संविधान हत्या दिवस मनाया जा रहा है। यह दिवस 25 जून 1975 को लगाए गए आपातकाल की याद दिलाता है, जब देश में संवैधानिक अधिकार और लोकतांत्रिक मूल्य गंभीर रूप से प्रभावित हुए थे। यह दिन उन सभी लोगों को श्रद्धांजलि देने का अवसर भी है जिन्होंने आपातकाल के दौरान दमन, उत्पीड़न और कठिन परिस्थितियों का सामना किया। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ सहित देशभर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में इस दिन को भारतीय लोकतंत्र का काला दिवस बताते हुए कहा कि प्रदेश सरकार ने लोकतंत्र सेनानियों के सम्मान को पुनर्स्थापित किया है। इससे पहले कल भारतीय जनता पार्टी की रायपुर जिला इकाई ने आपातकाल के विरोध में मौन जुलूस निकाला। केंद्रीय विद्यालयों के लिए 36वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता का पुरस्कार वितरण समारोह आज नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल इस समारोह की अध्यक्षता करेंगे। श्री मेघवाल विजेता विद्यार्थियों और विद्यालयों को पुरस्कार प्रदान करेंगे। क्षेत्रीय स्तर पर प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले 20 केंद्रीय विद्यालयों में छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले का पीएमसी केंद्रीय विद्यालय भी शामिल है। राजनांदगांव में राज्य कर विभाग ने फर्जी बिलिंग के मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए मेसर्स आदेश्वर ट्रेड लिंक के संचालक आदेश्वर चौरड़िया को गिरफ्तार किया है। जांच में करीब 76 करोड़ रुपए के कागजी लेन देन और 8 करोड़ 22 लाख रुपए के संदिग्ध इनपुट टैक्स क्रेडिट का मामला सामने आया है। विभाग के अनुसार फर्म ने बिना वास्तविक खरीदी के फर्जी बिलों के माध्यम से कर लाभ लेने का प्रयास किया। मामले में अन्य लोगों और फर्मों की भूमिका की भी जाँच की जा रही है। आगामी 24 घंटों के दौरान उत्तर और मध्य छत्तीसगढ़ में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने के आसार हैं। वहीं एक दो स्थानों पर भारी वर्षा और गरज चमक के साथ आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी दी गई है। मौसम विज्ञानी डॉक्टर गायत्री वाणी ने बताया कि मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, कोरिया और सूरजपुर जिले को छोड़कर दक्षिण पश्चिम मानसून प्रदेश के सभी जिलों में पहुंच चुका है। उन्होंने बताया कि अगले एक दो दिनों में उत्तर छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में मानसून के सक्रिय होने की संभावना है। छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक मर्यादित अपेक्स बैंक की ब्रह्मकिला शाखा में 18 करोड़ 13 लाख रुपए के गबन के मामले में बैंक प्रबंधन ने कार्रवाई करते हुए 8 कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया। इस मामले की जांच आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो ईओडब्ल्यू करेगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में बहुमंजिला भवनों, कोचिंग संस्थानों, होटलों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की सुरक्षा व्यवस्था का विशेष ऑडिट कराया जाएगा। मुख्यमंत्री ने नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर छत्तीसगढ़ में अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान की स्थापना का प्रस्ताव रखा और अगले एक दो दिनों में उत्तर छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में मानसून के सक्रिय होने की संभावना। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन 11:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
1: प्रादेशिक समाचार अभी हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से अनुप्रसारित कर रहे थे। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। सुबह के 10 बजे हैं। अब हम आपको बता दें तापमान की सूचना। स्थानीय मौसम कार्यालय से प्राप्त सूचना के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान अंबिकापुर नगर का अधिकतम तापमान

33.5 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तापमान की सूचना समाप्त हुई। अब हम आपको बता दें हमारे आज के शेष कार्यक्रमों के बारे में जानकारी। अब से कुछ ही देर में आप सुनिएगा फोन इन कार्यक्रम गांव कर गीत। सुबह 11:05 पर कार्यक्रम आपकी पसंद का प्रसारण किया जाएगा। दिन में 12 आप सुनिएगा NCERT और CIET द्वारा प्रायोजित शैक्षणिक कार्यक्रम उमंग। दिन में 12:30 पर कार्यक्रम चयन आप सुनेंगे। दिन में 1:05 पर कार्यक्रम खेती की बात का पुनः प्रसारण आप सुन सकेंगे। दिन में 1:10 पर महिलाओं के कार्यक्रम घर आंगन में आप सुनेंगे क्रम बातचीत में नई तकनीक नई सीख जो सिखाता है आगे बढ़ना, इस विषय पर बातचीत, क्रम गुलदस्ता, क्रम घरेलू नुस्खे और कुछ गीत संगीत। दिन में 1:40 पर और रात 9:30 पर श्रोताओं के ईमेल पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम ईमेल की गूंज का प्रसारण किया जाएगा। हमारी तीसरी सभा में 5:00 हम आपको सुनाएंगे प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोठ। 5:30 पर युवा श्रोताओं का कार्यक्रम युववाणी में युवा साथी आज सुनेंगे क्रम युवा सोच और क्रम महफिल का प्रसारण किया जाएगा। 6:05 पर कार्यक्रम विचार बिंदु का पुनः प्रसारण किया जाएगा। 7:20 पर ग्रामीण श्रोता और किसान भाई सुनेंगे अपना पसंदीदा कार्यक्रम चौपाल। इसमें आज सुनिएगा प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना और लोकतंत्र की रक्षा, हर नागरिक की जिम्मेदारी, संविधान हत्या दिवस, इन विषयों पर सामयिक चर्चा। 7:30 पर क्रम किसानवाड़ी में सुनिएगा किसानों और कृषि विशेषज्ञों से स्थल रिकॉर्डिंग पर आधारित कार्यक्रम किसान संध्या। मंडी भाव मौसम कर जानकारी, मौसम आधारित कृषि परामर्श और क्रम आज कर सवाल। 8:00 सुनिएगा सोशल मीडिया आधारित श्रोताओं की पसंद का फरमाइशी कार्यक्रम सोशल मीडिया की गूंज इंस्टा फरमाइश। 10:00 शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम सूर्यामिनी में सुनिएगा पंडित मल्लिकार्जुन मंसूर का गायन राग विभास। 10:30 पर श्रोताओं के पत्रों पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मन भावन का प्रसारण किया जाएगा। तो श्रोताओं, ये तो थे हमारे आज के शेष कार्यक्रम। अब लीजिए सुनिए लोक गीतों का फोन इन कार्यक्रम गांव कर गीत। प्रस्तुत करता है प्रमेंद्र कुमार और प्रस्तुति सहायक हैं कृष्णानंद तिवारी।

0: गांव का गीत।
1: गांव कर माटी, गांव गवई कर गंध, और हियां कर सुर संगीत। त एक धार फिर लेके आ गए हूँ मैं राउर मनकर अपन किश्नु भैया कृष्णानंद, आप मनकर पसंदीदा लोक गीत कर फरमाइश कर कार्यक्रम गांव कर गीत, जहाँ सुनबो आप मन अपन गांव के बोली बानी, महसूस करबो हमर सरगुजिया संस्कृति परंपरा और लोक कला कर गंध, जहाँ झूम जाही राउर मनकर मन लोक धुन कर संग। तलेगी देर नहीं करती और सुनती आज काकर आई सवे सबले पहली फोन। हेलो, गांव कर गीत कार्यक्रम।
2: हाँ कृष्णानंद दादा, राम राम।
1: राम राम, कौन भैया बोला थी?
2: मैं
1: राहुल कर, बहुत बहुत स्वागत है हमारे गांव कर गीत कार्यक्रम में।
2: बहुत बहुत धन्यवाद।
1: आओ बताइए क्या हाल चाल राहुल कर?
2: ठीक है हाल चाल।
1: का काम बुता चलता है?
2: अभी तो काम बुता अभी कुछ नहीं चला था, अभी जाम खवाई चला था, पानी आनी आई से अभी तो थोड़ा सा गीला होगी से कुछ कुछ जगाना रही।
1: तो आज का गीत सुना बरो रहे?
2: आज विजय सिरदार की आवाज में बढ़िया सा गीत बज रही है, और मैं यही कहूँ कि कार्यक्रम के माध्यम से जैसे गांव गली में पानी गिर गई से है ना, खेती बाड़ी बढ़िया से नांगर वगैरह जुताई करें, और कहा है कि बहुत जमन आज भी जमीन में सोते हैं तो बढ़िया खटिया चरपाई का उपयोग करल करें है ना, ताकि

0: साथ बिच्छू अभी भाई पानी थोड़ा थोड़ा गिरे थे और उमस भी बढ़ी से, तो भाई सांप बिच्छू निकलते रहते ना, तो एकर से डर भाई बने रहे है ना। और कहीं भी बहरी अपन जाए तो तार चार जला के देख ताक के जाना चाहिए एक दूसरे जगह ना, है ना।
1: बहुत सही बात कहन भाई, काहे की देखिए बरखा तो शुरू ही छोएगी सह।
0: हाँ
1: ये तो राउर हमारे कार्यक्रम गांव का गीत में फोन करें नहीं, राउर ला बहुत बहुत धन्यवाद और लेगी सुनी राउर पसंद कर ये लोग गीत।
0: हाँ बहुत बहुत।
2: जंगल खोजे झाड़ी खोजे खोजे।

0: हेलो, गांव का गीत कार्यक्रम।
1: हाँ भैया, राम राम।
0: राम राम भैया, कौन भैया बोले थे?
1: हम भी क्या बोले, राजकुमार ने भनी बदन भैया।
0: राम राम राजकुमार जी।
1: हाँ भैया, चलो भैया आकाशवाणी के
0: बने बनिया है। राउर अपन बताई।
1: थोड़ा सा पानी गिरी भैया, लेकिन फिर घाम निकल गई।
0: हाँ, उमस नहीं,
1: उमस उमस अतना ढेरे पानी गिरत नहीं है। बरखा के पता नहीं चल क्या हुई, कैसे समझे में नहीं आता।
0: खेती बाड़ी कर काम बूता हर भी शुरू नहीं हो पाता है। नहीं,
1: हाँ पिछड़ा पिछड़ा गई सर, खेती बाड़ी के काम काज भैया। एक ममता चंदा के गाना सुने के रेस भैया।
0: अच्छा अच्छा अच्छा
1: कोई भी गाना तुम्हारे पसंद के मैं सुना दे तो दादा हमारे रेडियो सेट में।
0: हाँ, तो राजकुमार जी दे हमारे कार्यक्रम गांव का गीत में राहुल फोन करे नहीं। राहुल बहुत बहुत धन्यवाद।
1: राम राम भैया।

0: हेलो, गांव का गीत कार्यक्रम।
1: राम राम भैया।
0: राम राम भैया। कौन भैया बोला थी?
1: मैं सुरेश कुमार सारथी बोला था भैया, 20 कुर्मी पारा दे में तरा ले भैया। आज दिन बाद फोन लगे है, वो सब बढ़िया है भैया?
0: बढ़िया है। राउर अपन हाल चाल ला बताई।
1: अभी तो गर्मी के मौसम है, मानसून आए नहीं है, पानी गिरत नहीं है,
0: अगोरा है नहीं,
1: अगोरा हवा है। खेती बाड़ी के अभी काम शुरू हो गए है, मगर बोवाई वोवाई है अभी नहीं हुआ है भैया। तो अब ओखरे इंतजार महावन बरखा रानी के, जैसे बरसात शुरू हो ही भैया, पानी कानी गिरी धान बोवाई पूरा धड़ल्ले से चल ही। गर्मी तो अभी भारी तेज हवा है, घर ले निकलना मुश्किल हो जाते है, लेकिन का है मैं सारथी हूँ, तैसे मोर काम घलो सारथी के भैया, मैं ड्राइवर हूँ, गाड़ी चलाता हूँ। तो अभी मैं बरसात खान और गर्मी अमन मंदर तो सब एक बराबर हवा है,
0: एक बराबर सही बात है।
1: तो अभी एक हफ्ता पहले थोड़ा से बूंदाबांदी हुई, तो 3 खंड पेड़ लगाए हूँ भैया।
0: अच्छा,
1: बरगद नीम के और पीपल के झाड़ लगाए हूँ, और सुरक्षा पर बढ़िया काटल घेर दे भैया, सुबह शाम पानी डालता हूँ। अब मोला लेट हो जाते, कहीं बुकिंग वुकिंग में चल लेता हूँ भैया, तो लेकर के पानी डाल देते।
0: ये काम देखिए राउर बहुत बढ़िया करे ना, और राउर करे गोयट ला सुन ही नहीं हमार सुनवैया भैया बहनी मन, तो वो मन ये बात कर प्रेरणा ले ही नहीं कि हम मलाई दे वृक्षारोपण करना चाहिए।
1: बिल्कुल, एक पेड़ जरूर लगावे भैया, ताकि आगे भविष्य में भीषण गर्मी और ये जल संकट के जो समस्या हवा तेना हमार पीढ़ी मन पर ऐसा समस्या मत रहा है।
0: हाँ, एकदम सही बात।
1: बचाव के बचा के चलना है भैया।
0: एकदम सही गोयट कहें सुरेश जी। तो ये आज हमार कार्यक्रम गांव कर गीत में फोन करे ही, का गीत सुना प्रभु रे?
1: तो अभी खेती बाड़ी के समय आए हैं भैया, तो खेती बाड़ी डर के कोई कारखन बढ़िया संगीत ला सुनवा देते हो भैया?
0: अच्छा अच्छा।
1: शिवार को तिले आप मन के केंद्र के जतका सदस्य के भाई मन हवा, भाई बहनी मन है, आप मन के पूरा यूनिट ला गाड़ा गाड़ा बधाई भैया।
0: राउर ला भी सुरेश जी, और रे लेगी सुनिए राउर मन कर पसंद कर रे किसानी गीत।
1: धन्यवाद भैया, धन्यवाद।
0: हाँ वेदर राउर हमार कार्यक्रम गांव का गीत में फोन, राउर ला बहुत बहुत धन्यवाद।
1: हाँ धन्यवाद भैया।

0: हाँ गांव कर की दादा जयराम दादा।
1: जयराम दादा कौन दादा बोला थी?
0: मैं विनय तिवारी बोला था मोहनपुर छपरा ले।
1: राम राम विनय जी।
0: राम राम भैया जी राम राम।
1: आओ का हाल चाल राव कर?
0: तो हाल चाल तो सब बढ़िया बढ़िया दादा। सब नगद है।
1: आओ काम बुता।
0: और काम बुता भी अब खेती बाड़ी तैयारी में लगे। अभी भी बढ़िया पानी गिरी से।
1: अच्छा अच्छा हाँ तो कब गिर जाए
0: अभी भी
1: कब कब गिरता है?
0: हाँ दादा गिरत है। अभी तो हम अगर रोज गिरत है काल बल थोड़ा सा रोज पानी
1: नहीं पीने जी। तो आज दे हमारे कार्यक्रम गांव कर गीत में फोन करे ही का गीत सुनब रहो रहे?
0: तो दादा बरसात आ गई नहीं तो कोई सरगुजिया गीत सुना दी है आंध्र वाला
1: बरखा गीत नहीं।
0: हाँ
1: तो विनय जी हमारे कार्यक्रम गांव के गीत में रोक रहे फोन करे नहीं राहुल बहुत बहुत धन्यवाद
0: धन्यवाद धन्यवाद।

0: हेलो गांव का गीत कार्यक्रम।
1: हाँ भैया नमस्कार।
0: नमस्ते, कौन भैया बोले थे?
1: योगेश जांगड़े बोला था, शेरवा बांधा अभिनय करा ले। राम
0: राम राम योगेश जी।
1: राम भैया।
0: आओ, का हाल है योगेश जी आपका?
1: बढ़िया है भैया।
0: का काम बुता?
1: अभी तो बारिश तो हो नहीं है, तो थोड़ा बहुत अभी जुताई करके रख दे हम खेत ला। और जैसे बारिश हो ही ओनारी वगैरह काम देखो भी, बहुत लेट हो हुआ थे इस साल।
0: कुल मिलाई के बरखा करा गोरा है नहीं?
1: हाओ हाओ
0: तो योगेश जी, आज हमारे कार्यक्रम गांव घर गीत में फोन कर ही का गीत सुनब?
1: धुरवार अमर काम जी का आवाज में हवे भी है गीत। हाँ सुना दो कोई बढ़िया गीत ला।
0: हाँ, तो लेगी सुनी राहुल का
1: हाँ
0: पसंद करी गीत। योगेश जी, यदि हमारे कार्यक्रम गांव घर गीत में फोन करे नहीं, राहुल बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद।

हेलो, गांव का गीत कार्यक्रम। राम राम इंद्रभान जी। इंद्रभान जी, राउर का आवाज़ साफ नहीं आता है, लागत है राउर कहीं जात ही। अब इधर राउर यदि हमारे कार्यक्रम गांव का गीत में फोन करे ही नहीं, और राउर कर पसंद तो देखी तंबूरा मधे कर गीत रथे, तो लेगी सुनी राउर कर पसंद कर ये गीत।

0: हेलो, गांव का गीत
1: हेलो। हाँ
0: कार्यक्रम।
1: भैया, गांव का गीत कार्यक्रम।
0: हाँ, कौन भैया बोला थी?
1: भैया मैं तारकेश्वरपुर से मधुसूदन प्रजापति बोलता हूँ।
0: राम राम मधुसूदन जी।
1: राम राम भैया, राम राम। और बताइए क्या हाल चाल है आपके अंबिकापुर का?
0: बने बने आ है राउर, अपन बताइए।
1: हमरों को अति ठीक है चाहे भैया,
0: आओ खेती बाड़ी।
1: चला तो है तैयारी की दी। अब का है ना, पानी है बरस ही तय खरा उरा करते कही दी, तो अभी तो पानी लग रहा सही।
0: ऐसे नहीं
1: हाँ
0: हाँ, तो ऐसे तो बीच बीच में आता है एक आध दो दिन छोड़ के।
1: हाँ वो तो आता है, लेकिन हमारे कति नहीं बची सुविधा। सुनने में आते तुम्हारे अंबिकापुर में हर 8-8 दिन पानी बरसते है।
0: हाँ, वो एक दिन के आतर
1: नहीं,
0: हाँ, एक दिन कर आतर करके बरसत है। बाकी वही
1: नहीं।
0: भाई किसान भैया बहनी मन पर तो फिक्र कर बात है। तो ने मधुसूदन जी, आधे रे गांव कर गीत में फोन करे ही, का गीत सुनब रे?
1: हाँ भैया, हाँ। तो का है ना, अभी के दिन अभी खेती किसानी चलता है नहीं, तो खेती किसानी से जुड़ल भाई बढ़िया सुनाए दिए छत्तीसगढ़ी।
0: किसानी गीत नहीं?
1: हाँ, छत्तीसगढ़ी गीत खेती किसानी से जुड़ल।
0: हाँ, मधुसूदन जी, ये दे हमारे कार्यक्रम गांव का गीत में रउरे फोन करें। राउला, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद भैया आपको।

0: मैं बोल तो भैया रावत भैया बनिया पारा धमतरी छत्तीसगढ़ से रामचंद्र माखीजा काफिर भाई बोल रहे हैं भैया।
1: अच्छा, तो राम राम जी।
0: राम राम भाई।
1: आओ बताइए क्या हाल चाल।
0: हाल चाल बने बने हैं।
1: तो राहुल रे कार्यक्रम गांव कर गीत में फोन करे ही, का गीत सुनो ब्रो रे।
0: आप मन सुनाओ भैया। मोर संग चलो जी, मोर संग चलोगा, गिरे हुए हफ्ते मन, डरे परे मन ही मन, श्री लक्ष्मण मसूरे जी की आवाज में है।
1: अच्छा, इधर राहुल हमारे कार्यक्रम गांव कर गीत में फोन करे नहीं राहुल, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: ओके भैया, धन्यवाद। आओ घूमे पर धमतरी।
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल,
0: वंदे मातरम।

0: यही गीत का साथ समेटे थी आजकर गांव कर गीत कार्यक्रम। ये कार्यक्रम कर प्रस्तुतकर्ता रहीन परमेंद्र कुमार और प्रस्तुति सहायक मैं राउर मनकर अपन किष्णु भैया कृष्णानंद।
1: गांव कर गीत।
2: सुबह के 11 बजने वाले हैं। अब हम हिंदी समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करते हैं।
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। आज संविधान हत्या दिवस है। ये दिवस 25 जून 1975 को लगाए गए आपातकाल की याद दिलाता है, जब देश में संवैधानिक अधिकार और लोकतांत्रिक मूल्य गंभीर रूप से प्रभावित हुए थे। देश भर में आज इससे जुड़े कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपातकाल के दौरान लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए दृढ़ संकल्पित रहे लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि आपातकाल संविधान पर सीधा हमला था। उन्होंने कहा कि इस दौरान नागरिक स्वतंत्रता निलंबित की गई, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाया गया और राजनीतिक नेताओं, पत्रकारों तथा सामाजिक कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस दौरान लोकतांत्रिक संस्थाएं भी निशाने पर रहीं। गृहमंत्री अमित शाह ने भी आपातकाल के खिलाफ संघर्ष करने वाले लोकतंत्र सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पोस्ट में गृहमंत्री ने कहा कि 25 जून 1975 भारतीय लोकतंत्र का एक काला अध्याय था, जब तत्कालीन सरकार ने संविधान, प्रेस की स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की आजादी को कमजोर करने का प्रयास

0: किया था। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि आपातकाल भारत के इतिहास का एक कठिन दौर था जब संविधान के मूल्यों की कड़ी परीक्षा हुई थी। उन्होंने कहा कि उस समय नागरिकों के कई अधिकार सीमित कर दिए गए, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर रोक लगाई गई और लोकतांत्रिक संस्थाओं पर भी असर पड़ा। भारत आज से हरियाणा के गुरुग्राम में 11वीं ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। दो दिन की बैठक में ऊर्जा सुरक्षा और स्थिरता, ऊर्जा का उपयोग और समानता तथा प्रौद्योगिकी और नवाचार विषयों पर चर्चा की जाएगी। पंजाब में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान की शुरुआत आज से होगी। ये अभियान 24 जुलाई तक चलेगा। राज्य की मुख्य चुनाव अधिकारी अनिंदिता मित्रा ने बताया कि अंतिम मतदाता सूची इस वर्ष 1 अक्टूबर को जारी की जाएगी। दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के लिए घर घर जाकर गणना 30 जून से शुरू होगी। इस संबंध में मुख्य चुनाव अधिकारी ने कल राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने आज उत्तर प्रदेश के वाराणसी स्थित लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से पहली इजी कनेक्ट उड़ान का उद्घाटन किया। दिल्ली के रास्ते वाराणसी को दुनिया से जोड़ने वाली ये पहली हब एंड स्पोक उड़ान भारत को दुनिया से निर्बाध रूप से जोड़ने के उद्देश्य से शुरू की गई है। ये एयर इंडिया द्वारा संचालित पहली इजी कनेक्ट सेवा है। ये सेवा आज वाराणसी से रवाना होगी। इजी कनेक्ट मॉडल के तहत यात्री अपने अंतिम अंतर्राष्ट्रीय गंतव्य के लिए चेक इन अपने शुरुआती हवाई अड्डे पर ही पूरा कर सकते हैं। आव्रजन संबंधी औपचारिकताएं भी प्रस्थान बिंदु पर ही पूरी कर ली जाएंगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से 3 दिन की ब्रिटेन यात्रा पर जाएंगे। इस दौरान वे भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते तथा उससे संबद्ध दोहरे अंशदान समझौते के कार्यान्वयन की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। ये समझौते अगले महीने की 15 तारीख से लागू होने वाले हैं। यात्रा से दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार और निवेश संबंधों को नई गति मिलने की उम्मीद है। वेनेजुएला की राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने भूकंप के कारण देश में आपातकाल की घोषणा की है। आज सुबह काराकस और आसपास के इलाकों में आए लगातार 7.2 और 7.5 तीव्रता के भूकंप के कारण कई इमारतें ढह गईं। राष्ट्रपति ने कक्षाएं और गैर आवश्यक गतिविधियों को अगले आदेश तक स्थगित कर दिया है। उन्होंने सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों में सार्वजनिक और निजी स्वास्थ्य नेटवर्क को भी सक्रिय कर दिया है। इस बीच कई जगहों पर बचाव अभियान जारी है। राष्ट्रपति ने कहा कि शक्तिशाली भूकंपों में 32 लोगों की मौत हो गई है और 700 से अधिक लोग घायल हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वेनेजुएला में आए भीषण भूकंप से हुई तबाही पर गहरा दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने वेनेजुएला सरकार और वहां के लोगों, विशेषकर अपनों को खोने वाले परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। घरेलू शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज शुरुआती कारोबार में वृद्धि के साथ खुले। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स लगभग 400 अंक की उछाल से 77,391 पर, जबकि निफ्टी 100 अंक से अधिक की वृद्धि के साथ 24,125 के आसपास कारोबार कर रहा था। फीफा फुटबॉल विश्व कप में दक्षिण अफ्रीका ने आज सुबह मॉन्टेरी में दक्षिण कोरिया पर 1-0 से जीत हासिल कर पहली बार विश्व कप के नॉकआउट चरण में प्रवेश कर लिया। इससे पहले आज मेक्सिको ने चेक गणराज्य को 3-0 से हराकर अपने ग्रुप के सभी तीनों मैच जीत लिए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 238.09 मीटर यानी 1260 किलोहर्ट्ज और एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये अंबिकापुर केंद्र है। 11:05 हुए हैं। आइए सुनते हैं फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी पसंद। आज इस कार्यक्रम में मैं आप सभी के साथ हूं पूनम उपाध्याय। तो चलिए श्रोताओं, शुरू करते हैं कार्यक्रम में ये पहला गीत आपकी पसंद पर, फिल्म प्यार झुकता नहीं से। आवाजें हैं लता मंगेशकर शब्बीर कुमार की, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का और बोल हैं SH बिहारी के। पसंद किया है इस गीत को। पीपरपारा पालचुआ मुंगेली छत्तीसगढ़ से उत्तरा कुमार दिवाकर, परमेश्वरी दिवाकर, योगिता दिवाकर, नितिन दिवाकर, वंशिका दिवाकर ने, चिरमिरी रोड जिला कोरबा कटघोरा छत्तीसगढ़ से नैनदास, शीला दीवान, ओम प्रकाश रुखमणी, जयप्रकाश, प्रीति दीवान, सिद्धांत, सौर्य और सानवी और पूरा परिवार। ग्राम बग बुड़वा पथरिया से नरेंद्र

नेताम कुसुम नेताम प्रोनिका प्रोनामिका उत्कर्ष नेताम ने भी सुनना चाहा इस गीत को और इसी गीत के लिए पत्र लिखा है। इंदिरा बिहार रायगढ़ से वसीम अकरम नूरजहां डब्लू अकरम नूरजहां वली अकरम नूरजहां उल्ला अकरम नूरजहां ने राजनांदगांव से याकूब आसमा यूसुफ आसमा इमरान आसमा इरफान आसमा ने जेल रोड रायगढ़ से रेशमा तिवारी सोनम तिवारी आदिपा तिवारी ने चांदूर बिस्वा से नारायण भाऊ विठल राव खर्चे ललिता रानी खर्चे परी संजना खर्चे गणेश कार्तिक खर्चे ब्रोनो उषा सोरना खर्चे स्वाति प्रयाग चौधरी और मालती चौधरी ने धरसीवा से छेदूलाल यादव श्रीमती सीता यादव अर्चना अरुणा यादव अनुराधा अल्पना यादव ने भी पसंद किया है इस गीत को और इसी गीत को सुनना चाहा है। दुर्गापारा संतोषी नगर रायपुर से छन्नूलाल यादव अनुराग अभिषेक अलका अनामिका बलदाव यादव कुमारी खुशी रनु प्रवीण साहू सीएल यादव ने तो सुनते हैं कार्यक्रम का ये पहला गीत फिल्म है।

प्यार झुकता नहीं, इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर शब्बीर कुमार की आवाजों में। अब सुनते हैं अगला गीत आशा भोसले मोहम्मद अजीज की आवाजों में, इन दिवर का लिखा हुआ, संगीत भप्पी लहरी का और फिल्म मुद्दत। इस गीत को पसंद किया है कालापारा ग्राम राजापुर लकड़ापारा से रामचंद्र गुप्ता, रोशन राजवाड़े, राहुल राजवाड़े, पांडे राम राजवाड़े ने। ग्राम राजापुर लकड़ापारा जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़ से खेलसाय मरकाम, नयन प्रकाश मरकाम, शारदा मरकाम, संतोषी मरकाम, रूपमती मरकाम। ग्राम बेलर गांव सिहावा से मिथिलेश देवांगन, मधु देवांगन, हिमांशु अंकित देवांगन ने। वैष्णव कॉलोनी सनावद मध्य प्रदेश से मोहम्मद सादिक मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अलकमा खत्री, मोहम्मद अल्तमश खत्री, रमेश गौण, मोहम्मद शादाब खत्री ने। सपना संगीता रोड इंदौर से लाल फतेह चंदानी, लीला फतेह चंदानी, संगीता सुनीता, पिंकेश साक्षी, मनन और तानिया ने। ग्राम पंचायत खोंदला जनपद पंचायत सरगुजा छत्तीसगढ़ से जीवधन सिंह पैकरा, घुरनी पैकरा, करिश्मा पैकरा, कलेश्वर सिंह, सुमार साहब पैकरा ने। ग्राम बग बुड़वा पथरिया से नरेंद्र नेताम, कुसुम नेताम ने। देवीगंज रोड अंबिकापुर से राजकुमार निभवानी, संगीता निभवानी, आकाश निभवानी, पप्पू जसवाल, सुमैया राजवाड़े, पूजा सीता सागर, आयुषी हनी और उनके और परिवार के सभी सदस्यों ने। कन्या परिसर रोड अंबिकापुर से ही राखी श्रीवास्तव, महिमा श्रीवास्तव, नितिन श्रीवास्तव, सोनू वंदना और पूरा श्रीवास्तव परिवार ने। बठेना से बलकरण वर्मा, अंजनी वर्मा, कुमारी ज्योति वर्मा ने। चटौदा सारा गांव से सुजान वर्मा, सुहद्रा वर्मा, आयुषी कृत वर्मा ने। जिला खंडवा ग्राम लोहारी से राजेश कुमार धनजे, राहुल कुमार धनजे, विशाल कुमार धनजे, शीला धनजे, गायत्री धनजे ने। खुर्दी रोड मानपुर से विजय वैद, रानी वैद, महिमा वैद, नीतू वैद ने। आप सभी के पसंद पर सुनते हैं।

मुद्दत फिल्म से गीत अभी आप सुन रहे थे। आशा भोसले, मोहम्मद अजीज की आवाजों में। अब सुनते हैं एक बार फिर से लता मंगेशकर की आवाज में गुलामी फिल्म के का गीत। गुलजार के बोल हैं, संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। आवाजें फिर से सुनिए, आवाजें हैं लता मंगेशकर शब्बीर कुमार की, और इस गीत को पसंद किया है गांव परसा टोला जिला अंबागढ़ चौकी छत्तीसगढ़ से ओम प्रकाश मसिया, सुलोचनी मसिया, खुमेंद्र मसिया, तुषारनी मसिया ने, पोड़े से प्रियंका आर्या, पंकज वाड़ोदे ने, जरूर वरुण से बाबा साहेब वाड़ोदे, मीनाक्षी चरपे, रजनी कनीरे ने, करजी जिला कोरिया छत्तीसगढ़ से कुलेश्वर प्रसाद राजवाड़े, दीपक चांदनी, दीपा और कृति ने, ग्राम राजापुर जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़ से मानिक राम प्रजापति, श्रीमती जानकी प्रजापति, घनश्याम हरिशंकर, प्रशांत रत्नेश प्रजापति ने, मेहरनगर उमेरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत घुआणकर राही, श्रीमती सरिता घुआणकर, प्रिंस एकांश घुआणकर ने, बदलापुर मुंबई से सिद्धांत घुआणकर, प्रणीता घुआणकर, अर्जुन घुआणकर, टुकटुक ने, आकार हाइट्स बहादुरा नागपुर से वैशाली शैलेश घुआणकर, सुमित घुआणकर, ध्वनि घुआणकर परी ने, छत्रपति संभाजी नगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश, श्रीमती शीतल राजेश ने, डोंगरगांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका गजभिये, बेबी अनिष्का स्तनमय गजभिये ने, बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशन देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता देवांगन, डिंपल देवांगन ने, शिवाजी चौक राजिम छत्तीसगढ़ से अनिल कुमार, अंजुलता, आदित्य और कृष्ण श्रीवास्तव ने, अमरपुर पेंड्रा छत्तीसगढ़ से दीपक कुमार, रोशन कुमार, बंशीलाल, रेखा देवी, श्वेता देवी, दिशा और लवी श्रीवास्तव ने। आप सभी के पसंद पर सुनते हैं गुलजार के बोल लता मंगेशकर शब्बीर कुमार की आवाज़ों में गुलामी फिल्म से।

आप सुन रहे थे दूध का कर्ज फिल्म से गीत, अनुराधा पौडवाल मोहम्मद अजीज की आवाज़ों में। अब सुनते हैं गुलामी फिल्म का गीत, लता मंगेशकर शब्बीर कुमार की आवाज़ों में। बोल हैं गुलजार के संगीत लक्ष्मी।

श्रीकांत प्यारेलाल का है और इस गीत को सुनना चाहा है आशीष कुमार पैकरा, नवनीत कुमार पैकरा, निर्मल कुमार पैकरा, चंचल सिंह पैकरा, रंजीता सिंह पैकरा, रीना सिंह पैकरा, श्वेता सिंह पैकरा ने। ये श्रोता साथी हैं ग्राम पंचायत खोडरी पोस्ट सलका विकासखंड उदयपुर जिला सरगुजा छत्तीसगढ़ से। इसी गीत को पसंद किया है लुधियाना पंजाब से अमरजीत सोनम कौर, परमजीत आदिबा कौर ने। बिहारी कॉलोनी महासमुंद से वली उल्लाह फकीर, डब्लू उल्लाह फकीर, परवीन आसमा फकीर ने। बुलंदशहर से बदरू वली अंसारी, फर्जू

कौर ने बिहारी कॉलोनी महासमुंद से, वली उल्लाह फकीर डब्लू उल्लाह फकीर, परवीन आसमा फकीर ने बुलंदशहर से बदरू वली अंसारी, फर्जू वली अंसारी, फर्जी वली अंसारी ने। चार मीनार चौक गंडई पंडरिया से पसंद किया है इस गीत को दरिया नामल, अनीता मोटवानी, राजेश रेशम, अनिल राज मोटवानी ने। झूलेलाल चौक तिलदा से हरीश कमल सेतपाल, भूमिका सुशीला दादी ने। मेन रोड तिल्हारा से प्रकाश पोहरकार, नर्मदा पोहरकार, सुनील पोहरकार, सुजाता पोहरकार ने। रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, दतरंगी से भागवत वर्मा, लेवई से गुलाब दास मानिकपुरी, लच्छनपुर से विश्वनाथ साहू, सरडोंगरी पिपरिया से दुर्गाराम साहू, बेरड़ी से हुकुम करमकर, सुनीता करमकर, हार्दिक करमकर, प्राची करमकर, तनु करमकर ने। तो सुनते हैं आप सभी के पसंद पर कार्यक्रम का ये गीत, फिल्म है गुलामी।

0: गुलामी फिल्म से गीत अभी आप लता मंगेशकर शबीर कुमार की आवाजों में सुन रहे थे। ये वक्त है थोड़े से अंतराल का।
1: चौपाल में नवा कार्यक्रम शुरू हुई सवे रविवार संझा के ठीक 7:30 बजे से।
2: हाँ फरमाइशी कार्यक्रम हवे संगी अपन फरमाइश भेजी और हमन गीत बजाबो।
1: कौन सा गीत?
3: सुघर गीत जैसे ए
4: तोरे खोपा माँ चंदनी गोंदा फूल हवे वो तोरे खोपा माँ चंदनी गोंदा

0: बस हमर कार्यक्रम में मेल करी किसान वाणी अंबिकापुर 2026@gmail.com। जुलाई के पहला रविवार से कार्यक्रम शुरू होई।
1: चौपाल फरमाइश।
2: एक बार फिर से स्वागत है कार्यक्रम में आप सभी का। आप आकाशवाणी अंबिकापुर से सुन रहे हैं फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी पसंद। सुनते हैं कार्यक्रम में ये गीत लावारिस फिल्म से, अलका याग्निक उदित नारायण की आवाज़ों में, बोल हैं जावेद अख्तर के, संगीत हैं राजेश रोशन का। और सुनना चाहा है इस गीत को सारस्ताल सोनगरा से प्रेम साय राजवाड़े, सुमार साय, मेर साय, शिव भगत, हेमंत कुमार, राम खिलावन सिंह पैकरानी। ग्राम बेहराम

और टेमा जिला खरगोन मध्य प्रदेश से डॉक्टर त्रिलोक चंद वर्मा, श्रीमती भागवत वर्मा, अभिषेक सीमा वर्मा, डॉक्टर अमित वर्मा, सचिन समरराज, आर्यन वर्मा, बेबी आरोही ईशिका वर्मा, अंजलि श्वेता वर्मा ने। आदर्श नगर मालोट से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरव शर्मा, शाइना शर्मा ने। महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारिणी ठाकुर, सूरज ठाकुर, सुजला ठाकुर, ज्योति ठाकुर, रियांश ठाकुर ने। भाटापारा धतरेंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा, जावेंद्र कुमार वर्मा ने। सेक्टर मोहाली चंडीगढ़ 67 से डीटी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह ठाकुर, डॉक्टर अमनदीप, कालका से शुभचंद्र बजाज, बिट्टा बजाज, साहिल ने। अटल रेडियो श्रोता संघ साकरा, सोमनी जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से नारायण लाल साहू, कुलवंतिन देवी, देवेंद्र प्रसाद साहू, नेहा, मिलिंद कुमार, प्रणय कुमार, रुद्रांश प्रताप साहू ने। नवागढ़ कटई से नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांत वर्मा, सीमा शारदा, दामिनी वर्मा ने। बेमेतरा से सुरेश सारथी, पूर्णिमा सारथी ने। सरोज चौक अमरावती महाराष्ट्र से कमरुल्ला ठेकेदार, नसीम बेगम, आयशा खान, हदिया खान, आसमा सालिया, सोएब खान ने। साइमा खान, राउफ भाई, शहीद भाई ने। गांधीबाग अकोला से रमेश कटनकर, वैशाली कटनकर ने। पहरा अहिवारा जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से पोषण बंछोर, चंद्र किरण, प्रीति छाया बंछोर ने। आप सभी के पसंद पर सुनते हैं कार्यक्रम का ये गीत लावारिस फिल्म से।

0: राहुल, तुम्हारी नई दुकान का कलेक्शन तो जबरदस्त है, पर दुकान में सन्नाटा क्यों है?
1: वही तो परेशानी है रिया। कपड़े तो बेस्ट हैं, पर पूरे अंबिकापुर को पता कैसे चले?
0: अरे तो शहर के सबसे बड़े लाउड स्पीकर का इस्तेमाल करो ना, 230-600।
1: क्या 230-600?
0: हाँ, आकाशवाणी अंबिकापुर, यहाँ एक विज्ञापन और तुम्हारी दुकान पर ग्राहकों की लाइन।
1: पक्का?
0: हाँ, बस कोड लगाओ 07774 और मिला दो 230-600। अब अपनी दुकान को बनाओ शहर की शान।
2: आकाशवाणी अंबिकापुर, सफलता की पक्की गूंज।
3: और कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं ये गीत, जानम समझो समझा करो फिल्म से। जशपिंदर नरूला की आवाज में मजरूह की रचना है, संगीत अनु मलिक का है। सुनना चाहा है इस गीत को पोटिया कला दुर्ग से संजय साहू, सुजाता साहू, शशांक साहू ने। चांदनी चौक गंडई पंडरिया से पवन कुमार सेन, प्रभा देवी सेन, लकी विक्की नानू, रविंद्र सेन, खुशी रौनक सेन। गड़िया मौजी उस्तू से प्रदीप कुमार मंडल, आशीष कुमार मंडल, कुंदल मंडल, करीना कुमारी, पूजा कुमारी, आरती कुमारी, सुनीता देवी ने। जातुका किशनपुर से आलम दिलकश, शबाना नाज, इमरान राजा, रिजवान राही, आलम शेख, फिरोज आलम ने। गौतम नगर जिला नांदेड़ से प्रभाकर जोंदले, आरती जोंदले ने। रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा ने। रेलवे कॉलोनी हनुमानगढ़ जंक्शन से जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, जेएस नायक, शोभा नायक और पूरा डागला परिवार ने। बेरड़ी से राजेश सोनी, कंचन सोनी, गायत्री डोमने, वैष्णवी डोमने, चंचल डोमने, अर्जुन गवनेकर, धीरज सवासेरे ने। बनियापारा धमतरी से रामचंद्र माखीजा काफिर, श्रीमती सविता माखीजा, बेबी स्वाति माखीजा, माही, पूजा छुटकी, शरद कुमार और पूरा माखीजा परिवार। गौतम नगर जिला नांदेड़ से प्रभाकर जोंदले, आरती जोंदले ने। ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, मेहराज जहां ने। ये श्रोता साथी हैं आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से। दिल्ली शहर मोरी गेट से कन्हैया लाल, रीता देवी, शिल्पा रानी, आकाश कुमार ने। और गौरी नगर इंदौर से आनंद कुमार कामले, रेखा कामले, राखी पारस तपस्या, करिश्मा कामले ने। आप सभी के पसंद पर सुनते हैं कार्यक्रम का ये अंतिम गीत, फिल्म है जानम समझा करो।

0: ही पसंद अब समाप्त होता है। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये अंबिकापुर केंद्र है। प्रादेशिक समाचार अगले कुछ ही पलों में हम आकाशवाणी रायपुर से रिले करेंगे।
1: मैं राहुल सिन्हा। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। देश भर में आज संविधान हत्या दिवस मनाया जा रहा है। प्रदेश में बहुमंजिला भवनों, कोचिंग संस्थानों, होटलों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की सुरक्षा व्यवस्था का विशेष ऑडिट कराया जाएगा और पल्स पोलियो अभियान के तहत 28 जून को प्रदेश में 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई जाएगी। अब समाचार विस्तार से। देश भर में आज संविधान हत्या दिवस मनाया जा रहा है। यह दिवस 25 जून 1975 को लगाए गए आपातकाल की याद दिलाता है, जब देश में संवैधानिक अधिकार और लोकतांत्रिक मूल्य गंभीर रूप से प्रभावित हुए थे। यह दिन उन सभी लोगों को श्रद्धांजलि देने का अवसर भी है जिन्होंने आपातकाल के दौरान दमन, उत्पीड़न और कठिन परिस्थितियों का सामना किया। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ में भी विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में इस दिन को भारतीय लोकतंत्र का काला दिवस बताते हुए कहा कि प्रदेश सरकार ने लोकतंत्र सेनानियों के सम्मान को पुनर्स्थापित किया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राज्य में जन सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बहुमंजिला भवनों, कोचिंग संस्थानों, होटलों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की सुरक्षा व्यवस्था का विशेष ऑडिट कराने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव को राज्यभर में अग्नि सुरक्षा, भवन सुरक्षा और आपातकालीन व्यवस्थाओं की जांच कराने को कहा है। सभी जिलों में विशेष निरीक्षण अभियान चलाया जाएगा। इसमें फायर एनओसी, अग्निशमन उपकरण, आपातकालीन निकास, विद्युत व्यवस्था और भवन की सुरक्षा की जांच की जाएगी। पल्स पोलियो अभियान के तहत 28 जून को प्रदेश में 0 से लेकर 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई जाएगी। वहीं छूटे हुए बच्चों को 29 और 30 जून को मॉपअप अभियान के तहत स्वास्थ्य कार्यकर्ता और मितानिन घर घर जाकर दवा पिलाएंगे। स्वास्थ्य विभाग ने अभिभावकों से अपील की है कि वे 28 जून को अपने नजदीकी पोलियो बूथ पर जाकर बच्चों को पोलियो की दवा अवश्य पिलाएं। छत्तीसगढ़ में 29 जून से 6 जुलाई तक सहकारिता सप्ताह मनाया जाएगा। राज्य के सभी जिलों, विकासखंडों और सहकारी समितियों में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। सहकारिता सप्ताह के दौरान जागरूकता, जनभागीदारी और नवाचार पर विशेष फोकस रहेगा। स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव से ली गई विशेष भेंट वार्ता का प्रसारण आकाशवाणी द्वारा कल 26 जून को किया जाएगा। यह कार्यक्रम सुबह 10:25 तक प्रसारित होगा। प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रायपुर द्वारा तैयार इस कार्यक्रम का प्रसारण छत्तीसगढ़ के सभी आकाशवाणी केंद्रों से किया जाएगा। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के बिलासपुर मंडल में निपनिया भाटापारा सेक्शन में अंडरब्रिज निर्माण कार्य के तहत रिलीविंग गर्डर डीलॉन्चिंग का काम किया जाएगा। इसके चलते 25 जून से 29 जून तक कई ट्रेनों का परिचालन प्रभावित रहेगा। रेलवे प्रशासन ने 10 ट्रेनों को रद्द करने के साथ ही 3 ट्रेनों को शॉर्ट टर्मिनेट करने का निर्णय लिया है। छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक मर्यादित अपेक्स बैंक की बरमकिला शाखा में 18 करोड़ 13 लाख रुपए के गबन के मामले में बैंक प्रबंधन ने कार्रवाई करते हुए 8 कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया है। बैंक प्रबंधन ने स्पष्ट किया है कि गबन में शामिल अधिकारियों और कर्मचारियों से नियमानुसार राशि की वसूली की जाएगी। इस मामले की जांच आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो ईओडब्ल्यू करेगी। बलरामपुर जिले के सहकारी बैंक घोटाले मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने जांच शुरू कर दी है। करीब 30 करोड़ 51 लाख रुपए की वित्तीय अनियमितताओं की जांच की जा रही है। मामले में 500 किसानों की शिकायतें आधार बनी है। जांच के दायरे में शंकरगढ़, कुसमी और रामानुजगंज की सहकारी बैंक शाखाएं शामिल हैं। ईडी वित्तीय लेन देन और ऋण वितरण से जुड़े दस्तावेजों की जांच करेगा। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। मत्स्य विभाग द्वारा प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना PMMKSSY के तहत आज रायपुर में जल कृषि बीमा जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा और रायपुर रेल मंडल के अंतर्गत भिलाई के सिरसा अंडर ब्रिज में मरम्मत कार्य की वजह से 1 अगस्त तक आवाजाही बंद रहेगी। राजधानी रायपुर के सेजबार स्थित इंजीनियरिंग कॉलेज में आज दोपहर 3 बजे तक संभाग स्तरीय रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। इसमें निजी प्रतिष्ठानों द्वारा 900 से अधिक रिक्त पदों पर भर्ती की जाएगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश भर में आज संविधान हत्या दिवस मनाया जा रहा है। प्रदेश में बहुमंजिला भवनों, कोचिंग संस्थानों, होटलों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की सुरक्षा व्यवस्था का विशेष ऑडिट कराया जाएगा और पल्स पोलियो अभियान के तहत 28 जून को प्रदेश में 5 वर्ष तक के बच्चों को पल्स पोलियो की दवा पिलाई जाएगी। इसी के

मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये अंबिकापुर केंद्र है। दोपहर के 12 बजे हैं। आइए सुनते हैं एनसीईआरटी और सीआईईटी द्वारा प्रायोजित शैक्षणिक कार्यक्रम उमंग।

0: CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
0: आप सभी श्रोताओं का स्वागत है उमंग कार्यक्रम में। मैं हूं आपका मित्र अजीत। नमस्कार। छत्तीसगढ़ पथरिया भरेवा से चंदूलाल सिंह रौल, नारायणी सिंह रौल, नोमेश सिंह रौल, नेहा और वान्या सिंह रौल जी ने सुविचार भेजते हुए लिखा है, दूसरों को सम्मान देने वाला व्यक्ति स्वयं सम्मान का अधिकारी बन जाता है। इस सुंदर विचार के लिए आप सबको हमारा आभार। और आइए सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है सरगुजा मैनपाट से रुबीना थापा, सोनम थापा, फातिमा थापा, आसमा थापा, आदिबा थापा, रेशमा थापा, कुमारी वली थापा और कुमारी डब्ल्यू थापा। जेल रोड कानपुर से रोशन आसमा, सरफुद्दीन, फातिमा थापा, वसीम अकरम बेलदार और डब्ल्यू सोनम थापा। स्वार रोड मुरसेना से गुलफशां इदरीसी, जीनत अमान इदरीसी, नाजिया, शाजिया, भाई मोहम्मद नादिर, मोहम्मद साजिद, छोटू, नाहिद और पापा हबीब अहमद इदरीसी। कृष्णा पार्क दिल्ली से असलम आसमा कुरैशी और अकरम आसमा कुरैशी। आप सभी श्रोताओं को धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। और आइए चलते हैं एक बार फिर से हमारी आपकी सबकी जानी पहचानी श्रृंखला ये भी जानिए की अगली कड़ी में। साथियों, इन दिनों हम बात कर रहे हैं भारत की

0: गुफाएं लगभग 10 लाख वर्ष पुरानी हैं। लेकिन ये जानना भी बहुत रोचक होगा कि इन गुफाओं का निर्माण आखिर कैसे हुआ। श्रोताओं, यहाँ एक नदी है जिसका नाम गोस्थानी है। गोस्थानी नदी की छोटी छोटी जलधाराएं यहाँ की चूना पत्थर से बनी पहाड़ियों पर लाखों वर्षों से बहती रही हैं। इस नदी की धार में एक खास प्रकार का अम्ल या एसिड है जिसे ह्यूमिक एसिड कहते हैं। इसने चट्टानों को खरादना शुरू किया और लाखों वर्षों में एक विशाल गुफा बना दी। सच में प्रकृति का करिश्मा आश्चर्यजनक है। श्रोताओं, इन गुफाओं की सबसे रोचक बात यह है कि यहाँ के खरादे हुए पत्थर छत से लटकते हुए और फर्श से ऊपर उठते हुए दिखाई देते हैं। नदी के लगातार टपकते पानी ने यहाँ के पत्थरों को अद्भुत आकार प्रदान किया है। श्रोताओं, सुखद आश्चर्य होता है कि नदी के पानी द्वारा खरादे गए पत्थरों की प्राकृतिक आकृतियाँ इतनी अनोखी और वास्तविक हैं कि लोगों ने इनके नाम रख दिए हैं, जैसे शिव पार्वती, माँ बच्चा, ऋषि की दाढ़ी, मगरमच्छ, गाय इत्यादि। है ना बड़ी अद्भुत बात। सच में श्रोताओं, प्रकृति बड़ी अद्भुत शिल्पकार है। और तो और श्रोताओं, एक बात और आपको बता दें कि गुफा के बीचों बीच एक ऐसा पत्थर है जो बिल्कुल शिवलिंग की तरह दिखाई पड़ता है जिस पर पानी टपकता रहता है। स्थानीय लोग इसे पवित्र मानते हैं। तो श्रोताओं, ये तो बात हुई गोर्रा गुफाओं की। आइए बात करते हैं आखिर इसकी खोज कैसे हुई। ये जानना भी बहुत जरूरी है। सन 1807 की बात है। ब्रिटिश भूवैज्ञानिक विलियम किंग जॉर्ज ने इसकी खोज तब की जब वे चट्टानों पर नदी के प्रभाव का अध्ययन करने इस क्षेत्र में आए। जब उन्होंने इन गुफाओं में प्रकृति द्वारा लाखों वर्षों में निर्मित इन अद्भुत आकृतियों को देखा तो प्रकृति के इस करिश्मे को देखकर वे भी चकित रह गए। फिर उन्होंने विधिवत इन गुफाओं का दस्तावेजीकरण किया और उसे दुनिया के सामने प्रस्तुत किया। इन दिनों ये गुफाएं लोगों के आकर्षण का केंद्र हैं। इन गुफाओं को देखने बहुत बड़ी संख्या में पर्यटक और भूगर्भ शास्त्री आते हैं। श्रोताओं, जब हम प्रकृति के करिश्मे को देखते हैं तो हमें ये मान लेना चाहिए कि आकर्षण सिर्फ चकाचौंध और दिखावे में ही नहीं होता। सच्चा आकर्षण तो वहाँ है जहाँ हम अवलोकन करके ये समझ लेते हैं कि प्रकृति कितनी अनोखी और विस्मयकारी है। तो श्रोताओं, ये थी जानकारी अद्भुत विस्मयकारी आंध्र प्रदेश की बोर्रा गुफाओं की। अब सुनिए आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है, बोर्रा गुफाओं की खोज कैसे और किसने की। प्रश्न एक बार और सुन लीजिए, बोर्रा गुफाओं की खोज कैसे और किसने की। 8800440559 है हमारा IVRS नंबर और audio@cieet.nic.in है हमारे ईमेल का पता। आप इन पतों पर प्रश्नों के उत्तर और अपने संदेश भेज सकते हैं। जी हाँ, एक्स, इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं। अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम गिजू भाई बधे का। यह कार्यक्रम भारत के सुप्रसिद्ध शिक्षाविद गिजू भाई बधे का के शैक्षिक चिंतन और शिक्षा के क्षेत्र में उनके अनुप्रयोगों की जानकारी देता है। गिजू भाई बधे का जी ने मोंटेसरी शिक्षा पद्धति को भारतीय परिप्रेक्ष्य में दुनिया के सामने प्रस्तुत किया। उनकी बहुचर्चित पुस्तक दीवा स्वप्न के बारे में भी इस कार्यक्रम में जानकारी दी गई है।
1: गुरु भूमि यानी गुरुओं और शिक्षकों की भूमि, भारत की प्राचीन शिक्षा व्यवस्था ने असंख्य विद्वानों को जन्म दिया। शल्य चिकित्सा में आचार्य सुश्रुत और चिकित्सा विज्ञान में महर्षि चरक और बाल रोग विशेषज्ञ जीवक के बारे में भला कौन नहीं जानता।
2: खगोल विज्ञान और गणित में आर्यभट्ट, वराह मिहिर और भास्कराचार्य का नाम बहुत सम्मान से लिया जाता है। और भी बहुत से विद्वान हुए जिन्होंने विद्या के हर क्षेत्र में शिक्षा दी और ज्ञान का दीप प्रज्वलित किया।
1: यदि हम आधुनिक भारत की बात करें तो इसमें कई विलक्षण विभूतियां हुई जिनका शैक्षिक चिंतन और दर्शन सदा स्मरण रखा जाएगा।
2: उन विलक्षण आधुनिक विभूतियों में मुख्य रूप से हैं श्री अरविंद, भगिनी निवेदिता, रविंद्रनाथ टैगोर, सर्वपल्ली राधाकृष्णन और गिजू भाई बधे का।
1: साथियों, आज हम बात करेंगे सुप्रसिद्ध दार्शनिक एवं शैक्षिक

0: शुभाषित चिंतक गिजू भाई बधेका जी के, जो एक गुजराती लेखक और महान शिक्षा शास्त्री थे।
1: गिजू भाई बधेका का जन्म 15 नवंबर 1885 को गुजरात राज्य के सौराष्ट्र के चित्तल नामक गांव में हुआ था। उनका पूरा नाम गिरिजा शंकर बधेका था, लेकिन वो गिजू भाई के नाम से ही प्रसिद्ध हुए। उनके मन में बच्चों के प्रति अविरल स्नेह और गहरी संवेदना थी।
0: कहते हैं कि उनकी बचपन की शिक्षा बहुत पीड़ादायक थी। उन दिनों रटंत पद्धति का ही बोलबाला था। शिक्षा का अर्थ अक्सर पिटाई और बेत खाना हुआ करता था। अपने बचपन की यातनापूर्ण शिक्षा का उनके बाल मन पर भारी प्रभाव पड़ा। बचपन की शिक्षा की इस पीड़ा को वो कभी भूल नहीं पाए।

0: प्रणाम। हाँ तो बच्चों, कल मैंने तुम लोगों को डेढ़ का पहाड़ा सिखाया था और कहा था कि सबको याद करके आना है। याद किया है ना सबने? तो इसका मतलब हुआ किसी ने ठीक से याद नहीं किया है। बीजू, तुम सुनाओ।
1: जी मास्टर जी, मैंने कोशिश
0: कोशिश वोशिश मैं नहीं जानता, खड़े होकर सुनाओ।
1: जी जी, डेढ़ एकम डेढ़, डेढ़ दूना तीन।
0: अरे जल्दी जल्दी बोल, मेरी बेत भूल गया क्या?
1: जी जी जी, सुनाता हूँ। डेढ़ एकम डेढ़, डेढ़ दूना।
0: तुम सबके लिए मेरी बेत ही ठीक है। इधर इधर आओ सामने।
1: जी
0: कान खोल कर सुन लो तुम सब, यदि कल ठीक से याद नहीं करके आए तो सबका इससे भी बुरा हाल करूंगा, समझे?
2: जीजू भाई ने अपनी औपचारिक शिक्षा समाप्त की और उच्चतर अध्ययन के लिए बंबई चले गए, जो आज मुंबई कहलाता है।
3: साथियों, उनके जीवन की एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटना है जिसने उनका जीवन बदल दिया। गिजू भाई 1913 में पिता बने। बेटे के जन्म के तुरंत बाद जब इस युवा पिता ने अपने नवजात बेटे को गोद में उठाया, तब उनकी आंखों के सामने उनका अपना दारुण बचपन घूम गया। वो गहरी सोच में डूब गए और सोचने लगे।
4: एक प्रतिष्ठित परिवार के हर बच्चे की तरह मेरे बेटे को भी एक दिन स्कूल जाना होगा, और स्कूल जाने का मतलब है छोटी छोटी गलतियों के लिए रोजाना बेत की मार खाना। तो क्या ये भी उसी प्रकार मार खाएगा जैसी मार हमने खाई थी? मैं जानता हूं कि ये स्कूल जाएगा, लेकिन क्या मार खाने के लिए, अपमानित होने के लिए? नहीं, क्या कोई ऐसा रास्ता नहीं है जिससे बच्चे सीखें लेकिन बिना तनाव के, भय मुक्त होकर? इस पर जरूर कुछ सोचना पड़ेगा। समाज को इस दिशा में कुछ करना ही होगा।
2: जीजू भाई ने 1920 में एक बाल मंदिर यानी विद्यालय की स्थापना की और वकालत छोड़कर पूरी तरह बाल शिक्षा को समर्पित हो गए। यहीं से शुरू हुए बाल शिक्षा पर उनके अनेक

0: का अनेक शैक्षणिक अभिनव प्रयोग। वो पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तकों को सरल, सुगम और सरस बनाने पर बहुत जोर देते थे।
1: उन्होंने बच्चों के इंद्रिय विकास, शैक्षिक भ्रमण, प्रकृति का अवलोकन, कथा वाचन और खेल आधारित शिक्षा जैसी गतिविधियों पर बल दिया। इस पद्धति से बच्चे हंसते खेलते आनंददायी गतिविधियों में भाग लेते हुए खेल खेल में शिक्षा ग्रहण करते थे।
0: इस बाल मंदिर में 2.5 वर्ष की आयु से लेकर 6 वर्ष की आयु के बालकों को प्रवेश दिया जाता था। गिजू भाई स्वयं इन बालकों के साथ रहकर उन्हें शिक्षा प्रदान करते थे। वे बालकों को ब्रह्म स्वरूप मानते थे, इसलिए अपने द्वारा स्थापित विद्यालयों को उन्होंने बाल मंदिर कहा।
1: सन 1922 में भावनगर के तख्तेश्वर मंदिर के पास उन्होंने एक और बाल मंदिर खोला, जिसका उद्घाटन महात्मा गांधी जी की धर्मपत्नी कस्तूरबा गांधी के कर कमलों से हुआ।
0: इसी भावनगर में उन्होंने देश के शिक्षकों के लिए प्रथम राष्ट्रीय मोंटेसरी सम्मेलन का आयोजन किया और शिक्षकों के लिए अध्यापन मंदिर या शिक्षक प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया। मोंटेसरी शिक्षा पद्धति को पूर्णतया आत्मसात करने के बाद उन्होंने उसके सिद्धांतों को भारतीय संदर्भ में पूरी तरह अपनाने का प्रयास किया।
1: एक बार किसी पत्रकार ने गांधी जी से गिजू भाई के बारे में कुछ लिखने को कहा। तब गांधी जी ने बड़ी विनम्रता से कहा था,
2: गिजू भाई जैसे महान व्यक्ति के लिए कुछ लिखने वाला मैं कौन होता हूँ? शिक्षा के क्षेत्र में उनके कार्यों ने मुझे हमेशा मुक्त किया है। मेरा दृढ़ विश्वास है कि उनका ये महान कार्य

0: गांधी जी राष्ट्रपिता कहे जाते थे, तो गिजू भाई को बाल शिक्षा के क्षेत्र में उनकी माता तुल्य करुणा और योगदान के कारण लोग उन्हें मोछाई माँ अर्थात मूछों वाली माँ भी कहते थे।
1: बच्चों को शिक्षा देने के बारे में गिजू भाई अक्सर कहा करते थे,
2: शिक्षक बंधुओं, कहानी बच्चों को रटाना नहीं, खूब रस ले लेकर अभिनय करके उन्हें कहानी समझाओ, उनसे प्रेम से बात करो, उन्हें हंसाओ, वो सिर्फ सूचनाओं से अबोध हैं, अज्ञानी नहीं है। यदि बच्चा सप्ताह में 5 दिन शिक्षक के साथ 5 या 6 घंटे बिताता है तो क्या उसे सच्चा प्यार और सम्मान नहीं मिलना चाहिए?
0: अपनी साहित्यिक कृतियों में उन्होंने भाषा, लिखावट, भूगोल, इतिहास और अन्य सभी विषयों के शिक्षण के लिए अनेक रोचक और सृजनात्मक विधियों को सविस्तार समझाया है। साथियों, आज हमारे बीच एक शिक्षक मौजूद हैं, श्री जीतेश कुमार जी, जिन्होंने गिजू भाई की शिक्षण पद्धतियों को अपनी कक्षाओं में अपनाया है। तो आइए उनसे बातचीत करते हैं। जीतेश जी, नमस्कार।
3: नमस्कार।
0: तो जीतेश जी, प्राथमिक स्तर की कक्षाओं में शिक्षण के लिए गिजू भाई द्वारा बताई गई पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है
3: जी,
0: तो हमें और हमारे श्रोताओं को बताइए कि वो कौन कौन सी पद्धतियां हैं।
3: देखिए, वैसे उनकी तो बहुत सारी पद्धतियां हैं
0: जी,
3: लेकिन कुछ खास हैं जिन पे मैंने काम किया है और मैं काम कर रहा हूँ। उनमें एक है नाट्य प्रधान पद्धति। हम सभी जानते हैं कि बच्चे भूमिका निर्वहन यानी रोल प्ले और नकल करना बहुत पसंद करते हैं
0: जी,
3: तो नाटक और कहानी के द्वारा किसी भी कठिन संकल्पना या घटनाओं के क्रम को बड़ी ही आसानी से समझाया जा सकता है
0: जी। ये तो बिल्कुल सही कहा आपने।

0: तो इसके अलावा कोई और पद्धति है?
1: जी और है, एक है युगल और सहभागिता पद्धति।
0: युगल और सहभागिता पद्धति,
1: जी। इस पद्धति के बारे में जो मेरा व्यक्तिगत अनुभव है
0: जी,
1: वो ये है कि इसमें बच्चे समूह शिक्षण की अपेक्षा कम समय में सीखते हैं।
0: अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है
1: जी। इसके अलावा एक पद्धति और है।
0: हाँ हाँ बताइए।
1: प्रश्नोत्तरी पद्धति।
0: प्रश्नोत्तरी पद्धति
1: जी, इसमें बच्चों को विशेष रूप से प्रोत्साहित किया जाता है कि वो प्रश्न पूछें।
0: अच्छा।
1: और वो पूरे आत्मविश्वास से बेझिझक कक्षा में प्रश्न पूछने की क्षमता विकसित करते हैं। जो मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव है वो ये है कि इन सारी पद्धतियों को मिला करके जो सीखने का प्रतिफल है
0: जी,
1: वो बहुत ही शानदार है।
0: अच्छा
1: जी,
0: तो दोस्तों ये थे हमारे साथ जीतेश कुमार जी। तो जीतेश कुमार जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतनी अहम जानकारी के लिए।
2: साथियों, अभी आपने गिजू भाई द्वारा बताई गई कुछ शैक्षणिक पद्धतियों के बारे में जाना। बाद में धीरे धीरे गिजू भाई के उसी शैक्षिक चिंतन पर आधारित विद्यालय गुजरात, महाराष्ट्र और उत्तर भारत के अनेक राज्यों में फैल गए और हजारों बच्चों को उनकी नूतन शिक्षण विधियों से दीक्षित किया जा सका।
0: गिजू भाई ने 100 से भी अधिक बालोपयोगी पुस्तकें लिखी। उन्होंने शिक्षकों के लिए भी पुस्तकें लिखी हैं। उनकी एक बहुचर्चित पुस्तक है दिवा स्वप्न। बाल शिक्षा के जगत में गिजू भाई की ये एक अनुपम कृति है। गुजराती भाषा में पुस्तक का पहला प्रकाशन सन 1931 में हुआ।
2: इस पुस्तक में गिजू भाई ने अपने शैक्षणिक प्रयोगों के बारे में बताया है, प्राथमिक शिक्षा की रूढ़िवादी प्रक्रिया पर प्रकाश डाला है, बालकों में बढ़ रही शिक्षा के प्रति निरस्ता के कारणों की विस्तार से चर्चा की है। दरअसल वो रटंत शिक्षण पद्धति के विरुद्ध थे।
0: गिजू भाई के अनुसार,
3: शिक्षा सामाजिक परिवर्तन और विकास का महत्वपूर्ण माध्यम है। विद्यालयों को बाल विकास की एक प्रयोगशाला होना चाहिए जिसमें बालकों के विकास के अनुरूप संपूर्ण साधन और सामग्री हो, ताकि बालक स्वयं प्रयोग कर सकें और अनुभव प्राप्त कर सकें।
0: आदर्श शिक्षक होने के साथ साथ वो एक महान शिक्षाविद, चिंतक, विचारक और लेखक भी थे। चौवन वर्ष की आयु में 23 जून 1939 को शिक्षा के क्षेत्र में समर्पित इस कर्मठ और विलक्षण कार्यकर्ता का निधन हो गया।
2: उनके नाम पर कई शिक्षक सम्मान स्थापित किए गए हैं, जो शिक्षा के क्षेत्र में विशेष योगदान देने वाले शिक्षकों को दिए जाते हैं। उन्हें शिक्षा समुदाय और हम सबका कृतज्ञतापूर्ण नमन।
4: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गिजू भाई बधे का, एक विलक्षण शिक्षा शास्त्री। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, तकनीकी समन्वय बटी लैंगलिंगडो, ध्वन्यांकन मयंक कुमार और विकास सांगवान, कलाकार शिमाइला परवेज, प्रवीण शर्मा, असर नवाज उस्मानी, सुनील लोहिया और परवेज गौहर, आलेख एवं मार्गदर्शन अजीत होरो, निर्देशन विमलेश चौधरी तथा निर्माण जगबंधु जाना।
5: श्रोताओं, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम गिजू भाई बधे का।

आइए अब सुनते हैं एक बेहद खूबसूरत गीत, जिसके द्वारा आप जान पाएंगे कि एक बच्चे के मन की भावनाएं क्या क्या हैं और वो अपने अभिभावकों और शिक्षकों से क्या अपेक्षा रखता है।

इस कार्यक्रम के बाद अब हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत को उमंग की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे NCERT और CIET द्वारा प्रायोजित शैक्षणिक कार्यक्रम उमंग। मीडियम वेव और FM बैंड पर आकाशवाणी का ये अंबिकापुर केंद्र है। श्रोताओं, हमारा अगला कार्यक्रम बस थोड़ी ही देर में।

श्रोताओं, हम आपको याद दिला दें, आज रात 10 बजे शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम सूर्यामिनी में आप सुनिएगा पंडित मल्लिकार्जुन मंसूर का गायन, राग होगा विभास। रात 8 बजे इंस्टा फरमाइश कार्यक्रम आप सुनिएगा। शाम 7:05 पर हम लेकर आएंगे सुगम संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा।

मीडियम वेव 238.09 मीटर यानी 1260 किलो हर्ट्ज पर और एफएम बैंड 100.2 मेगा हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये अंबिकापुर केंद्र है। दोपहर के 12:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए शीर्षक फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम चयन।

आज सभी सुनने वाले श्रोता साथियों का पूनम उपाध्याय की ओर से स्वागत है, अभिनंदन है इस कार्यक्रम में जो आधारित है शीर्षक पर। साथियों, संगीत ईश्वर का दिया हुआ वह अनमोल उपहार है जो शब्दों से परे जाकर सीधे हृदय को स्पर्श करता है, और जब संगीत में फिल्मी गीतों का रंग खुल जाए तो हर धुन यादों भावनाओं के अनेक रंगों को जीवंत कर देती है। और इसी रंगों की बात हम करें तो एक रंग और है मेहंदी का। जी हाँ साथियों, मेहंदी भावनाओं से रंगा एक सुंदर एहसास है मेहंदी, जो आज शीर्षक है चयन कार्यक्रम का। मेहंदी केवल हाथों पर रचने वाला रंग नहीं है, बल्कि खुशियों और भावनाओं का एक खूबसूरत प्रतीक है। इसकी हरियाली में प्रकृति की सादगी छिपी होती है और इसकी खुशबू में अपनापन महसूस होता है। मेहंदी का हमारे जीवन में, हमारे संस्कृति में केवल एक श्रृंगार या कला नहीं है, बल्कि यह भावनाओं, विश्वास और प्रेम का गहरा प्रतीक है। इन्हीं शब्दों के साथ सुनिए ये कार्यक्रम का पहला गीत किस एहसास से जुड़ा है।

और सपने, खासकर शादी ब्याह के अवसर पर मेहंदी का अपना अलग ही महत्व होता है। दुल्हन के हाथों में सजी मेहंदी उसके नए जीवन की शुरुआत, प्रेम और विश्वास का प्रतीक मानी जाती है। कहा जाता है, जितनी गहरी मेहंदी रचती है उतना ही गहरा प्यार अपनापन रिश्तों में होता है। आइए सुनते हैं ये गीत क्या कहता है।

जी हाँ साथियों, मेहंदी तो मेहंदी है, रंग लाएगी। ये गीत अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म मेहंदी रंग लाएगी से। साथियों, जब किसी के हाथों में मेहंदी लगती है तो वह सिर्फ सजावट नहीं होती, बल्कि उसके साथ जुड़ी होती है ढेर सारी यादें, उत्साह।

0: डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, डीजे वाले बाबू
1: बेबी को बेस पसंद है।
2: इंस्टा फरमाइश आपकी पसंद मनभावन और ईमेल की गूंज के बाद हम आपके लिए लेकर आए हैं फरमाइशी फिल्मी गीतों का एक और कार्यक्रम इंस्टा फरमाइश। इसके लिए आपको करना है ये कि आकाशवाणी अंबिकापुर

0: इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज पर पोस्ट किए गए पोस्टर पर अपनी फरमाइश, नाम और पता कमेंट सेक्शन में लिखना है। बस हो गया आपका काम खत्म और हमारा शुरू। फिर हम शामिल करेंगे आपको कार्यक्रम इंस्टा फरमाइश में, जिसे आप सुनेंगे हर रात 8:00 से 8:45 तक। तो देर किस बात की, आज ही अपने पसंदीदा गीत की फरमाइश भेजें और सुने कार्यक्रम इंस्टा फरमाइश।
1: इस संदेश के पहले सुन रहे थे जुबैदा फिल्म से गीत अलका याग्निक की आवाज में। साथियों, मेहंदी की खुशबू हमें त्योहारों, उत्सव और परिवार के साथ बिताए पलों की याद दिलाती है। जब घर में हंसी खुशी का माहौल होता है, करवा चौथ, तीज, ईद, राखी, सावन के उत्सवों जैसे अवसर पर मेहंदी खुशी और उत्सव का अहम हिस्सा बन जाती है। मेहंदी हमें सिखाती है कि असली सुंदरता बाहरी रूप में नहीं बल्कि उन भावनाओं में होती है जो दिल से जुड़ी होती है। जैसे मेहंदी का रंग धीरे धीरे गहरा होता है, वैसे ही रिश्ते भी समय के साथ मजबूत बनते जाते हैं। शुरुआत में जो हल्का दिखाई देता है, वही समय के साथ अपनी असली गहराई को दिखाता है। देखते हैं ये गीत क्या कहता है

ये गीत आपने सुना अलका याग्निक बाबुल सुप्रियो की आवाज में फिल्म हमको तुमसे प्यार है से। जीवन भी मेहंदी की तरह है मित्रों साथियों, कभी रंग हल्का होता है तो कभी गहरा, लेकिन हर रंग अपने साथ एक कहानी लेकर आता है। खुशियों के रंग, उम्मीदों के रंग, सपनों के रंग, तो कभी प्रेम के रंग, यही जीवन की सुंदरता को बनाते हैं। मेहंदी का रंग जीवन का एक सुंदर सत्य सिखाता है, जो चीज़ जितना समय लेती है उसका असर उतना ही गहरा होता है। मेहंदी हमें सिखाती है धैर्य से रहना, अगर उसे जल्दी हटाया जाए तो रंग अधूरा रह जाएगा। जीवन में भी ऐसा ही है, अगर किसी चीज़ को तुरंत पाने की चाह रखेंगे तो परिणाम अधूरे रह जाते हैं। सुनिए ये अगला नगमा क्या बोलता है।

ये गीत आप सुन रहे थे चोरी चोरी चुपके चुपके फिल्म से जशपिंदर नरूला की आवाज़ में। जी हाँ श्रोताओं, मेहंदी तो मेहंदी है, मेहंदी तो रंग लाती है, मेहंदी हमें सिखाती है साथियों जीवन में धैर्य रखो, रिश्तों को समय दो, सादगी से अपनाओ और प्रेम बांटते चलो। मेहंदी का रंग हर किसी पर अलग अलग रचता है, यह हमें बताता है हर इंसान अपनी अलग अलग पहचान होती है, अपनी यात्रा अपनी कहानी होती है। मेहंदी हमें प्रेम, अपनापन, संस्कृति और रिश्तों का एहसास भी कराती है। इसलिए कहा जाता है मित्रों, मेहंदी एक ऐसा रंग है जो हमारे हाथों से ज़्यादा दिलों में हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता पर रचता है। सुनते हैं कार्यक्रम का ये अंतिम गीत क्या कहता है।

0: साथियों, आज शीर्षक फिल्मी गीतों के कार्यक्रम चयन में शीर्षक था मेहंदी।
1: मुझको मिली जिंदगी बलम तेरे वास्ते।
0: और इसी गीत के साथ शीर्षक फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम चयन अब समाप्त होता है। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये अंबिकापुर केंद्र है। दिन का एक बजा है। समाचार हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि भारत ऊर्जा प्रणालियों के निर्माण की दिशा में ब्रिक्स सहयोग को मजबूत करना चाहता है। आज गुरुग्राम में ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की 11वीं बैठक का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि विकास की आकांक्षाओं और सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए किफायती, विश्वसनीय और टिकाऊ ऊर्जा अपरिहार्य है। संपूर्ण ऊर्जा मूल्य श्रृंखला में भारत के निवेश के बारे में श्री मनोहर लाल ने कहा कि भारत विश्व की डिजिटल रूप से सक्षम सबसे बड़ी विद्युत प्रणालियों में से एक की नींव रख रहा है। उन्होंने कहा कि 6 करोड़ से अधिक स्मार्ट मीटर पहले ही लगाए जा चुके हैं और आने वाले वर्षों में ये परिवर्तन बड़े पैमाने पर जारी रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज संविधान हत्या दिवस पर आपातकाल के दौरान लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए दृढ़ संकल्पित रहे लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि आपातकाल संविधान पर सीधा हमला था। उन्होंने कहा कि इस दौरान नागरिक स्वतंत्रता निलंबित की गई, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाया गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस दौरान लोकतांत्रिक संस्थाएं भी निशाने पर रहीं। गृहमंत्री अमित शाह ने भी आपातकाल के खिलाफ संघर्ष करने वाले लोकतंत्र सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में गृहमंत्री ने कहा कि 25 जून 1975 भारतीय लोकतंत्र का एक काला अध्याय था। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि आपातकाल भारत के इतिहास का एक कठिन दौर था, जब संविधान के मूल्यों की कड़ी परीक्षा हुई थी। सर्वोच्च न्यायालय ने आज श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को मिले दान में कथित वित्तीय अनियमितताओं की अदालत की निगरानी में जांच की मांग संबंधी जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई करने से इनकार कर दिया। हालांकि न्यायालय ने मामले को उचित समय पर सूचीबद्ध करने का आश्वासन दिया। इस बीच लखनऊ के संभागीय आयुक्त विजय विश्वास पंत की अध्यक्षता में गठित 3 सदस्यीय एसआईटी ने राज्य सरकार को अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट सौंप दी है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने डिजिटल अरेस्ट ठगी से जुड़े एक बड़े मामले में चेन्नई और कोलकाता से 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। एजेंसी ने ऑपरेशन चक्र के 6ठे चरण में पंजाब, गुजरात, दिल्ली और महाराष्ट्र सहित 16 राज्यों में 80 से अधिक स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया।

0: आया। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने भूमि धोखाधड़ी और धनशोधन के एक मामले में आज दिल्ली और गाजियाबाद के कई ठिकानों पर तलाश अभियान चलाया। ये मामला श्रेष्ठ प्रॉप बिल्ड प्राइवेट लिमिटेड के प्रमोटरों और सेवा सुरक्षा सहकारी आवास समिति के पदाधिकारियों से जुड़ा है। कोलकाता के तारातला इलाके में हुए हादसे में मृतकों की संख्या 9 हो गई है। 29 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिनमें से 20 लोगों का इलाज अभी भी चल रहा है। विधानसभा में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि हादसे के जिम्मेदार लोगों को कानून के दायरे में लाया जाएगा। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए और घायलों को 1-1 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। मामले की जांच के लिए एक विशेष जांच दल SIT का गठन किया गया है। इस मामले में अब तक 5 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। राहत और बचाव कार्य के साथ साथ हादसे के कारणों की भी जांच की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस घटना के मृतकों के परिजनों के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने आज उत्तर प्रदेश के वाराणसी स्थित लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से पहली इजी कनेक्ट उड़ान का उद्घाटन किया। दिल्ली के रास्ते वाराणसी को दुनिया से जोड़ने वाली ये पहली हब एंड स्पोक उड़ान भारत को दुनिया से निर्बाध रूप से जोड़ने के उद्देश्य से शुरू की गई है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि दुनिया में हथियारों के बढ़ते उपयोग, जोखिम लेने की प्रवृत्ति में वृद्धि और सोशल मीडिया से प्रभावित राजनीति देखने को मिल रही है। दक्षिण कोरिया में शांति और समृद्धि पर जेजू द्वीप में आयोजित सम्मेलन को संबोधित करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि अपनी विशिष्टताओं को मुखर करने की प्रवृत्ति अधिक है और क्षमताओं का उपयोग भी कम संकोच के साथ किया जा रहा है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर कारोबार में लगभग 0.7% की वृद्धि देखने को मिली। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 570 अंक की उछाल के साथ 77,561 पर, जबकि निफ्टी 170 अंक की वृद्धि के साथ 24,191 पर चल रहा था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव और FM बैंड पर आकाशवाणी का ये अंबिकापुर केंद्र है। दिन के 1:05 हुए हैं खेती की बात कार्यक्रम में। आइए सुनते हैं खरीफ में उड़द की खेती विषय पर ये जानकारी।
2: किसान भाइयों, खेती की बात में आज हम चर्चा करेंगे खरीफ में उड़द की खेती विषय पर। उड़द महत्वपूर्ण खरीफ की दलहनी फसल है। दलहनी फसल होने के कारण इसकी जड़ों में बनने वाली गांठों में उपस्थिति जीवाणु वायुमंडलीय नत्रजन को भूमि में स्थिर करके भूमि को उपजाऊ बनाती है। इस प्रकार यह फसल भूमि की उर्वरा शक्ति को बनाए रखने में भी सहायक है। उड़द में 25% प्रोटीन और प्रचुर मात्रा में फास्फोरिक अम्ल पाया जाता है। इस फसल का चारा पशुओं में दूध की मात्रा बढ़ाता है। भूमि का चुनाव। किसान भाइयों, हल्की रेतीली दोमट या मध्यम प्रकार की भूमि जिसका पीएच मान 7 से 8 के मध्य हो और पानी का निकास की समुचित व्यवस्था हो, उड़द के लिए उपयुक्त है। बीज की मात्रा और उपचार, 10 से 15 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर के मान से उपयोग करना चाहिए। बीज के लिए थायरम वेवस्टीन 2:1 की 3 ग्राम मात्रा द्वारा उपचारित करके बोना चाहिए। साथ ही राइजो वीएम से भी उपचार करना चाहिए। बुआई का समय, किसान भाइयों, जून अंतिम सप्ताह या जुलाई प्रथम सप्ताह तक मानसून आने पर बुआई करना चाहिए। कतार से कतार की दूरी 30 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 10 सेंटीमीटर रखना चाहिए। साथ ही ध्यान रखना चाहिए कि बीज 1.5 से 2 इंच गहराई पर ही बोया जाए। खाद और उर्वरक, किसान भाइयों, खरीफ में उड़द की अच्छी खेती करने के लिए मृदा परीक्षण के बाद खाद और उर्वरक की सुझाई गई मात्रा का उपयोग करना चाहिए। उड़द के लिए विस्फोट की आवश्यकता होती है, जिसकी पूर्ति 100 किलोग्राम DAP प्रति हेक्टेयर के मान से बोते समय कतारों में बीज के ठीक नीचे डालना चाहिए। सिंचाई, फूल फल बनने की अवस्था पर यदि खेत में नमी न हो तो एक सिंचाई कर देनी चाहिए। खरपतवार नियंत्रण। किसान भाइयों, फसल और खरपतवार की प्रतिस्पर्धा की अंतिम अवधि बुआई के 15 से 30 दिनों तक रहती है। इस बीच निंदाई करने का डोरा चलाने से खरपतवार नष्ट हो जाता है, साथ ही

0: भूमि में वायु का संचार भी होता है, जिससे पौधों की ग्रंथियों में क्रियाशील जीवाणुओं और वायुमंडलीय नत्रजन एकत्रित करने में सहायता मिलती है। निंदा नियंत्रण समय पर न करने से फसल की उपज में 20-50% तक की कमी देखी गई है। रासायनिक नियंत्रण के लिए खेत तैयार करते समय बोने से पहले पडी मेथालीन 3 लीटर या एलाक्लीर 2 लीटर या फिर आक्सा डाइजान 4 लीटर को 500 लीटर पानी में मिलाकर बोने के बाद और अंकुरण से पूर्ण भूमि में फ्लेयर फैन नोजल युक्त पंप से मिलाना चाहिए। कीट नियंत्रण। किसान भाइयों, उड़द की फसल में फली वोटिन नामक कीट का प्रकोप अधिक होता है। इस कीट की इल्लियां बीज पत्र और छोटे पौधों की पत्तियों में छेद करते हुए खाते हैं, जिससे पत्तियों पर छेद ही छेद दिखाई देते हैं। नियंत्रण के लिए मिथाइल पैराथियन चूर्ण या क्लोरोपाइरीफास चूर्ण की 20 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर के मान से सुबह या शाम समय भुरकाव करना चाहिए। इसके अलावा माहू और सफेद मक्खी नामक रस चूसक कीटों का प्रकोप भी होता है। यह कीट पौधों के विभिन्न भागों जैसे पत्तियों, कोमल टहनियों, फूलों और कलियों का रस चूसते हैं, जिससे पौधे कमजोर हो जाते हैं। उनमें कलियों की संख्या कम बनती है। नियंत्रण के लिए ऑक्सी डिमेटान मिलाइल डाइमे थिएट की 300 मिलीलीटर 200 लीटर पानी में मिलाकर प्रति एकड़ की दर से छिड़काव करना चाहिए। रोग नियंत्रण। पीत सीरा रोग। उड़द की फसल में पीत सीरा रोग का प्रकोप प्रमुखता से होता है। रोग के लक्षण बुआई के 4-5 सप्ताह बाद दिखने लगते हैं। सबसे पहले पत्तियों पर गोलाकार पीले रंग के धब्बे दाने के आकार के बनते हैं, जो धीरे धीरे बढ़कर हरे पीले से चकत्तों के रूप में बदल जाते हैं और धीरे धीरे पूरी पत्ती पीली पड़कर सूख जाती है। रोग के नियंत्रण के लिए रोग प्रतिरोधी प्रजातियों का प्रयोग करना चाहिए, और अगर नियंत्रण नहीं होता है तो ऐसी स्थिति में खड़ी फसल में नियंत्रण के लिए ऑक्सीमिथाइल डिमेटान या डाइमेथोएट 30 की 400 मिलीलीटर मात्रा को 200 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करना चाहिए। किसान भाइयों, इस तरह से कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर खरीफ में हम उड़द की खेती करके अधिक मात्रा में लाभ कमा सकते हैं।
1: खेती की बात कार्यक्रम के पुनः प्रसारण में अभी आप सुन रहे थे खरीफ में उड़द की खेती विषय पर ये सामयिक सुझाव। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये अंबिकापुर केंद्र है। दिन के 1:10 हुए हैं। लीजिए सुनिए हमारी बहनों के लिए कार्यक्रम घर आंगन का प्रसारण।

कार्यक्रम सुन रही सभी बहनों को आज सोफिया का नमस्कार। बहनों, बदलाव हमेशा से ही खूबसूरत होता है। जैसे मौसम में बदलाव, तपती गर्मी के बाद बारिश की बूंदें कितनी प्यारी लगती हैं। बारिश धरती को नई ताजगी और सुकून देती है, वैसे ही जीवन में आने वाला बदलाव नई उम्मीदों, नए अवसरों और नई खुशियों का संदेश लेकर आता है। जिस तरह से नया मौसम नए बदलाव लाता है, ठीक उसी तरह हमें भी अपने आप को समय के अनुसार बदलते रहना चाहिए, नए नए आयाम सीखना, अपने आप को अपडेट रखना चाहिए। मैंने आज का युग तकनीक का युग है। मोबाइल, इंटरनेट, ऑनलाइन बैंकिंग, डिजिटल भुगतान, ऑनलाइन शिक्षा जैसी नई तकनीकें हमारे जीवन का हिस्सा बन चुकी हैं। मोबाइल की छोटी सी स्क्रीन अब ज्ञान का विशाल द्वार बन चुकी है। आज जानकारी हमारी उंगलियों पर है, लेकिन बहनों, उसका लाभ वही उठा सकता है जो सीखने के लिए तैयार हो। बहनों, सीखना जीवन की वह यात्रा है जिसका कोई अंतिम पड़ाव नहीं होता। जो सीखता है वह आगे बढ़ता ही रहता है। बहनों, सीखने की कोई उम्र नहीं होती। यदि हम प्रतिदिन थोड़ा समय निकाल कर कुछ सीखें तो धीरे धीरे हमारा आत्मविश्वास बढ़ने लगता है। इससे न सिर्फ हमारा ज्ञान बढ़ता है, बल्कि हमारे लिए रोजगार के और आय के नए अवसर भी खुलते हैं। लेकिन नई टेक्निक का उपयोग करते समय सावधानी भी बेहद ज़रूरी है। किसी भी अनजान व्यक्ति के साथ अपनी निजी जानकारी साझा बिल्कुल न करें। OTP या बैंक संबंधी जानकारी किसी को न दें, केवल विश्वसनीय स्रोतों

से ही जानकारी प्राप्त करें और अनजान लिंक पर क्लिक करने और संदिग्ध संदेशों का जवाब देने से बचें और नित नई जानकारियों को समझकर सीखें और उसका लाभ उठाएं। मैंने अब समय है कार्यक्रम में एक गीत का, आई सुने लता मंगेशकर और सुरेश वाडेकर के स्वर में फिल्म प्यासा सावन का ये गीत।

0: चाहिए, वो भी ऐप से। वाह,
1: फसा।
2: अनजान ऐप से बचें।
3: RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: मैडम, अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्रम की ओर, गुलदस्ता, जिसमें आप सुनेंगे हमारी रेडियो सखी मधुलता की प्रस्तुति, घरेलू हिंसा पर कुछ अधिवक्ता बहनों से बातचीत और कुछ खास जानकारी। आइए सुनते हैं गुलदस्ता क्रम।
5: भयमुक्त होकर जो अपने कदम बढ़ाती हैं, कानूनी अधिकारों की शक्ति से जगमगाती हैं, बनती हैं आत्मनिर्भर हर मुश्किल हालात में। एक नई रोशनी छिपी है उनकी हर बात में। तो बहनों, आज के गुलदस्ता क्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अपने जीवन को पूरे सम्मान और गरिमा के साथ व्यतीत करने के लिए बहुत जरूरी है कि हमारी बहनों को, और न सिर्फ बहनों को ही बल्कि सभी को, अपने कानूनी अधिकारों की और अपने मूलभूत अधिकारों की जानकारी हो, क्योंकि इसके अभाव में वे निरंतर किसी न किसी अपराध का शिकार होते जाते हैं जो उनके लिए परेशानी का कारण होता है। तो आज के गुलदस्ता क्रम में हमारे साथ जुड़ी हैं हमारी कुछ अधिवक्ता बहनें। तो चलिए आपसे इनका परिचय कराते हैं, हमारी बहनों को अपना परिचय दें।
6: मेरा नाम हीना कौसर है और मैं सरगुजा के सूरजपुर से अधिवक्ता हूँ।
5: बहुत बहुत स्वागत है हीना जी आपका हमारे आज के इस क्रम में, और इसी क्रम में जुड़ी है हमारे साथ एक और बहन।
7: नमस्कार, मेरा नाम नगमा कौसर सिद्दीकी है। मैं महिला बाल विकास में संचालित होने वाली एक महत्वाकांक्षी योजना सखी वन स्टॉप सेंटर में मनोसामाजिक परामर्शदाता के पद पर कार्यरत हूँ, और मैं आज बहुत आभारी हूँ लोगों से वार्तालाप करने का मौका दिया।
5: तो इसी क्रम में जुड़ी है हमारे साथ हमारी एक और अधिवक्ता बहन, चलिए जानते हैं इनका परिचय।
8: नमस्कार, मैं एडवोकेट प्रीति शास्त्री जिला सूरजपुर सिविल कोर्ट में कार्यरत हूँ, और पिछले 3-4 सालों से मैं महिलाओं के हित में काम कर रही हूँ।
5: बहुत बहुत स्वागत है प्रीति जी आपका भी हमारे आज के इस क्रम में। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अपने कानूनी अधिकारों की जानकारी होना इसलिए भी जरूरी है ताकि बहनें जो हैं अपने विरुद्ध होने वाले हिंसा, शोषण और भेदभाव का डटकर सामना कर सके, क्योंकि इससे उन्हें व्यक्तिगत सुरक्षा तो मिलती ही है और साथ ही कार्यस्थल पर समानता, आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त करने का आत्मविश्वास भी उन्हें मिलता है। तो हम देख रहे हैं कि बहनें जो हैं वो बहुत ज्यादा सशक्त हो चुकी हैं, आज जागरूक भी दिखाई दे रही हैं, मगर फिर भी कुछ न कुछ प्रताड़ना का वे शिकार होती ही रहती हैं। तो इस संबंध में बतौर अधिवक्ता आप क्या देखती हैं कि हमारी बहनों के साथ किस प्रकार के जो अपराध हैं वो हो रहे हैं, जानते हैं हीना जी से कि उनका क्या विचार है।
6: बहुत बहुत शुक्रिया मधु जी। जैसा कि आपने कहा मधु जी कि आज की महिलाएं जागरूक दिख रही हैं और उनके बाद भी उनके साथ में अत्याचार हो रहे हैं, हिंसा हो रही है, तो ये बात बिल्कुल सही है। जागरूक होने के बाद भी महिलाएं बिल्कुल प्रताड़ित हो रही हैं, और ये सारी चीज़ें घरेलू हिंसा, दहेज उत्पीड़न, मानसिक प्रताड़ना, आर्थिक नियंत्रण, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न, साइबर अपराध जैसी घटनाएं अधिकतर देखने को मिल रही हैं। एक अधिवक्ता होने के नाते मैं उन्हें ये बोलना चाहती हूँ कि उन्हें अपने अधिकारों के बारे में पूर्ण रूप से जानकारी होनी चाहिए। बहुत सारी ऐसे जानकारी हैं जो वो उन सब चीज़ों से अनभिन्न हैं, वो जानकारी नहीं रखते हैं, तभी वो कहीं ना कहीं प्रताड़ित हो रही हैं। आपको इन सब चीज़ों के लिए सबसे पहले जानकारी होनी चाहिए कि हमारे अधिकारों की सुरक्षा कैसे होगी। कानून इन सब चीज़ों के लिए बहुत सारी सुविधाएं दिया हुआ है, आपकी सुरक्षा भी सुनिश्चित करता है और आपको अपराध से बचाने के लिए बहुत सारे कानून और नियम बनाए गए हैं। तो ये कहना चाहूंगी कि इन सब चीज़ों से आप बचने के लिए जागरूक बने और अपनी शिकायत दर्ज करें।
5: जी बिल्कुल, बहुत सही कहा आपने। हमारी बहनों में जो अज्ञानता है उसके कारण वो काफ़ी हद तक इनसे परेशान होती हैं, इन सारी समस्याओं से। तो अक्सर जो हमारी बहनें हैं वो जानकारी के अभाव में ये सोचती हैं कि जो मारपीट है वो ही केवल घरेलू हिंसा है। तो एक कानून की दृष्टि से यदि देखा जाए तो क्या केवल मारपीट ही घरेलू हिंसा में आता है? जानते हैं हमारी बहन प्रीति के माध्यम से।
8: मारपीट ही केवल घरेलू हिंसा ऐसा नहीं है। घरेलू हिंसा में मानसिक, आर्थिक, भावात्मक और साथ में यौन उत्पीड़न भी शामिल है। जैसा कि मानसिक में घर के केवल पति ही नहीं, उनके और परिवार के सदस्य भी उन्हें मानसिक रूप से हमेशा नीचा दिखा रहे हैं या उन्हें गाली गलौज का सामना कर

0: या फिर उन्हें कहीं आने जाने से रोकना टोकना, ये सब चीज़ अगर कर रहे हैं तो ये मानसिक प्रताड़ना में आ जाएगा। और आर्थिक आर्थिक जैसे इनको अगर ये काम करना चाह रही हैं, महिलाएं काम करना चाह रही हैं मगर वो काम उनको करने से रोका जा रहा है तो भी ये आर्थिक हिंसा होगी। और अगर ये नहीं कर रही हैं फिर भी इनको करने के लिए भेजा जा रहा है और ये करना नहीं चाहती फिर भी ये आर्थिक हिंसा में आएगा।
1: बहुत बहुत धन्यवाद प्रीति जी, जरूर हमारी बहनें इस ओर ध्यान देंगी। आपने जो कुछ भी बताया तो हम भी अपनी बहनों से कहना चाहेंगे कि केवल मारपीट ही नहीं, मानसिक रूप से जो प्रताड़ना दी जाती है या आर्थिक रूप से यदि किसी भी प्रकार से तंग किया जाता है, पैसे की अनुपलब्धता भी महिलाओं को बहुत ज़्यादा मानसिक रूप से त्रस्त कर देती है। तो इस संबंध में हमारी बहन ने बहुत अच्छी बात बताई कि ये सारे भी घरेलू हिंसा की श्रेणी में आते हैं। हम अपनी बहन से जरूर जानना चाहेंगे, हमारी जो अधिवक्ता बहनें हैं और खासतौर से हमारी सखी वन स्टॉप सेंटर में जो कार्यरत है हमारी बहन नगमा जी, तो चलिए जानते हैं इनके माध्यम से कि ऐसे जो प्रताड़नाएं हैं उसके संबंध में महिलाएं क्या कदम उठा सकती हैं, कैसे कानूनी अधिकार उनको दिए गए हैं।
2: जी मधु जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके सवाल के लिए
1: जी।
2: मैं सखी वन स्टॉप सेंटर में 9 सालों से काम कर रही हूँ और काउंसलर के पद पे हूँ, तो घर जोड़ने का काम खासकर मेरा रहा है। तो उसमें जो घरेलू हिंसा से संबंधित मैं बताऊँ, अगर किसी महिला को कोई प्रताड़ित कर रहा है तो उन्हें सबसे पहले अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए
1: जी।
2: उसके लिए उन्हें तत्काल खतरा को देखते हुए किसी सुरक्षित स्थान पे सबसे पहले जाके अपने आप को सुरक्षित करना चाहिए। वो चाहे किसी रिश्तेदार का घर हो सकता है, किसी दोस्त का हो सकता है, पड़ोसी का हो सकता है
1: जी।
2: या फिर घर में ही कोई सुरक्षित स्थान ढूंढ के वो अपने आप को सुरक्षित करें सबसे पहले। फिर आपातकालीन स्थिति में वो 112 में कॉल कर सकती हैं, ठीक है। उसके बाद उन्हें मदद लेने में कभी भी संकोच नहीं करना चाहिए। उसी के साथ चलने वाली महिला हेल्पलाइन नंबर 181 जो कि अभी बहुत ही लोकप्रिय है, घर बैठे आप अपनी समस्या उस पर रजिस्टर कर सकती हैं, ठीक है, तो उसमें आप कॉल कर सकती हैं। इसके अलावा आप अपने जिले के सखी वन स्टॉप सेंटर में जा सकती हैं। सखी वन स्टॉप सेंटर 24 घंटे चलने वाली एक संस्था है जो कि महिला हिंसा से प्रभावित महिलाओं को एक ही छत के नीचे आश्रय, चिकित्सा और लीगल एडवाइस सब प्रदान करने का कार्य करती हैं
1: जी।
2: ठीक है,
1: बहुत ही अच्छी जानकारी आप दे रही हैं हमारी बहन जो है नगमा जी,
2: जी।
1: तो हमारी बहन जरूर इस संबंध में जानकारी लेकर के उसका लाभ लेंगी, क्योंकि जागरूक होना ही काफी नहीं होता है, उसके बारे में आपको कदम भी स्वयं भी अपने लिए उठाना होता है। तो सखी वन स्टॉप सेंटर इसमें आपकी काफी मदद कर सकता है जैसा कि हमारी बहन ने कहा। तो और एक बात है, ये तो हुई घरेलू जो महिलाएं हैं उनके संबंध में बातचीत जो है, और जो हमारी जो कामकाजी बहनें, अक्सर हम देखते हैं कि कुछ असामाजिक तत्व जो होते हैं वो उनके साथ छेड़खानी करते हैं या यौन उत्पीड़न जैसी समस्याएं होती हैं, तो उस संबंध में वे चुप भी रह जाती हैं क्योंकि सामाजिक दबाव होता है उन पर। इसके लिए वे कैसे कदम उठा सकती हैं कि ऐसी हिंसा या प्रताड़ना उनके साथ यौन उत्पीड़न जैसी ना हो, तो क्या कहना चाहेंगी हिना जी इस संबंध में?
3: सबसे पहले महिलाओं को अपने अधिकारों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। अगर अधिकार के बारे में उन्हें जानकारी होगी तो किसी भी तरह के अपराध से वो बच सकते हैं
1: जी।
3: और सबसे जरूरी बात यह है कि अगर महिला किसी कार्यस्थल पे उनके साथ में किसी भी तरह का यौन उत्पीड़न हो रहा है तो उसके लिए ICC एक कमेटी होती है जो 10 मेंबर के कर्मचारी जहाँ पे होंगे वहाँ पे ये अनिवार्य रूप से चालू होती है। इसे बोलते हैं आपका इंटरनल कॉम्प्लेन कमेटी, ठीक है। इस कमेटी में आपकी शिकायत को गुप्त भी रखा जाएगा और इस पे आपको पूरी तरीके से चीजों को, सूचनाओं को आपके हिसाब से जो भी दी हुई है आपकी जानकारी छिपा कर इस पे कार्य किया जाएगा। तो ये बहुत सही ऐसी चीजें हैं जहाँ पे आप कार्यस्थल में काम कर रहे हैं वहाँ पे इन सब चीजों का आपको उपयोग होना चाहिए और जानकारी में होनी चाहिए कि ये शिकायत हम कहाँ पे दर्ज करें। और रही बात साइबर अपराध की, अगर कोई महिला किसी चीज के बारे में नहीं कहती है, किसी का फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करती है, फिर भी आप उसे बार बार रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, किसी भी तरह से आप उसे परेशान कर रहे हैं, प्रताड़ित कर रहे हैं, तो उसके लिए आप महिला थाना में शिकायत कर सकते हैं, साइबर क्राइम सेल में शिकायत कर सकते हैं। और पहली बार अगर वो अपराध के लिए सिद्ध होता है उसके ऊपर तो 3 साल तक का उसे कारावास और जुर्माना हो सकता है। दूसरी बार अगर वो इस तरह का हरकत करता है तो उसे 5 साल का कारावास और जुर्माना दोनों से दंडित किया जाएगा। इसलिए अपने अधिकारों को सुनिश्चित कीजिए और जागरूक बनिए और जल्द से जल्द अगर ऐसे कहीं भी आपको दिखता है तो उसके लिए शिकायत दर्ज जरूर कीजिए।
1: तो आज हमारी बहनों को काफी अच्छी जानकारी मिली है हमारी अधिवक्ता बहनों के माध्यम से। तो हम बस आपसे अब यही जानना चाहेंगे कि जो हमारा परिवार है या बहनों का परिवार और समाज, जो इन महिलाओं के साथ जो भी अपराध हो रहे हैं या प्रताड़ना हो रही है उसके संबंध में उनका क्या पहल होना चाहिए ताकि

0: हमारी जो बहनें हैं वो बच सकें इनसे, या अपने लिए स्वयं के लिए जागरूक हो सके और कदम उठा सके, तो क्या कहना चाहेंगे इस बारे में हिना जी?
1: मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारा घर परिवार और समाज दोनों से ही बनता है, और महिलाओं की शुरुआत पहले घर से फिर समाज से होती है। तो हमारे समाज में ये देखना चाहिए कि महिलाओं को समान अवसर देना चाहिए, बेटों से बेटियों को कम नहीं समझना चाहिए। सबसे पहले परिवार में बेटों को अपने बहनों के, चाहे घर में जितनी भी महिलाएं हैं, उन सबका आदर करना सिखाना चाहिए। हम अगर ऐसा सिखाएंगे अपने बच्चों को कि वो महिलाओं के प्रति सम्मान की नज़र से देखें, उन्हें एक समान बराबर समझें, तो ये सारी प्रताड़नाएं बहुत हद तक कम हो जाएंगी।
0: जी बिल्कुल सही बात है कि महिलाओं के लिए गरिमामय माहौल जो है वो पहले घर से ही होना चाहिए। तो बहुत ही अच्छी जानकारी आज हमारी बहनों को आप अधिवक्ता बहनों के माध्यम से मिली है। अब बस हम आप सभी से संदेश जानना चाहेंगे कि आप हमारी बहनों को चलते चलते क्या संदेश देना चाहती हैं। तो इसके लिए चलते हैं सबसे पहले अपनी बहन नगमा की ओर।
2: मेरा अपनी महिला बहनों के लिए संदेश है कि आप अपनी शक्ति और सम्मान को पहचाने, किसी भी प्रकार की प्रताड़ना, हिंसा या अन्याय को अपनी नियति न समझें। सहायता मांगना कमजोरी नहीं बल्कि साहस का प्रतीक है। अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहें, आत्मविश्वास बने, आवश्यकता पड़ने पर परिवार, मित्रों और काउंसलर से जरूर सहायता लें, ठीक है? उनके संपर्क में आने से किसी भी प्रकार का संकोच ना करें। याद रखें, आप अकेली नहीं हैं, हर समस्या का समाधान संभव है। और जो सरकार हमारी महिला बाल विकास से सखी वन स्टॉप सेंटर चला रही है, वो महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए और उनके लिए एक बहुत बड़ी उम्मीद बनी है। तो आप सब उनका सहयोग लें, और मेरा यही कहना है कि खुद पर विश्वास रखें, अपनी आवाज़ को दबने ना दें, सम्मान और सुरक्षा का अधिकार है। यदि आप किसी कठिनाई का सामना कर रही हैं तो मदद मांगिए, क्योंकि एक कदम आगे बढ़ाने से बदलाव की शुरुआत होती है। थैंक यू।
0: बहुत ही अच्छी बात है, जरूर आपकी बातों से हमारी बहनों में ऊर्जा का संचार हुआ होगा और हमारी बहनें इस ओर जरूर सोचेंगी। अब चलते हैं संदेशों के लिए अपनी बहन प्रीति की ओर। तो क्या कहना चाहेंगी प्रीति आप इस संबंध में?
3: शुक्रिया मधु जी, मैं बस यही कहना चाहूंगी, चुप रहना किसी समस्या का समाधान नहीं है, इसलिए चुप ना रहें, अपने अधिकारों को पहचानें और जागरूक रहें।
0: बहुत बहुत धन्यवाद प्रीति जी, आपने बहुत ही अच्छी बात कही कि चुप रहना किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। तो हमारी बहनें जरूर सोचें इस विषय पर। और अब चलते हैं हमारी बहन हिना की तरफ, क्या आप कुछ संदेश देना चाहेंगे हमारी बहनों को?
1: शुक्रिया मधु जी, कुछ कहना चाहती हूँ। नारी केवल परिवार की शक्ति नहीं बल्कि समाज और राष्ट्र की प्रगति की आधारशिला है। आइए महिलाओं के सम्मान, सुरक्षा और अधिकारों की रक्षा का संकल्प लेते हैं, और ये संकल्प हम सभी को लेना चाहिए, चाहे वो पुरुष हो या महिला हो। धन्यवाद।
0: बहुत ही अच्छी बात है और हमारी बहनें इस पर जरूर विचार करेंगी, आपके शब्दों से उन्हें जरूर ताकत मिली है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे कार्यक्रम में अपनी जो विचार है उसकी अभिव्यक्ति के लिए, और हमारी बहनों में इतनी अच्छी ऊर्जा का संचार करने के लिए।
2: जी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी कि आज आकाशवाणी के इस मंच के माध्यम से आप सभी श्रोताओं से जुड़कर महिलाओं के साथ होने वाली प्रताड़ना, उनके प्रभाव तथा सहायता एवं संरक्षण से जुड़ी सेवाओं के बारे में जानकारी साझा करने का अवसर मिला है। इसके लिए मैं आकाशवाणी की पूरी टीम और सभी श्रोताओं का हृदय से आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। धन्यवाद।
1: धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
4: मैंने अभी आप सुन रही थी गुलदस्ता क्रम, जिसमें घरेलू हिंसा और महिलाओं के अधिकारों के बारे में अधिवक्ता बहनों से चर्चा कर रही थी हमारी रेडियो सखी मधुलता तिवारी। ये कार्यक्रम ओबी बेस था। मैंने आशा है आपको इस चर्चा से काफ़ी फ़ायदा होगा। और अब सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत। 1942 अ लव स्टोरी फिल्म के इस गीत को स्वर दिया है कविता कृष्णमूर्ति और कुमार सानू ने।

मैंने इस खूबसूरत से गीत के बाद अब समय है घरेलू नुस्खों का। बारिश का मौसम जहाँ ठंडक और सुकून लाता है, वहीं कपड़ों की देखभाल को लेकर कई चुनौतियाँ भी साथ लाता है। नमी के कारण कपड़ों में बदबू और फफूंद के साथ दाग धब्बों की समस्या भी बढ़ जाती है। इन सब से बचने के लिए कुछ घरेलू उपाय काफ़ी कारगर होते हैं, जैसे कपड़े धोते समय आखिरी पानी में 1 से 2 चम्मच सफ़ेद सिरका मिला दें। इससे कपड़ों से आने वाली स्मेल दूर होती है और वो ताजगी भरे रहते हैं। और अपनी अलमारी में नीम की पत्तियों को एक कोने में रख दें, उससे नमी और फफूंद से बचाव होता है, स्मेल भी दूर होती है। साथ ही एक छोटी डिब्बी में बेकिंग सोडा भरकर अलमारी में रख देने से सीलन भरी बदबू दूर हो जाती है। अगर फ्रिज से भी अगर कुछ स्मेल आ रही होगी तो एक कटोरी में बेकिंग सोडा या खाने वाला सोडा रख दें तो फ्रिज से आने वाली स्मेल भी ख़त्म हो जाती है। अलमारी की सेल्फ में अखबार बिछा दें या रख देने से वह नमी अवशोषित करता है, जिससे सीलन खत्म हो जाती है। और बहनों, हमेशा कपड़े पूरी तरह से सूखने के बाद ही अलमारी में रखें। अगर ठीक से ना सूख पाए तो उन्हें इस्त्री करके रखें, कभी भी अलमारी से कपड़ों से स्मेल नहीं आएगी। बहनों, ये थे कुछ घरेलू उपाय जिन्हें आजमा कर देखें। और अगर आप भी कुछ खास उपाय जानती हैं और श्रोता बहनों से शेयर करना चाहती हैं तो लिख भेजिए अपने मेल के जरिए। हमारा ईमेल आईडी है gharangan@gmail.com। और अब चलते चलते सुनते हैं ये गीत लता मंगेशकर के स्वर में, फिल्म का नाम है चुपके चुपके।

अभी आप सुन रहे थे बहनों के लिए कार्यक्रम घर आंगन का प्रसारण। मीडियम वेव 238.09 मीटर और एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये अंबिकापुर केंद्र है। दिन के 1:40 हुए हैं। लीजिए सुनिए फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम ईमेल की गूंज। आप सभी श्रोता साथियों का स्वागत है आज के इस अंक में। मैं आप सभी के साथ हूं पूनम। साथियों, संगीत ऐसा जादू है जो बिना शब्दों के भी दिलों को छू जाता है, और जब बात हो फिल्म संगीत की तो हर धुन अपने साथ यादों का एक खूबसूरत संसार लेकर आता है। कभी ये हमें हंसाता है तो कभी रुलाता है, तो कभी जीवन के अनमोल पलों का याद दिलाता है। तो आइए कदम रखते हैं सुरों और भावनाओं की उस दुनिया में जहां गीत एक कहानी कहता है और हर धुन दिल की गहराइयों से होकर गुजर जाता है। पेश है फरमाइशी फिल्मी गीतों का यह सुनहरा सफ़र। हमें उम्मीद है कि आप इस संगीतमय यात्रा का भरपूर आनंद लेंगे। इसी शब्दों के साथ शुरू करते हैं कार्यक्रम का ये गीत फिल्म रज़िया सुल्तान से। आवाज़ है लता मंगेशकर की, जहाँ निसार अख्तर की शब्द रचना है, संगीत है खयाम का, और इस गीत को सुनना चाहा है आप सभी ने। जलगांव जंक्शन से दिनेश काले, वंदना काले, आदेश कुमार काले, डॉक्टर सहानुभूति चक्रधर ने। नेहरू चौक पैठण से डॉक्टर सुरेश जाधव, अनीता जाधव, आरती पूजा, प्रसाद जाधव, सोनल जाधव, बेबी सिया जाधव। जलाना शहर से सोमनाथ जाधव, गीता जाधव, ओम जाधव, सुभाष जाधव, चंदन जाधव, एकनाथ जाधव। देवरी भाटापारा से के आर साहू, आकाश, कमलेश, गन्नूलाल रजक, मुरली क्षत्रिय। जेल रोड बक्सर से असलम अंसारी, शमसूल हक और राज एस डी अंसारी। नौंडी लोहारा बालोद से प्रभा रानी और डॉली। ऊपरकोट मोहल्ला चौखुंती बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निघत परवीन अब्बासी, शाहनवाज अब्बासी, सरफराज अब्बासी, फरदीन अब्बासी, सुहान अब्बासी, अरजान अब्बासी। जिला अम्बागढ़ चौकी छत्तीसगढ़ से रिजवान खान, ऐशा, सबीहा, अनस और रेहान। पश्चिम बंगाल रानीगंज से रेहान शर्मा और करणदीप। कृष्णा पार्क दिल्ली से सुखविंदर सिंह जोड़ा, सिटी दीवाना। जेल रोड झांसी से नरेंद्र डोम और सुरेश।

उमा डोम, बेरणी मध्य प्रदेश से हुकुम करमकर, सुनीता करमकर, हार्दिक करमकर, प्राची करमकर, तनु करमकर। आप सभी श्रोता साथियों के पसंद पर सुनते हैं कार्यक्रम का पहला गीत रजिया सुल्तान फिल्म से।

रजिया सुल्तान फिल्म से गीत अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में। अब सुनते हैं फिर तेरी कहानी याद आई। इस फिल्म का गीत अलका याग्निक की आवाज में, कतिल शिफई की शब्द रचना, संगीत अनु मलिक का। और इस गीत को सुनना चाहा है आप सभी ने। जेल रोड रायगढ़ छत्तीसगढ़ से नरेंद्र कुमार तिवारी, महेंद्र कुमार तिवारी, कौशल गोस्वामी, बेबी जोई, रिंकी गोस्वामी, यामिनी तिवारी और उमा तिवारी। गांव कुम्हारहेड़ा सहारनपुर से सैयद मसरूर, शाइना हसन इब्राहिम। ग्राम राजापुर जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़ से चंदेल दास, देवांगन रीता दास, जतिन कुमार, चंद्रावती सिंह मरावी, नूरसाय राजवाड़े, समीर सिंह मरावी, सोनू सिंह मरावी। फातमा कॉलोनी श्रीरामपुर महाराष्ट्र से नासिर शेख, नाजिया नासिर, सादिक शाहिद, साजिद गोविंदपुरा अहमदनगर से जुनेद मुजावर, सबीहा मुजावर, मिखाइल मुजावर, जैनब मुजावर। जिला किशनगंज बिहार से रविंद्र मोहन दास, आशा देवी, राघव कुमार, भानुप्रिया, मेघा राशि। इंदिरा चौक दिल्ली से अजीम वकार, माहिरा अजीम और निशा अजीम। जेल रोड दिल्ली से लाल बाबू दीवाना, उमेरखेड़ से श्वेता सोनी, प्रवीण सोनी और लाला सोनी। मुंगेली से इसहाक मोहम्मद चांदेड़। चमन पार्क दिल्ली से डॉक्टर सोनम, डॉक्टर सना, डॉक्टर अदिबा। मामूलवाड़ी महाराष्ट्र से सोपान ताड़े, वसंतराव भोजने, पीएस नुहानकर। कापस हेड़ा दिल्ली से फिरोज खान अहमद, इकबाल मोगा और जालंधर से संदीप जाटव और सुरेश जाटव। मेरठ कैंट से राधिका शाक्य और दिव्या अग्रवाल। धनौरी तेलीवाला से निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, बेबी आलिया, आयान बाबू। आप सभी के पसंद पर सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

ये गीत अभी आप सुन रहे थे फिल्म तेरी कहानी याद आई से। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं, सुनते हैं गीत हिना फिल्म से, लता मंगेशकर सुरेश वाडकर की आवाज़ों में। गीत और संगीत रविंद्र जैन का है और पसंद किया है इस गीत को रायगढ़ से रोहित जयलक्ष्मी, बाबा कुटीर रायगढ़ से शिव कुमार चौहान, आशिक संक्रांति चौहान, रितेश कुमार, राजेश्वरी चौहान, उत्कर्ष चौहान ने। नरवेल नगर महाराष्ट्र से पीएस नुहानकर, निर्मला नुहानकर, विशाल नुहानकर, सोपान तैड़े, नारायण इंगले, आशीष ने। ग्राम पहरा अहिवारा जिला दुर्ग से पोषण बंछोर, चंद्रकिरण, प्रीति और छाया बंछोर। अनूपपुर मध्य प्रदेश से जयमंत्री केवट, अंजलि केवट ने। सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से डीटी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप कालका से

शुभ चंद्र बजाज, साहिल बजाज, बिट्टा बजाज ने। तेलंगाना निज़ामाबाद से शेख अल्लाह बख्श, बेगम राबिया शेख, शेख रहीम मुन्ना, दानिश आसिफ शेख। गुजरात गांधीधाम से प्रवीण सोनी, कलावती सोनी। खम्हरिया बिलासपुर से साबित खान, धर्मेंद्र प्रजापति, सावित्री देवी, प्रतीक कुमार ने। राजकोट गुजरात से रश्मि झरना, भरत कुमार ने। और सुनते हैं कार्यक्रम में ये गीत हिना फिल्म से।

कार्यक्रम में अब सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज़ में अर्पण फिल्म से गीत, आनंद बख्शी के बोल हैं, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है और आप सभी ने इस गीत को पसंद किया है। टैगोर गार्डन नई दिल्ली से रविंद्र सिंह छाबड़ा, इंद्रजीत कौर छाबड़ा, सिटी स्वीटी छाबड़ा ने सुनना चाहा है इस गीत को। जेल रोड दिल्ली से लाल बाबू दीवाना दिव्या भारती और उमाराज डुमराव से वली उल्लाह अंसारी ने सुनना चाहा है इस गीत को। सदर बाजार कुरावली से अनिल कुमार वर्मा, माया देवी वर्मा, राहुल कुमार वर्मा, विनीत कुमार वर्मा, सोनम वर्मा ने भी पसंद किया है। मुंबई फिल्म सिटी से फरमाइश मिली है मोहम्मद सलीम और निगहत परवीन। उमर खेड़ से गिरधारी लाल और सविता जाटव ने भी पसंद किया है। लेवाई छत्तीसगढ़ से गुलाब दास मानिकपुरी, राजा दास मानिकपुरी, रानी मानिकपुरी ने फरमाइश भेजी है। डाबकी अकोला से पसंद किया है इस गीत को सुशीला देवी मंदोरकर, सदानंद मंदोरकर ने। मेन रोड तिल्हारा से प्रकाश पोहरकार, नर्मदा पोहरकार, कुमारी सुजाता पोहरकार। राष्ट्रीय दिव्यांग सहयोग संगठन छत्तीसगढ़ से नरेश कुमार, संदीप कुमार पांडे, कृष्ण कुमार, चित्रंजन यादव, सुनील कुमार, तेज कुमार साहू, रवि शंकर राजवाड़े, मनीष कुमार साहू ने पसंद किया है। रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा ने फरमाइश भेजी है। पुराना तालाब डुमराव से पसंद किया है इस गीत को वली उल्लाह अंसारी, सुल्तान अंसारी और आसमानाज अंसारी ने। जेल रोड बक्सर से राज एसडी अंसारी और फातिमा राज अंसारी ने भी सुनना चाहा है। डेर पाटन गुजरात से पसंद किया है इस गीत को धीरज बी रबारी ने। जिला नांदेड़ इताला महाराष्ट्र से शंकर लाल जसवाल, गणेश लाल जसवाल, शुभम प्रसाद जसवाल, कुमारी दुर्गेश्वरी जसवाल ने सुनना चाहा है इस गीत को। तो सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

ये गीत अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज़ में अर्पण फिल्म से। अब कार्यक्रम के अंत में सुनते हैं ये गीत तमन्ना फिल्म से। इंदिवर के बोल हैं, संगीत अनु मलिक का है, आवाज़ है कुमार सानू की। और इस गीत को पसंद किया है जिला मुरादाबाद ग्राम दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू सुरेश, राजपाल पंकज काजल, सीमा मानवी, तन्वी लक्ष्य, सोनी मोहिनी, ऋतिक बलबीर सिंह ने। महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रतन माला, वैष्णव कॉलोनी सनावत से मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद अल्तमश खत्री, मोहम्मद शादाब खत्री। सावरगांव महाराष्ट्र से रघुनाथ पाटिल नारे, पुष्पा ताई नारे। मेरठ कैंट दिग्दर्शन और कविता गौड़ ने पसंद किया है इस गीत को। छत्तीसगढ़ चूड़ी लाइन मुंगेली से मोहम्मद इसहाक, खतीजा बेगम, मोहम्मद अशफाक, आफरीन कोशर, मोहम्मद अल्ताफ, नीलोफर फातिमा ने भी सुनना चाहा है इस गीत को। गांव फ्रासी हिसार से राजा राजकुमार डुड्डी, प्रमोद कुमार डुड्डी, पुष्पेंद्र कुमार डुड्डी ने सुनना चाहा है। और लालबाग जगदलपुर बस्तर से पूनम रानी सरकार, सीमा देवी ठाकुर ने भी सुनना चाहा है। तो सुनते हैं आप सभी के पसंद पर कार्यक्रम का ये।

0: इसी गीत के साथ ईमेल की गूंज कार्यक्रम अब समाप्त होता है। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये अंबिकापुर केंद्र है। 2:15 हुए हैं दोपहर समाचारों का। अनुप्रसारण हम आकाशवाणी दिल्ली से करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। आज संविधान हत्या दिवस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपातकाल के दौरान लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करने वालों को श्रद्धांजलि अर्पित की। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने वैश्विक चुनौतियों के बीच मजबूत सहयोग का आह्वान किया। दक्षिण कोरिया के जेजू फोरम में वसुधैव कुटुंबकम की भावना पर बल दिया। भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक गुरुग्राम में शुरू। वेनेजुएला में लगातार 2 शक्तिशाली भूकंप में कई इमारतें ढहीं, देश में आपातकाल घोषित। दक्षिण अफ्रीका ने मॉन्टेरी में दक्षिण कोरिया को 1-0 से हराकर पहली बार फीफा फुटबॉल विश्व कप के नॉकआउट चरण में प्रवेश किया। और मैनचेस्टर में आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के ग्रुप ए मैच में आज शाम भारत का मुकाबला बांग्लादेश से। अब समाचार विस्तार से। आज संविधान हत्या दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर देशभर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। ये दिवस 25 जून 1975 को लगाए गए आपातकाल की याद दिलाता है, जब देश में संवैधानिक अधिकार और लोकतांत्रिक मूल्य गंभीर रूप से प्रभावित हुए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संविधान हत्या दिवस पर आपातकाल के दौरान लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए दृढ़ संकल्पित रहे लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि आपातकाल संविधान पर सीधा हमला था। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस दौरान लोकतांत्रिक संस्थाएं भी निशाने पर रहीं। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा रचित एक कविता की पंक्तियां पढ़ी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ये कविता मात्र पंक्तियों का संग्रह नहीं है, बल्कि आपातकाल के दौरान लोकतंत्र पर थोपे गए दर्द, घुटन और प्रतिबंधों की एक जीवंत और सशक्त अभिव्यक्ति है। उन्होंने कहा कि वाजपेयी जी की कालजयी पंक्तियां आज भी उस कालखंड के काले अध्यायों को आवाज देती हैं।
2: जब आपातकाल को 1 वर्ष हो गया तो अटल जी ने एक कविता लिखी और उन्होंने उस समय की मनस्थिति का वर्णन अपनी कविता में किया है। झुलसाता जेठ मास शरद चांदनी उदार, झुलसाता जेठ मास शरद चांदनी उदार, सिसकी भरते सावन का अंतर्गत रीत गया, 1 बरस बीत गया।
3: सीख चौ में सिमटा जग किंतु विकल प्राण विहग, धरती से अंबर तक गुजा मुक्त गीत गया, 1 बरस गया, 1 बरस।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने

0: सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि आपातकाल भारत के इतिहास का एक कठिन दौर था जब संविधान के मूल्यों की कड़ी परीक्षा हुई। गृहमंत्री अमित शाह ने भी आपातकाल के खिलाफ संघर्ष करने वाले लोकतंत्र सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। भारतीय जनता पार्टी ने आपातकाल को भारतीय इतिहास का काला अध्याय बताते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा। नई दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में मीडिया से बातचीत में भाजपा के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि आपातकाल के दौरान न्यायपालिका पर दबाव डाला गया, मीडिया की स्वतंत्रता प्रभावित हुई।
1: जुडिशरी के खिलाफ बेशर्मी, संपादक पत्रकारिता के कॉम्प्रोमाइज करने के लिए दबाव, विपक्षियों को जेल में बंद करना और गलत तरीके से इमरजेंसी लगाना। मैं इमरजेंसी के अंडरग्राउंड में प्रधानमंत्री की भूमिका की तारीफ करूंगा। सरदार के रूप में जितना अंडरग्राउंड को उन्होंने गुजरात से लेकर उत्तर भारत को जो संगठित किया था वो कमाल था। और आज अपने ट्वीट में उन्होंने उस काले अध्याय को याद किया है कि देश की जनता ने कितनी हिम्मत दिखाई।
0: केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि ऊर्जा आर्थिक वृद्धि, सामाजिक प्रगति और मानव विकास के लिए महत्वपूर्ण है। गुरुग्राम में आज ब्रिक्स देशों के ऊर्जा मंत्रियों की 11वीं बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि विकास के लक्ष्यों और सतत विकास को प्राप्त करने के लिए किफायती, विश्वसनीय और टिकाऊ ऊर्जा अपरिहार्य है। उन्होंने कहा कि भारत भविष्य के लिए तैयार ऊर्जा क्षेत्र के निर्माण के वास्ते नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता, स्मार्ट दृढ़ ढांचे और ऊर्जा भंडारण प्रणाली का तेजी से विस्तार कर रहा है।
2: फ्यूचर एनर्जी सिस्टम्स मस्ट बैलेंस।
3: भविष्य की ऊर्जा प्रणालियों में स्थिरता और विश्वसनीयता के बीच संतुलन होना चाहिए। भारत ऊर्जा क्षेत्र की पूरी श्रृंखला में बड़े पैमाने पर निवेश कर रहा है। अब तक 6 करोड़ से अधिक स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं और आने वाले वर्षों में यह बदलाव और बड़े स्तर पर जारी रहेगा।
2: ट्रांसफॉर्मेशन विल कंटिन्यू एट स्केल।
0: ब्रिक्स देशों के ऊर्जा मंत्रियों की यह बैठक कल तक जारी रहेगी। इसमें ऊर्जा सुरक्षा, सतत विकास, सभी के लिए ऊर्जा की उपलब्धता और नवाचार जैसे क्षेत्रों में सहयोग मजबूत करने पर मुख्य रूप से चर्चा हो रही है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि दुनिया में हथियारों के बढ़ते उपयोग, जोखिम लेने की प्रवृत्ति में वृद्धि और सोशल मीडिया से प्रभावित राजनीति देखने को मिल रही है। दक्षिण कोरिया में शांति और समृद्धि पर जेजू द्वीप में आयोजित सम्मेलन को संबोधित करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने ये बात कही। डॉक्टर जयशंकर ने अधिक सहयोगात्मक वैश्विक व्यवस्था के निर्माण के लिए भारत के वसुधैव कुटुंबकम यानी पूरा विश्व एक परिवार है के मार्गदर्शक सिद्धांत का उल्लेख करते हुए वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए और अधिक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि वैश्विक दक्षिण को अधिक क्षमता और अवसर दिए जाने चाहिए।
4: The global south should be enabled.
5: वैश्विक दक्षिण को अधिक क्षमता और अधिक अवसर दिए जाने चाहिए। इससे वैश्विक विकास के नए अवसर पैदा होंगे और साझा प्रयासों से पूरी दुनिया को लाभ मिलेगा। हम केवल कुछ देशों पर नियमों और मानकों को बनाए रखने के लिए निर्भर नहीं रह सकते। दुनिया को अपने भविष्य पर अधिक नियंत्रण रखना होगा।
0: इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन ने अमरीका के वॉशिंगटन DC में अमेरिका के विदेश उपमंत्री जेकब एस हेलबर्ग से मुलाकात की। इस दौरान दोनों देशों के बीच तकनीकी सहयोग को और मजबूत बनाने पर चर्चा हुई। अमेरिका में भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पर बताया कि बैठक में भरोसेमंद और विविध आपूर्ति श्रृंखला विकसित करने के उपायों पर भी विचार विमर्श किया गया। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने डिजिटल अरेस्ट ठगी से जुड़े एक बड़े मामले में चेन्नई और कोलकाता से 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। एजेंसी ने ऑपरेशन चक्र के 6वें चरण में पंजाब, गुजरात, दिल्ली और महाराष्ट्र सहित 16 राज्यों में 80 से अधिक स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। प्रवर्तन निदेशालय ED ने भूमि धोखाधड़ी और धनशोधन के एक मामले में आज दिल्ली और गाजियाबाद के कई ठिकानों पर तलाश अभियान चलाया। ये मामला श्रेष्ठ प्रॉप बिल्ड प्राइवेट लिमिटेड के प्रमोटरों और सेवा सुरक्षा सहकारी आवास समिति के पदाधिकारियों से जुड़ा है। पंजाब पुलिस ने एक केंद्रीय एजेंसी के साथ संयुक्त अभियान में अमृतसर जिले में सीमापार से संचालित अवैध हथियार, नशीले पदार्थ और हवाला नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है। इस मामले में एक अफगान नागरिक और एक नाबालिग सहित 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान से जुड़े कथित अपमान की वीडियो को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। कई राजनीतिक दलों के नेता उनके इस्तीफे और निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। गुरुद्वारा प्रबंधन की सर्वोच्च संस्था शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी SGPC ने भी श्री मान से पद छोड़ने को कहा है। गुरुग्राम पुलिस द्वारा

0: कल एफआईआर दर्ज किए जाने के बाद मुख्यमंत्री के समर्थकों द्वारा बचाव में पेश की गई फॉरेंसिक रिपोर्ट की जांच शुरू हो गई है। मामले में धोखाधड़ी और जालसाजी के आरोप शामिल हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पटियाला में कहा कि एक रिपोर्ट प्राप्त हुई है और गुरुग्राम स्थित एक प्रयोगशाला द्वारा फॉरेंसिक रिपोर्ट में कथित हेरफेर की विस्तृत जांच चल रही है। इस बीच श्री भगवंत मान ने कहा है कि वीडियो फर्जी है और ये उन्हें बदनाम करने के अभियान का एक हिस्सा है। सर्वोच्च न्यायालय ने श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को मिले दान में कथित वित्तीय अनियमितताओं की जांच न्यायालय की निगरानी में कराने संबंधी जनहित याचिका पर आज तत्काल सुनवाई करने से इनकार कर दिया। हालांकि न्यायालय ने मामले को उचित समय पर सूचीबद्ध करने का आश्वासन दिया। याचिका में अयोध्या राम मंदिर में दान और चढ़ावे से संबंधित सीसीटीवी फुटेज, डिजिटल भुगतान रिकॉर्ड और अन्य साक्ष्यों को सुरक्षित करने की मांग की गई है। इस बीच लखनऊ के संभागीय आयुक्त विजय विश्वास पंत की अध्यक्षता में गठित 3 सदस्यीय एसआईटी ने राज्य सरकार को इस मामले में अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट सौंप दी है। कोलकाता के तारातला इलाके में हुए एक हादसे में मृतकों की संख्या 9 हो गई है। 29 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिनमें से 20 लोगों का इलाज अभी भी चल रहा है। विधानसभा में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि हादसे के जिम्मेदार लोगों को कानून के दायरे में लाया जाएगा। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपये और घायलों को 1-1 लाख रुपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। उन्होंने बताया कि दुर्घटना स्थल पर राहत और बचाव कार्य जारी हैं। मामले की जाँच के लिए एक विशेष जाँच दल एसआईटी गठित की गई है। इस मामले में अब तक 5 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस घटना के मृतकों के परिजनों के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने आज उत्तर प्रदेश के वाराणसी स्थित लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से पहली इजी कनेक्ट उड़ान का उद्घाटन किया। दिल्ली के रास्ते वाराणसी को दुनिया से जोड़ने वाली ये पहली हब एंड स्पोक उड़ान भारत को दुनिया से निर्बाध रूप से जोड़ने के उद्देश्य से शुरू की गई है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत में परिचालन हवाई अड्डों की संख्या 2 गुनी से अधिक हो गई है।
1: अगले 6 हफ्ते में हम 6 नए डेस्टिनेशन को मॉडल में ही कन्वर्ट करके वो सारे एयरपोर्ट्स को भी इसी तरह वो ताकत भी हम देने वाले हैं। और यही विश्वास हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी भी इस सेक्टर पे रखते हैं कि एक सिविल एविएशन सेक्टर में एक रिफॉर्म, एक कार्यक्रम अगर करते हैं तो इसका प्रभाव पूरे इकोनॉमी पे पड़ता है।
0: यह सेवा आज वाराणसी से रवाना होगी। इजी कनेक्ट मॉडल के अंतर्गत यात्री अपने अंतिम अंतर्राष्ट्रीय गंतव्य के लिए चेक इन अपने शुरुआती हवाई अड्डे पर ही पूरा कर सकेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। वेनेजुएला की राष्ट्रपति डिल्सी रोड्रिगेज ने भूकंप के कारण देश में आपातकाल की घोषणा की है। आज सुबह काराकस और आसपास के इलाकों में आए लगातार 7.2 और 7.5 तीव्रता के भूकंप के कारण कई इमारतें ढह गईं। एक रिपोर्ट।
2: राष्ट्रपति रोड्रिगेज ने कक्षाएं और गैर आवश्यक गतिविधियों को अगले आदेश तक स्थगित कर दिया है। उन्होंने सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों में सार्वजनिक और निजी जन स्वास्थ्य तंत्र को भी सक्रिय कर दिया है। शक्तिशाली भूकंपों में 32 लोगों की मौत की खबर है और 700 से अधिक लोग घायल हुए हैं। प्रभावित क्षेत्रों में बचाव और राहत कार्य जारी है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वेनेजुएला में भीषण भूकंप से हुई तबाही पर गहरा दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में उपराष्ट्रपति ने भारत के लोगों की ओर से वेनेजुएला के लोगों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है। वहीं सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
0: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने औषधि नियम 1945 में संशोधन किया है। इस संशोधन के तहत अनुसूची H2 का दायरा व्यापक रूप से विस्तारित किया गया है ताकि नकली और घटिया दवाओं के प्रसार पर पूरी तरह रोक लगाई जा सके। इसमें QR कोड आधारित ट्रैक और ट्रेस ढांचे के अंतर्गत दवाओं की अतिरिक्त श्रेणियां शामिल की गई हैं। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर कारोबार में लगभग 0.7% की वृद्धि दर्ज की गई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 575 अंक की उछाल से 77,566 पर, जबकि निफ्टी 173 अंक की वृद्धि के साथ 24,195 पर कारोबार कर रहे थे। और अब खेल खबरें। फीफा फुटबॉल विश्व कप में दक्षिण अफ्रीका ने आज सुबह मॉन्टेरी में दक्षिण कोरिया पर 1-0 से जीत हासिल करके पहली बार नॉकआउट

0: उट दौर में प्रवेश कर लिया। इससे पहले मेक्सिको ने चेक गणराज्य को 3-0 से हराकर विश्व कप के ग्रुप चरण के अपने तीनों मैच में पहली बार जीत दर्ज की। मोरक्को ने हैती को 4-2 से हराकर नॉकआउट चरण में प्रवेश किया। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के ग्रुप ए के मुकाबले में भारत आज मैनचेस्टर में बांग्लादेश के साथ खेलेगा। मैच एमिरेट्स ओल्ड ट्रेफर्ड स्टेडियम में भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। बात मौसम की। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में 30 जून तक मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। साथ ही कर्नाटक के तटीय क्षेत्र, झारखंड, कोंकण, गोवा, महाराष्ट्र, तेलंगाना और ओडिशा में भी कल तक तेज बारिश हो सकती है। अगले 3 से 4 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के उत्तरी अरब सागर, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने की अनुकूल परिस्थितियां बनी हुई हैं। शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए ऑनलाइन आवेदन और नामांकन आमंत्रित किए हैं। ये आवेदन राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पर 10 जुलाई तक किए जा सकते हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। आज संविधान हत्या दिवस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपातकाल के दौरान लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करने वालों को श्रद्धांजलि अर्पित की। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने वैश्विक चुनौतियों के बीच मजबूत सहयोग का आह्वान किया। दक्षिण कोरिया के जेजू फोरम में वसुधैव कुटुंबकम की भावना पर बल दिया। भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक गुरुग्राम में शुरू। वेनेजुएला में लगातार 2 शक्तिशाली भूकंप में कई इमारतें ढहीं, देश में आपातकाल घोषित। दक्षिण अफ्रीका ने मॉन्टेरी में दक्षिण कोरिया को 1-0 से हराकर पहली बार फीफा फुटबॉल विश्व कप के नॉकआउट चरण में प्रवेश किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 238.09 मीटर यानी 1260 किलोहर्ट्ज पर और एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये अंबिकापुर केंद्र है। 2:30 हुए हैं, लीजिए सुनिए गैर फिल्मी गीतों और गजलों का कार्यक्रम गीत गंधा। इस कार्यक्रम में पहले सुनते हैं ये गजल उस्ताद अहमद हुसैन मोहम्मद हुसैन की आवाज़ों में।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: गीत गंधा की अगली पेशकश है जगजीत सिंह चित्रा सिंह की आवाजों में ये गजल।

ये गजल अभी आप सुन रहे थे जगजीत सिंह चित्रा सिंह की आवाजों में। अब सुनते हैं ये गीत अदनान सामी आशा भोसले की आवाजों में।

आशा भोसले अदनान सामी का गाया ये गीत अभी आप सुन रहे थे। कार्यक्रम में अब सुनते हैं ये गज़ल खुर्शीद हल्लौरी की मेहदी हसन की आवाज़ में।

इसी गजल के साथ गैर फिल्मी गीतों और गजलों का कार्यक्रम गीत गंधा अब समाप्त होता है। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये अंबिकापुर केंद्र है। इस समय दिन के 3 बजे हैं। श्रोताओं, सभा समापन से पहले आइए हम आपको आज के सांध्यकालीन सभा के शेष कार्यक्रमों के बारे में बता दें। आज रात 10 बजे शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम सूर्यामिनी में आप सुनिएगा पंडित मल्लिकार्जुन मंसूर का गायन राग विभास। शाम 5 बजे प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोच का प्रसारण आप सुनेंगे। शाम 5:05 पर कुछ भक्ति गीत हम आपको सुनवाएंगे। भजन संध्या कार्यक्रम में युवा साथियों के लिए लेकर आएंगे युववाणी कार्यक्रम शाम 5:30 पर। लोक संगीत के कार्यक्रम गोधूली में आप सुनिएगा कुछ लोक संगीत शाम 6:20 पर। 7:05 पर चंद गजलें हम पेश करेंगे सुगम संगीत के कार्यक्रम रजनीगंधा के तहत। ग्रामीण श्रोताओं के लिए चौपाल कार्यक्रम का प्रसारण हम लेकर आएंगे शाम 7:20 पर, जिसमें संविधान हत्या दिवस के अवसर पर करेंगे चर्चा लोकतंत्र की रक्षा हर नागरिक की जिम्मेदारी। 7:30 पर किसानवाणी में सुनेंगे किसानों और कृषि विशेषज्ञों के स्थल रिकॉर्डिंग पर आधारित कार्यक्रम किसान संध्या। रात 8 बजे हम पेश करेंगे सोशल मीडिया पर आधारित फरमाइशी कार्यक्रम इंस्टा फरमाइश। कुछ और फिल्मी गीत हम आपकी नज़र करेंगे ईमेल की गूंज कार्यक्रम में रात 9:30 पर और मनभावन कार्यक्रम के अंतर्गत रात 10:30 पर। ये तो थे श्रोताओं हमारे शाम के सभा के शेष कार्यक्रम। मीडियम वेव 238.09 यानी 1260 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये अंबिकापुर केंद्र है। इस समय दिन के 3:01 हुए हैं। अब श्रोताओं, सभा समापन से पहले हम आपको बता दें एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी दिल्ली एफएम गोल्ड का प्रसारण जारी रहेगा। मीडियम वेव 1260 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर शाम 5 बजे हम अपने सांध्यकालीन सभा के कार्यक्रमों के साथ आपकी सेवा में फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए।

मीडियम वेव 238.09 मीटर यानी 1260 किलोहर्ट्ज और एफएम 100.2 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5 बजने वाले हैं। यह वक्त है हमारी सांध्यकालीन सभा के आरंभ होने का। सभा की शुरू

0: नमस्कार, स्वागत है हमर हाथी हमर गोठ कार्यक्रम में। मैं अमलेंदु मिश्र। साथियों, हाथियों का दल भोजन और पानी की तलाश में गांव की ओर आने लगा है। आइए जानते हैं हाथियों के आज के विचरण क्षेत्रों के बारे में। एलिफेंट रिजर्व सरगुजा के तमोर पिंगला में हाथियों की कुल संख्या 51 है। ये धूरिया, अरचोका, भेलकक्ष, पेंडारी, बोदरई, शाही डांड़ के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सूरजपुर वन मंडल के प्रतापपुर, सूरजपुर और रामानुज नगर में हाथियों की कुल संख्या 11 है। ये सरहरी, करंजवार, सिंगरा, कैराडांड, गणेशपुर, खड़गवा, पंडोपारा, झिंगापारा, बोझा, कल्याणपुर, कोटबहरा, घाघी टिकरा, सलका, मुड़गांव, शिवनगर, जनार्दनपुर, मेंढरा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलरामपुर वनमंडल के रामानुजगंज और वाड्रफ नगर में हाथियों की कुल संख्या 2 है। ये चिनिया, महावीरगंज, कनकपुर, लुर्गी, टकिया, पेंडारी, कोल्हुआ, भगवानपुर, नवा पारा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सरगुजा वनमंडल के अंबिकापुर, लुंड्रा, सीतापुर और मैनपाट में हाथियों की कुल संख्या 44 है। ये सकालो, किशुनपुर, घंघरी, कुल्हाड़ी, कंचनपुर, खलीबा, पड़ौली, जमीरा, मसगा, डांडपारा, चाउरपानी, बांसाझाल, आमापानी, घोघरा, मानपुर, दांतीढाब, गढ़गांव, बैगहवा, चोरकी पानी, कंडराजा, नर्मदापुर के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। जसपुर वनमंडल के कुनकुरी, पत्थलगांव और बगीचा में हाथियों की कुल संख्या 28 है। ये नारायणपुर, जामचुआ, बिलासपुर, चरईमारा, रानी कोम्बो, खड़ामाचा, पीठा आमा, राजा आमा, महेशपुर, सोनगेरसा, बीजाघाट, सारू ढाप के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। धर्मजयगढ़ वनमंडल के छाल, धर्मजयगढ़, बोरो, बाकारुमा, लेलुंगा और कापू में हाथियों की कुल संख्या 136 है। ये कुड़ेकेला, पुरुंगा, छाल, बोजिया, औरानारा, बेहरामार, लोटान, रुपुंगा, कोयलार, सागरपुर, ढोढ़ा गांव, केदा टिकरा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। गढ़घोरा वनमंडल के केंदई, जडगा और एतमा नगर में हाथियों की कुल संख्या 50 है। ये लालपुर, कोयलार गढ़रा, परला, चोटिया, कापानवापारा, घुचापुर, बांधापारा, लालडी, झुनकीडी, कुकरी कादर, मड़ई, कोदवारी, कठमोरगा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। रायगढ़ वनमंडल के रायगढ़ और खरसिया में हाथियों की कुल संख्या 26 है। ये बंगुरसिया, जुनवानी, जोबी, नोंदरहा, पौड़ी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। अचानकमार टाइगर रिजर्व के अचानकमार में हाथियों की कुल संख्या 4 है। ये सरई पानी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलौदा बाजार वनमंडल के कोठारी में हाथियों की कुल संख्या 30 है। ये गुड़ागढ़, फुरफुंदी, तालदादर, तेंदुचुआ, पकरीत के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व के कुल्हाड़ी घाट में हाथियों की कुल संख्या 28 है। ये ओड़, अमलोर, ताराजह, डडई पानी, बुडार, सिंहार, छिंदौला, लूठापारा, नारी पानी, डूमर घाट, कोदोमाली, मासूल खोई के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। दोस्तों, गांव के बाहर या वन क्षेत्रों से लगे एकल कच्चे मिट्टी के मकानों में रात्रि विश्राम बिल्कुल ना करें। आइए सुनते हैं प्रसिद्ध क्रिकेटर और ब्रांड एम्बेसडर अनिल कुंबले जी का ये संदेश।
1: नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुंबले बोल रहा हूँ। यदि हाथी गांव के आसपास दिखे तो तत्काल वन विभाग को सूचना दे। जंगल के किनारे एकांत घरों में रहने वाले लोग पक्के स्कूल या पक्के

0: घरों में चले जाएं। हाथियों के लिए जंगल का रास्ता खुला छोड़ दें।
1: हाथियों की जानकारी के लिए सुनते रहे हमार हाथी हमार गोट।
2: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर कोट। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर हम आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5:05 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम भजन संध्या। कार्यक्रम के आरंभ में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं वंदना सिन्हा और भैरवी रंजन का गाया ये भजन। शब्द रचना वंदना सिन्हा की है।

भक्ति संगीत का कार्यक्रम भजन संध्या इस समय आप आकाशवाणी अंबिकापुर से सुन रहे हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला भक्ति गीत। स्वर है लता मंगेशकर, साधना सरगम और उदित नारायण का, शब्द रचना जावेद अख्तर की है।

जगजीत सिंह के गाए इस भजन के साथ ही भक्ति संगीत का कार्यक्रम भजन संध्या समाप्त हुआ। मीडियम वेव 238.09 मीटर यानी 1260 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी अंबिकापुर है।

नमस्कार, अभिनंदन और अभिवादन है आप सभी श्रोता साथियों का आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम युवाणी में, और मैं हूं आपका अपना दोस्त घनश्याम। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे विषय की जो हर इंसान के जीवन से जुड़ा है, हर दिल की धड़कन में बसता है और हर रिश्ते की नींव है। वो है दिल से जुड़े रिश्ते। साथियों, इस दुनिया में हम अनेक रिश्ते से जुड़े होते हैं। कुछ रिश्ते जन्म से मिलते हैं, कुछ रिश्ते समय के साथ बनते हैं, तो कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो खून के नहीं बल्कि दिल से होते हैं, और यही रिश्ते जीवन को और भी खूबसूरत बनाते हैं। दोस्तों, कहते हैं कि दूरी बढ़ जाने से रिश्ते खत्म नहीं होते, लेकिन दिलों की दूरी बढ़ जाए तो रिश्तों की गर्माहट कम होने लगती है, और वहीं जो रिश्ते सच्चे मन और भावनाओं से जुड़े होते हैं वे समय, परिस्थितियां और दूरियों की हर परीक्षा में खरे उतरते हैं। दोस्तों, रिश्ते केवल नाम से नहीं चलते, रिश्तों को जीवित रखता है विश्वास, अपनापन, सम्मान और प्रेम। माँ बाप का रिश्ता हो, भाई बहन का, चाहे दोस्ती का या जीवन साथी का, हर रिश्ते की असली ताकत उसमें छुपी भावनाएं होती हैं। दोस्तों, जब किसी रिश्तों में स्वार्थ नहीं होता है, केवल अपनापन होता है, तब वह रिश्ता दिल से जुड़ जाता है, और यही दिल से जुड़े रिश्तों की खास बात होती है कि वे समय के साथ और भी मजबूत होते चले जाते हैं। साथियों, आज के समय में लोग अलग अलग शहरों और देशों में रहते हैं, कई बार परिवार से दूर हो जाते हैं, कई सालों तक मिल नहीं पाते, लेकिन क्या केवल दूरी से रिश्ते खत्म हो जाते हैं? बिल्कुल भी नहीं। यदि रिश्ता दिल से जुड़ा है तो हजारों किलोमीटर की दूरी भी उसे कमज़ोर नहीं कर सकती, क्योंकि सच्चे रिश्ते मिलने से नहीं महसूस करने से चलते हैं। दोस्तों, कई बार रिश्तों में गलत फहमियाँ आ जाती है, किसी की बात बुरी लग जाती है, कोई अपेक्षा पूरी नहीं होती, तो कोई नाराज़गी दिल में घर कर जाती है। लेकिन जो रिश्ते दिल से जुड़े होते हैं वे घमंड से नहीं, संवाद से चलते हैं, वे टूटते नहीं बल्कि समय के साथ फिर से जुड़ जाते हैं। साथियों, दोस्ती उन रिश्तों में से एक है जिसे हम खुद चुनते हैं। कई दोस्तों से सालों तक बात नहीं होती, फिर भी जब मुलाकात होती है तो ऐसा लगता है कि कल ही तो मिले थे, और यही तो दिल के रिश्ते की खास बात है। दोस्तों, याद रखिए, रिश्ते खून से नहीं भावनाओं से बनते हैं, दूरी से नहीं उपेक्षा से टूटते हैं। समय चाहे कितना भी बदल जाए, परिस्थितियां कैसे भी हो जाएं, यदि प्रेम सच्चा है और विश्वास मजबूत है तो रिश्ता हमेशा जीवित रहता है। इसलिए अपने प्रियजनों के साथ समय दीजिए, उनकी भावनाओं का सम्मान कीजिए, क्योंकि दिल से जुड़े रिश्ते कभी टूटते नहीं, बस समय के साथ वे और भी गहरे होते चले जाते हैं। इसी के साथ आज का युवा सोच बस यहीं तक। सुनिए ये प्यारा सा गीत फिल्म द डर्टी पिक्चर से। स्वर है कमाल खान का, गीतकार हैं रजत अरोड़ा, संगीतकार हैं विशाल शेखर।

साथियों, अभी आपने सुना कमाल खान की आवाज़ में फिल्म द डर्टी पिक्चर का ये प्यारा सा गीत। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं आज के हमारे गज़ल स्पेशल क्रम महफिल की ओर।

स्वागत है आप सभी श्रोता साथियों का क्रम महफिल में। दोस्तों, कहा जाता है कि दिल की बातें जब अल्फाजों का सहारा लेती है तो गज़ल बन जाती है, और आज की शाम भी कुछ ऐसा ही जज्बातों और अनकहे एहसासों और कुछ मीठी यादों के नाम है। तो आज की महफिल की शुरुआत करते हैं गुलाम अली की आवाज़ में गुलजार की लिखी गज़ल के साथ, और इस गज़ल के फरमाइश करने वाले हमारे साथी हैं टोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव तामुरिया, तुषार देव, डॉली, बेबी, पूजा, राधिका, प्रभा देवी और अलकबीर। ग्राम राजापुर सूरजपुर से मानिक राम प्रजापति, सविता प्रजापति, घनश्याम राम, हरिशंकर, रत्नेश, प्रशांत प्रजापति। ग्राम कालापारा सरगुजा से रामचंद्र गुप्ता और पांडे राम राजवाड़े। तो आइए सुनते हैं इनकी पसंद का ये गज़ल।

दोस्तों, ज़िंदगी के हर मोड़ पर कुछ रिश्ते, कुछ यादें और कुछ ख्वाब हमारे साथ चलते हैं। उन्हीं एहसासों को शब्दों में पिरोकर पेश है अगली गज़ल मेहदी हसन की आवाज़ में। शायर हैं तस्लीम फजली और इस गज़ल के फरमाइशकर्ता हैं कोहका भिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदनी जंघेल। सुखरी कला धमदा से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि, ओशिका, आदित्य और अंजलि जंघेल। चिरमिरी कुरासिया कॉलरी से इंद्रभान सिंह, अनुभव सिंह, ऋषभ, राम सहोदर, नारायण प्रसाद लहरे, दिनेश प्रसाद रहले और कालिंदरी लहरे। आइए सुनते हैं इनकी पसंद का ये गज़ल।

दोस्तों गज़लों का सफ़र, क्षमा कीजिए दोस्तों, गज़लों का सफ़र केवल शब्दों का नहीं बल्कि एहसासों का सफ़र होता है। कभी मुस्कुराहटों से भरा तो कभी यादों की नमी में भीगा हुआ, जहां दिल की गहराइयां और भी करीब महसूस होती हैं। पेश है अगली गज़ल तलत अज़ीज़ की आवाज़ में।

शायर हैं भैरव अरुण और इस गज़ल के फरमाइश करता है यवतमाल विदर्भ महाराष्ट्र से संतोष खट से विनोद खट से, नतरंगी से भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीता वर्मा और रुद्र वर्मा, सत्यम क्लब फुलकोना प्रेमनगर से अरविंद यादव, रुस्तम, हिमांशु, अनुष्का, ऐश्वर्या, प्रीतम, मनोज और मिथिलेश यादव। तो आइए सुनते हैं इनकी पसंद का ये गज़ल।

साथियों, हर खूबसूरत सफ़र की तरह क्रम महफिल भी अपने अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ रही है, लेकिन कुछ अल्फाजें ऐसे होती हैं जो महफिल ख़त्म होने के बाद भी दिल में गूंजते रहती हैं। इसी के साथ पेश है क्रम महफिल का आखिरी गज़ल चंदन दास की आवाज़ में। शायर हैं अज़ीज़ कश्मीरी और इस गज़ल के फरमाइशकर्ता हैं सारसताल सोनगरा जिला सूरजपुर से प्रेम साय राजवाड़े, सुमार साय, मीर साय, रूप साय, भगत, हेमंत कुमार, अंबिका, राम खिलावन सिंह पैकरा, रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा। तो आइए सुनते हैं इनकी पसंद का ये गज़ल।

दोस्तों, आप भी अपने पसंद की गज़ल सुनने के लिए हमें अपनी फरमाइश पत्रों और ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं। हमारा पत्र भेजने का पता है, क्रम महफिल युवाणी अनुभाग द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी अंबिकापुर, पोस्ट बॉक्स नंबर 27, पिन कोड है 497001। हमारा ईमेल आईडी है mahfilair@gmail.com। इसी के साथ क्रम महफिल बस यहीं तक।

दोस्तों वक्त हो चला है आप सभी से विदा लेने का। जाने से पहले आपको बता दूं कल के मुख्य आकर्षण। कल आप सुनेंगे हेलो फ्रेंड्स में कुछ युवा साथियों के साथ बातचीत और कुछ प्यारे प्यारे गीत। इसी के साथ दीजिए मुझे यानी कि अपने दोस्त घनश्याम को आज की युवाणी से जाने की इजाजत। नमस्कार।

0: युवा श्रोताओं के लिए अभी युवाणी कार्यक्रम का प्रसारण किया जा रहा था। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर हम आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6 बजने वाले हैं, समाचार आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। आज संविधान हत्या दिवस है। इस अवसर पर देश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। ये दिवस 25 जून

0: 1975 को लगाए गए आपातकाल की याद दिलाता है, जब देश में संवैधानिक अधिकार और लोकतांत्रिक मूल्य गंभीर रूप से प्रभावित हुए थे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने संविधान हत्या दिवस पर आपातकाल के दौरान लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए दृढ़ संकल्पित रहे लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि आपातकाल भारत के इतिहास का एक कठिन दौर था, जब संविधान के मूल्यों की कड़ी परीक्षा हुई थी। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि आपातकाल संविधान पर सीधा हमला था। श्री मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा रचित एक कविता को साझा करते हुए उनकी संवेदनाओं भरी इन पंक्तियों को सुनने का आग्रह किया।
1: जब आपातकाल को एक वर्ष हो गया तो अटल जी ने एक कविता लिखी और उन्होंने उस समय की मनस्थिति का वर्णन अपनी कविता में किया है। झुलसाता जेठ मास शरद चांदनी उदार, झुलसाता जेठ मास शरद चांदनी उदार, सिसकी भरते सावन का अंतर्गत रीत गया, एक बरस बीत गया।
2: सीख चौ में सिमटा जग किंतु विकल प्राण बिहग, धरती से अंबर तक बुझा मुक्ति गीत गया, एक बरस
0: उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन ने आज संसद भवन में राज्यसभा के 10 नवनिर्वाचित और पुनर्नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई। शपथ लेने वालों में आंध्र प्रदेश से तेलुगु देशम पार्टी के सना सतीश बाबू, विजय चिंताकयाला और बश्यम रामकृष्ण तथा जनसेना पार्टी के लिंगम नेनी रमेश शामिल हैं। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश से भाजपा के ताई तागक, ओडिशा से भाजपा के देवशीष सामंतराय, तमिलनाडु से कांग्रेस के प्रवीण चक्रवर्ती और गुजरात से भाजपा के राजेश परमानंद शुक्ल ने भी शपथ ली। झारखंड से झारखंड मुक्ति मोर्चा के बैद्यनाथ राम और निर्दलीय सदस्य परिमल नथवानी ने भी राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण की। वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और ब्रिटेन के बीच हुआ मुक्त व्यापार समझौता अब तक भारत द्वारा किए गए सबसे व्यापक समझौतों में से एक है। लंदन में इंडिया ग्लोबल फोरम के यूके इंडिया वीक कार्यक्रम में श्री गोयल ने कहा कि इस समझौते से दोनों देशों को मिलने वाले आर्थिक लाभों की संभावनाएं बहुत अधिक है। भारत ने आज हरियाणा के गुरुग्राम में 2026 के ब्रिक्स अध्यक्षता के अंतर्गत 11वीं ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक की मेजबानी की। विद्युत मंत्रालय ने बताया कि इस बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के ऊर्जा मंत्रियों, उप मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। बैठक में प्रमुख वैश्विक ऊर्जा चुनौतियों और ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की गई। बांग्लादेश में भारत के नवनियुक्त उच्चायुक्त दिनेश त्रिवेदी ने आज ढाका में कार्यभार संभाल लिया। उन्होंने राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन को परिचय पत्र सौंपे। राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह के बाद श्री त्रिवेदी ने ढाका स्थित भारतीय वीजा आवेदन केंद्र का दौरा किया और वहां की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने आज कहा कि देश में आए दो शक्तिशाली भूकंपों में 164 लोगों की मौत हो गई है, 971 अन्य घायल हो गए हैं। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 7.2 और 7.5 मापी गई। ये भूकंप एक सदी से भी अधिक समय में वेनेजुएला में आए सबसे शक्तिशाली भूकंप है। इन भूकंपों के बाद वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति ने देश में आपातकाल की घोषणा कर दी है। आपातकालीन दल कई स्थानों पर राहत और बचाव अभियान चला रहे हैं। विश्वभर के नेताओं ने वेनेजुएला के लोगों के प्रति एकजुटता व्यक्त की है, विनाशकारी भूकंप के बाद सहायता का आश्वासन दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वेनेजुएला में आए भीषण भूकंप से हुई तबाही पर गहरा दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने वेनेजुएला सरकार और वहां के लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी वेनेजुएला के लिए समर्थन व्यक्त किया है। अमेरिका के फुलटन में यूएस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में तन्वी शर्मा, देविका सिहाग और किदाम्बी श्रीकांत सहित अन्य भारतीय खिलाड़ियों ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। महिला सिंगल्स में तन्वी शर्मा, देविका सिहाग ने आज आसान जीत दर्ज की। पुरुष सिंगल्स में किदाम्बी श्रीकांत ने भारत के ही डी सनीत को पराजित किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: समाचार अभी हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले कर रहे थे। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर हम आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से बोल रहे हैं। 6:05 हुए हैं। विचार बिंदु कार्यक्रम में लीजिए सुनिए स्वार्थ, इस विषय पर विचार प्रियंका सिंह के।
4: मनुष्य को सामाजिक प्राणी कहा जाता है। वह अकेले नहीं बल्कि परिवार, मित्रों, पड़ोसियों और समाज के साथ मिलकर जीवन व्यतीत करता है। यही कारण

0: है कि उसके विचार व्यवहार और निर्णय केवल उसके अपने जीवन को ही नहीं बल्कि दूसरों के जीवन को भी प्रभावित करते हैं। ऐसे में जब कोई व्यक्ति केवल अपने लाभ, सुख और स्वार्थ के बारे में सोचता है तथा दूसरों की भावनाओं और आवश्यकताओं की अनदेखी करता है तो उसे स्वार्थी कहा जाता है। स्वार्थ शब्द अपने आप में पूरी तरह नकारात्मक नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन को बेहतर बनाने, अपने परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करने और अपने भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए प्रयास करता है। यह एक स्वाभाविक मानवीय प्रवृत्ति है। लेकिन जब यह भावना संतुलन खो देती है और व्यक्ति केवल अपने हित को ही सर्वोपरि मानने लगता है तब स्वार्थ एक दोष बन जाता है। ऐसी स्थिति में वह दूसरों के दुख, संघर्ष और अधिकारों के प्रति संवेदनहीन हो जाता है। स्वार्थी व्यक्ति का दृष्टिकोण सीमित होता है। वह हर संबंध और हर अवसर में अपना लाभ तलाशता है। उसके लिए रिश्तों का मूल्य भावनाओं से नहीं बल्कि मिलने वाले फायदे से तय होता है। जब तक उसे किसी से लाभ मिलता है वह उस व्यक्ति के साथ अच्छा व्यवहार करता है। लेकिन जैसे ही उसका स्वार्थ पूरा हो जाता है उसका व्यवहार बदल जाता है। इसलिए स्वार्थ पर आधारित संबंध अधिक समय तक टिक नहीं पाते। उनमें विश्वास और आत्मीयता का अभाव होता है। आज के आधुनिक युग में स्वार्थ की भावना पहले की अपेक्षा अधिक दिखाई देती है। तेजी से बदलती जीवन शैली, बढ़ती प्रतिस्पर्धा और सफलता की अंधी दौड़ ने लोगों को अपने लक्ष्यों तक सीमित कर दिया है। धन, पद और प्रतिष्ठा प्राप्त करने की चाह में कई बार लोग मानवीय मूल्यों को भूल जाते हैं। वे अपने कार्यों और महत्वाकांक्षाओं में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि परिवार, मित्रों और समाज के लिए समय निकालना कठिन हो जाता है। परिणाम स्वरूप रिश्तों में दूरियां बढ़ने लगती हैं और भावनात्मक जुड़ाव कमजोर पड़ जाता है। स्वार्थ का प्रभाव केवल व्यक्तिगत जीवन तक सीमित नहीं रहता बल्कि पूरे समाज पर पड़ता है। जब समाज में स्वार्थ बढ़ता है तब सहयोग, विश्वास और भाईचारे की भावना कम होने लगती है। लोग एक दूसरे की मदद करने की बजाय केवल अपने हितों की चिंता करने लगते हैं। इससे सामाजिक समरसता प्रभावित होती है और आपसी विश्वास कमजोर पड़ता है। किसी भी समाज की प्रगति उसके नागरिकों के सहयोग, एकता और संवेदनशीलता पर निर्भर करती है। यदि ये गुण समाप्त होने लगे तो समाज में असंतोष और विभाजन की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इसके विपरीत निस्वार्थता मनुष्य को महान बनाती है। जो व्यक्ति बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की सहायता करता है, उनके सुख दुख में सहभागी बनता है और समाज के कल्याण के लिए कार्य करता है वह लोगों के दिलों में विशेष स्थान प्राप्त करता है। इतिहास और वर्तमान दोनों ऐसे उदाहरणों से भरे पड़े हैं जहां लोगों ने अपने व्यक्तिगत हितों से ऊपर उठकर मानवता की सेवा की और समाज के लिए प्रेरणा बन गए। ऐसे लोगों को सम्मान, प्रेम और विश्वास सहज रूप से प्राप्त होता है। हमें यह समझना चाहिए कि जीवन केवल अपने लिए जीने का नाम नहीं है। हमारी छोटी छोटी मदद, एक मधुर शब्द किसी जरूरतमंद का साथ या किसी दुखी व्यक्ति के प्रति संवेदना उसके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकती है। यदि हम अपने हितों के साथ साथ दूसरों के हितों का भी ध्यान रखें तो हमारा समाज अधिक संवेदनशील, मानवीय और खुशहाल बन सकता है। परिवार और शिक्षा संस्थानों की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। बच्चों को बचपन से ही सहयोग, सहानुभूति, सेवा और साझा करने के संस्कार दिए जाने चाहिए। जब नई पीढ़ी इन मूल्यों को अपनाएगी तब स्वार्थ की जगह परोपकार और मानवता की भावना विकसित होगी। स्वार्थ व्यक्ति की सोच को सीमित कर देता है जबकि निस्वार्थता उसके व्यक्तित्व को विशाल बनाती है। हमें अपने जीवन में ऐसा संतुलन बनाना चाहिए जिसमें अपने विकास के साथ साथ दूसरों की भलाई का भी ध्यान रखा जाए। जब हम केवल मैं तक सीमित न रहकर हम की भावना को अपनाते हैं तभी सच्चे अर्थों में एक बेहतर समाज और उज्जवल भविष्य का निर्माण संभव होता है।
1: स्वार्थ, इस विषय पर अभी आप सुन रहे थे विचार बिंदु। संकलन और वाचन स्वर प्रियंका सिंह का था। यह आकाशवाणी अंबिकापुर है। छत्तीसगढ़ी में प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी रायपुर से रिले करेंगे।
2: शुभा मिश्रा के जय जोहार। अब सुनाओ आज के प्रमुख समाचार। प्रदेश में बहुमंजिला भवन, कोचिंग संस्थान, होटल और व्यवसायिक दुकान के सुरक्षा व्यवस्था के विशेष ऑडिट कराए जाही। मुख्यमंत्री हादीन निर्देश। आज संविधान हत्या दिवस में छत्तीसगढ़ के संग देशभर में आने आने कार्यक्रम आयोजित करे जाते और पल्स पोलियो अभियान के तहत

0: 28 जून के प्रदेश में शून्य लेके 5 बछर तक के लैका मन ला पोलियो के दवाई पिलाए जाही। अब समाचार विस्तार ले। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय हा राज्य में जन सुरक्षा ला ध्यान में राखत हुए बहुमंजिला भवन, कोचिंग संस्थान, होटल और व्यावसायिक दुकान के सुरक्षा व्यवस्था के विशेष ऑडिट कराए के निर्देश दिन। मुख्यमंत्री हा मुख्य सचिव ला राज्य भर में अग्नि सुरक्षा, भवन सुरक्षा और आपातकालीन व्यवस्था के जांच कराए बर कहिन। एकर तहत सबो जिला में विशेष निरीक्षण अभियान चलाए जाही। ए दौरान भवन के सुरक्षा, फायर NOC, अग्निशमन उपकरण, आपातकालीन निकास, बिजली व्यवस्था के जांच करे जाही। मुख्यमंत्री हा कहे है कि सुरक्षा मानक के अनदेखी करैया मन पर नियम के अनुसार कार्रवाई करे जाही। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय हा आज नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य और रसायन उर्वरक मंत्री JP नड्डा ले मुलाकात करीन। ए दौरान जन स्वास्थ्य, औषधि और उर्वरक क्षेत्र के संग आने आने विभागीय विषय में चर्चा हुई। बैठका के दौरान मुख्यमंत्री हा केंद्रीय मंत्री ला जानकारी दीन कि राज्य में खाद्य वितरण व्यवस्था ऊपर लगातार निगरानी रखे जावा थे। कालाबाजारी और जमाखोरी के खिलाफ घलो कार्रवाई करे जाते। संगे संग राज्य सरकार नैनो यूरिया और नैनो DAP के उपयोग ला बढ़ावा देवा थे। किसान मनला ए लाभ के जानकारी देबर जागरूकता अभियान घलो चलाए जाते। केंद्रीय मंत्री श्री नड्डा हा छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य सेवा के विस्तार और विकास मन के हित में उठाए जावत प्रयास के सराहना करत हुए हर संभव सहयोग के भरोसा दिलाइन। एकर पहली काली मुख्यमंत्री हा नई दिल्ली प्रवास के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ले मुलाकात कर छत्तीसगढ़, विशेषकर बस्तर क्षेत्र के विकास काम और जन कल्याणकारी योजनाओं पर चर्चा करी। ए दौरान श्री साय हा छत्तीसगढ़ में अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान के स्थापना के प्रस्ताव घलो राखिन। मुख्यमंत्री हा केंद्रीय बजट में देश में 3 नवा अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान के घोषणा के उल्लेख करत हुए आग्रह करीन कि एमाले एक संस्थान छत्तीसगढ़ ला दे जाए। उमना बताइन कि छत्तीसगढ़ में दुर्लभ औषधि, वनस्पति और जड़ी बूटी प्राकृतिक रूप ले पाए जाते। केंद्रीय मंत्री हा राज्य में करे जा जन कल्याणकारी काम के सराहना करत हुए सहयोग करे बर बात घलो कहिन। नई दिल्ली प्रवास के दौरान आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय हा भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ले मुलाकात करीन। ए बेरा मा संगठन ले जुड़े आने आने विषय के संग प्रदेश के संगठनात्मक गतिविधि के प्रभावी क्रियान्वयन पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज नई दिल्ली स्थित छत्तीसगढ़ सदन में संघ लोक सेवा आयोग UPSC के प्रारंभिक परीक्षा में सफल हुए ट्राइबल यूथ हॉस्टल के विद्यार्थी मन ले मुलाकात करके उकर उत्साहवर्धन करीन। ए बेरा मा उमनहा छात्र मनला मुख्य परीक्षा बर शुभकामना दीन। जानबा के मुताबिक UPSC के प्रारंभिक परीक्षा मा द्वारिका स्थित ट्राइबल यूथ हॉस्टल के 13 छात्र मनहा सफलता पाए हे। एमाले ज्यादा विद्यार्थी जनजाति, ग्रामीण और सामाजिक रूप ले वंचित वर्ग के हरे। नगरी प्रशासन और विकास विभाग हा प्रदेश में सबो नगरी निकाय के मरम्मत और रख रखाव बर 22 करोड़ रुपया ले ज्यादा के आपात निधि जारी करे है। विभाग डहा ले चालू वित्तीय बछर के पहली तिमाही अप्रैल ले जून महीना बर ए राशि जारी करे गए है। एकर तहत 14 नगर निगम ला 13.76 करोड़ रुपया जारी करे गए है। उन्हें 56 नगर पालिका बर 5.18 करोड़ रुपया स्वीकृत करे गए है। विभाग हा 124 नगर पंचायत बर घलो 3.66 करोड़ रुपया जारी करे है। स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ले लेगे विशेष भेंट वार्ता के प्रसारण आकाशवाणी डहरले काली 26 जून के करे जाही। ए कार्यक्रम बिहनिया 10 बजे ले 10:25 तक प्रसारित होही। प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रायपुर डहरले तैयार एक कार्यक्रम के प्रसारण छत्तीसगढ़ के सबो आकाशवाणी केंद्र ले करे जाही। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन आपमन आकाशवाणी रायपुर ले सुनत हो।
1: छत्तीसगढ़ के खबर ले है आपकी वास्ता और खबर के विश्वसनीयता ले है हमार वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के संगे संग हमार समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के संग अपन मोबाइल में घलो सुन सकत हो। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब में घलो हावय। हमार फेसबुक पेज हरे छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमार यूट्यूब चैनल हरे छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के संगे संग आपके मोबाइल के माध्यम ले हम आप तक पहुंचत हन। छत्तीसगढ़ के हर खबर पर सुनत रहो आकाशवाणी समाचार।
0: अब आगू बाढ़ बाचे समाचार कोती। आज संविधान हत्या दिवस मनाए जाते। ए बेरा मा देश भर मा आने आने कार्यक्रम आयोजित करे जाते। ए दिन 25 जून 1975 के लगाए गए आपातकाल के याद दिलाते, जब देश में संवैधानिक अधिकार और लोकतांत्रिक मूल्य गंभीर रूप ले प्रभावित हो रहिस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संविधान हत्या दिवस में आपातकाल के दौरान लोकतांत्रिक मूल्य के

0: रक्षा बर दृढ़ संकल्पित रहे लोगन मन ला श्रद्धांजलि दिन। सोशल मीडिया पोस्ट मा श्री मोदी हा कहिन कि आपातकाल संविधान ऊपर सीधा हमला रहिस। प्रधानमंत्री हा कहिन कि ए दौरान लोकतांत्रिक संस्था घलो निशाना मा रहिन। उहें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय हा सोशल मीडिया मा एक वीडियो साझा करत हुए आपातकाल ला भारतीय लोकतंत्र के सबसे काला अध्याय बताइन। उमन प्रदेशवासी मन ले लोकतंत्र सेनानी मन के त्याग और बलिदान ला याद करत हुए संविधान के रक्षा और लोकतांत्रिक मूल्य ला सशक्त बनाए के संकल्प लेके आह्वान करीन। पल्स पोलियो अभियान के तहत 28 जून के प्रदेश मा शून्य लेके 5 वर्ष तक के लइका मल्ला पोलियो के दवाई पिलाए जाही। उन्हें छोटे लइका मल्ला 29 और 30 जून के मापअप अभियान के तहत स्वास्थ्य कार्यकर्ता और मितानिन घर घर जाके दवाई पिलाही। स्वास्थ्य विभाग हा बालक मल्ले अपील करे है कि उमन 28 जून के अपन तीर के पोलियो बूथ मा जाके लइका मल्ला पोलियो के दवाई जरूर पिलाए। राज्यपाल रमेन डेका हा लोक भवन मा वीडियो कॉन्फ्रेंसी के जरिया ले शक्ति जिला के अधिकारी मन के संग चर्चा करके जन कल्याणकारी योजना के जानकारी लेन। राज्यपाल हा जल संरक्षण और पर्यावरण संवर्धन ला सबले आगू राखे के निर्देश दिन। उहें राज्यपाल हा रायपुर के माना कैंप मा स्थित फिजिकल रेफरल रिहेबिलिटेशन सेंटर सेरेब्रल पॉलिसी गेट लैब और दिव्यांग जनमन बर संचालित महाविद्यालय के निरीक्षण करके वहां उपलब्ध सुविधा के जायजा लेन। ए दौरान उमन हा दिव्यांग जनमनला ट्राईसाइकल घलो दिन। वरिष्ठ आईपीएस बद्री नारायण मीणा ला बस्तर रेंज के नवा पुलिस महानिरीक्षक नियुक्त करे गए है। उमन बस्तर आईजी सुंदरराज पी के जगह ली ही इस संबंध में गृह विभाग हा आदेश जारी कर दे है। श्री मीणा पुलिस मुख्यालय नवा रायपुर मा आईजी के पद मा तैनात रही। एकर पहली उमन दुर्ग रेंज के आईजी के रूप मा अपन सेवा दे चुके है। जसपुर पुलिस आ काली 24 जून के जिला के सबो 766 गांव मा एक संग जन चौपाल लगा के हेलमेट जागरूकता अभियान चलाइन। ए अभियान ला गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड मा दर्ज करे गए है। जसपुर पुलिस अधीक्षक कार्यालय मा आयोजित कार्यक्रम गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के राज्य प्रमुख सोनल राजेश शर्मा हा एसएसपी डॉक्टर लाल उमेशीला वर्ल्ड रिकॉर्ड के प्रमाण पत्र और मेडल प्रदान करें। काली छत्तीसगढ़ के संग देश के आने आने जगह मा मुहर्रम श्रद्धा और आस्था के संग मनाए जाही। करबला मा सत्य और न्याय के रक्षा बर पैगंबर मोहम्मद के नवासे हजरत इमाम हुसैन और उखर साथी मन के शहादत के याद मा मुहर्रम मनाए जाते। ए बेरा मा ताजिया निकाले जाते और करबला के शहीद मन के सर्वोच्च बलिदान के याद मा मजलिस के आयोजन करे जाते। मुहर्रम के बेरा मा राजधानी रायपुर के संग राज्य के कतकोन शहर मा काली ताजिया निकाले जाही। रायपुर के करबला मा हजरत हुसैन के बड़का कुर्बानी ला याद करत हुए मजलिस यानी धार्मिक बैठका के आयोजन करे जाही। राजनांदगांव मा राज्य कर विभाग हा फर्जी बिलिंग के मामला मा कार्यवाही करत हुए मैसर्स आदेश्वर ट्रेड लिंक के संचालक आदेश्वर चौरडिया ला गिरफ्तार करे है। जांच मा करीब 76 करोड़ रुपया के कागजी लेन देन और 8 करोड़ 22 लाख रुपया के संदिग्ध इनपुट टैक्स क्रेडिट के मामला आगू आए है। विभाग के अनुसार फर्म हा बिना वास्तविक खरीदी के फर्जी बिल के जरिया ले कर लाभ लेके प्रयास करें। आखिर मा प्रमुख समाचार एक घौ फेर। प्रदेश मा बहुमंजिला भवन कोचिंग संस्थान होटल और व्यावसायिक दुकान के सुरक्षा व्यवस्था के विशेष ऑडिट कराए जाही। मुख्यमंत्री हा दिन निर्देश। आज संविधान हत्या दिवस मा छत्तीसगढ़ के संग देश भर मा आने आने कार्यक्रम आयोजित करे जाते और पल्स पोलियो अभियान के तहत 28 जून के प्रदेश मा शून्य लेके 5 बछर तक के लइका मन ला पोलियो के दवाई पिलाए जाही। एकरे संग छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन यही सिरावत है। जय जोहार।
1: छत्तीसगढ़ी में प्रादेशिक समाचार अभी हम आकाशवाणी रायपुर से रिले कर रहे थे। मीडियम वेव 238.09 मीटर यानी 1260 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6:20 होने वाले हैं। अब प्रस्तुत है लोक संगीत का कार्यक्रम गोधूली। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे ठाकुर मिंज और साथियों के गाए सादरी लोकगीत और श्याम लाल उइके और साथियों का गाया सरगुजिया लोकगीत। कार्यक्रम में पहले सुनते हैं ठाकुर मिंज और साथियों का गाया ये सादरी लोकगीत।

गोदोली कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे सादरी और सरगुजा लोकगीत। कलाकार थे ठाकुर मिंजौर साथी और श्याम लाल उइके और साथी। इसी के साथ लोक संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। मीडियम वेव 238.09 मीटर यानी 1260 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी अंबिकापुर है। श्रोताओं, हम आपको बताना चाहेंगे कि आईसीसी टी20 महिला विश्व कप क्रिकेट के अंतर्गत भारत और बांग्लादेश के बीच ओल्ड ट्रेफर्ड मैनचेस्टर में खेले जाने वाले मैच का आंखों देखा हाल अब हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे और इसे आप सुनेंगे हमारे मीडियम वेव 1200

260 किलोहर्ट्ज और 238.09 मीटर पर, FM 100.2 मेगाहर्ट्ज और न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर आप हमारा नियमित प्रसारण यानी फिल्म संगीत का कार्यक्रम माधुरी सुनेंगे। तो लीजिए सुनते हैं कार्यक्रम की पहली पेशकश जो है KK की आवाज में। फिल्म का नाम है रहना है तेरे दिल में, गीत समीर का, संगीत हैरिस जयराज का। सच कह

लीजिए पेश है कार्यक्रम का अगला गीत जो है अभिजीत की आवाज में। फिल्म का नाम है अंजाम। गीत लिखा है समीर ने, संगीत आनंद मिलिंद का है।

0: श्रोताओं, हम आपको याद दिला दें कि आप आईसीसी टी20 महिला विश्व कप क्रिकेट के अंतर्गत भारत और बांग्लादेश के बीच ओल्ड ट्रेफोर्ड मैनचेस्टर में खेले जा रहे मैच का आंखों देखा हाल हमारे मीडियम वेव 238.09 मीटर यानी 1260 किलो हर्ट्ज पर सुन सकते हैं और एफएम बैंड और न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम माधुरी।
1: चोरी से तक दी है सट सीने से।

सुखविंदर सिंह और साहिल हाडा की आवाज़ में अभी आपने सुना फिल्म सरबजीत का गीत, और इसी के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम माधुरी समाप्त हुआ। एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज़ और न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर हम आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6:45 होने वाले हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी रायपुर से रिले करेंगे।

0: आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार।
1: क्या बात है उमेश, आजकल खूब छाए हो अखबार में नई नई रिपोर्टिंग के साथ।
2: हाँ यार, पत्रकार जो हूँ।
1: तो अब अगली रिपोर्टिंग किस पर कर रहे हो
2: सुधीर? मुझे एक

0: ऐसी 11 साल की लड़की के बारे में पता चला है जिससे एक परिवार वाले घर का सारा काम करवाते हैं और ऊपर से उस पर ज्यादती करते हैं। उसी पर एक स्टोरी बना रहा हूँ।
1: उमेश, स्टोरी बनाते समय इस बात का ध्यान रखना कि पीड़ित बालिका का नाम, पता, फोटो या स्कूल का पता या ऐसी कोई भी जानकारी सामने न आए जिससे उसकी पहचान होती हो।
0: क्यों?
1: क्योंकि ऐसा करना बाल न्याय तथा बच्चों की देखभाल और उनके संरक्षण संबंधी संवैधानिक अधिनियम 21A का उल्लंघन है और इस बात का ध्यान हमारे सभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों को भी रखना है।
2: बाल अधिकार हनन से पीड़ित बच्चों की पहचान उजागर करने वाली जानकारी का प्रकाशन या प्रसारण न करें, क्योंकि इससे पीड़ित बच्चों के सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है।
3: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
4: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
3: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठकर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
4: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
3: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है रे।
4: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
2: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए, विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।
5: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
4: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
6: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
4: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
6: आकाशवाणी से।
2: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर, आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।
7: ये आकाशवाणी रायपुर है, प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं राहुल सिन्हा। और अब पेश आज के मुख्य समाचार। प्रदेश में बहुमंजिला भवनों, कोचिंग संस्थानों, होटलों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की सुरक्षा व्यवस्था का विशेष ऑडिट कराया जाएगा। छत्तीसगढ़ सहित देशभर में आज मनाया जा रहा है संविधान हत्या दिवस। जशपुर पुलिस द्वारा 1766 गांव में चलाए गए हेलमेट जागरूकता अभियान को गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में स्थान मिला और कल छत्तीसगढ़ सहित देश के विभिन्न भागों में श्रद्धा और आस्था के साथ मनाया जाएगा मुहर्रम। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राज्य में जन सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बहुमंजिला भवनों, कोचिंग संस्थानों, होटलों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की सुरक्षा व्यवस्था का विशेष ऑडिट कराने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव को राज्यभर में अग्नि सुरक्षा, भवन सुरक्षा और आपातकालीन व्यवस्थाओं की जांच कराने को कहा है। इसके तहत सभी जिलों में विशेष निरीक्षण अभियान चलाया जाएगा। इस दौरान भवन की सुरक्षा, फायर NOC, अग्निशमन उपकरण, आपातकालीन निकास, विद्युत व्यवस्था की जांच की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सुरक्षा मानकों की अनदेखी करने वालों पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण तथा रसायन और उर्वरक मंत्री JP नड्डा से मुलाकात की। इस दौरान जन स्वास्थ्य, औषधि और उर्वरक क्षेत्र सहित विभिन्न विभागीय विषयों पर चर्चा हुई। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री को जानकारी दी कि राज्य में खाद वितरण व्यवस्था पर सतत निगरानी रखी जा रही है, कालाबाजारी और जमाखोरी के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है, साथ ही राज्य सरकार नैनो यूरिया और नैनो DAP के उपयोग को बढ़ावा दे रही है। इससे पहले कल मुख्यमंत्री ने नई दिल्ली प्रवास के दौरान केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात कर छत्तीसगढ़, विशेषकर बस्तर क्षेत्र के विकास कार्यों और जनकल्याण योजनाओं पर चर्चा की। इस दौरान श्री साय ने छत्तीसगढ़ में अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान की स्थापना का प्रस्ताव भी रखा। नई दिल्ली प्रवास के दौरान आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से भी सौजन्य मुलाकात की। इस अवसर पर संगठन से जुड़े विभिन्न विषयों सहित प्रदेश में संगठनात्मक गतिविधियों के प्रभावी क्रियान्वयन पर चर्चा हुई। वहीं मुख्यमंत्री ने आज नई दिल्ली स्थित छत्तीसगढ़ सदन में संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में सफल हुए ट्राइबल यूथ हॉस्टल के विद्यार्थियों से मुलाकात

0: जाकर उनका उत्साहवर्धन किया। गौरतलब है कि यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में द्वारका स्थित ट्राइबल यूथ हॉस्टल के 13 छात्रों ने सफलता पाई है। इनमें से अधिकांश विद्यार्थी जनजातीय, ग्रामीण और सामाजिक रूप से वंचित वर्गों के हैं। आज संविधान हत्या दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर देशभर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। यह दिवस 25 जून 1975 को लगाए गए आपातकाल की याद दिलाता है, जब देश में संवैधानिक अधिकार और लोकतांत्रिक मूल्य गंभीर रूप से प्रभावित हुए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संविधान हत्या दिवस पर आपातकाल के दौरान लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए दृढ़ संकल्पित रहे लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि आपातकाल संविधान पर सीधा हमला था। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस दौरान लोकतांत्रिक संस्थाएं भी निशाने पर रहीं। वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए आपातकाल को भारतीय लोकतंत्र का सबसे काला अध्याय बताया।
1: 25 जून को हम लोग संविधान हत्या दिवस मना रहे हैं, क्योंकि 25 जून 1975 को इस देश में इमरजेंसी लागू हुआ था, संविधान की हत्या हुई थी। जितने भी गैर कांग्रेसी लीडर थे सबको जेलों में डाल दिया गया था, मीडिया जगत के अधिकार को भी छीना गया था। तो इस तरह से संविधान में जो नागरिक को अधिकार है वो अधिकार से भी वंचित किया गया था और कितनों का घर इसके कारण बर्बाद भी हो गया। तो इसीलिए 25 जून को हम सब लोग संविधान हत्या दिवस मना रहे हैं।
0: महिला और बाल विकास विभाग ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के लिए साड़ी की केंद्रीकृत खरीदी व्यवस्था को समाप्त कर दिया है। अब साड़ी खरीदी के लिए निर्धारित राशि सीधे कर्मचारियों के बैंक खातों में अंतरित की जाएगी। महिला और बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने बताया कि इस नई व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य साड़ी वितरण में होने वाली गड़बड़ियों, बिचौलियों की भूमिका और गुणवत्ता से जुड़ी शिकायतों को पूरी तरह खत्म करना है।
2: जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका का जो साड़ी होता है, अब बड़ा निर्णय हम लिए हैं कि इसको केंद्रीकृत करके डायरेक्ट आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका के खाते में जो राशि है वो डीबीटी के माध्यम से जाए। यहाँ से निर्धारित होगी कि कैसे कलर में रहेंगे और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता स्वयं सहायिका स्वयं खरीदेंगे। कुल मिलाकर यह है कि इसको पारदर्शिता करने के लिए एक बड़ा पहल किया गया है।
0: नगरीय प्रशासन और विकास विभाग ने प्रदेश के सभी नगरीय निकायों को मरम्मत और रखरखाव के लिए 22 करोड़ रुपए से अधिक की आपात निधि जारी की है। विभाग द्वारा चालू वित्तीय वर्ष की प्रथम तिमाही अप्रैल से जून महीने के लिए यह राशि जारी की गई है। इसके तहत 14 नगर निगमों को 13,76,00,000 रुपए जारी किए गए हैं। वहीं 56 नगर पालिकाओं के लिए 5,18,00,000 रुपए स्वीकृत किए गए हैं। विभाग ने 124 नगर पंचायतों के लिए भी 3,66,00,000 रुपए जारी किए हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। राज्यपाल रमेन डेका ने लोकभवन में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सक्ती जिले के अधिकारियों के साथ चर्चा कर जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी ली। राज्यपाल ने जल संरक्षण और पर्यावरण संवर्धन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। वहीं राज्यपाल ने रायपुर के माना कैंप में स्थित फिजिकल रेफरल रिहेबिलिटेशन सेंटर, सेरेब्रल पाल्सी गेट लैब और दिव्यांगजनों के लिए संचालित महाविद्यालय का निरीक्षण कर वहां उपलब्ध सुविधाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने दिव्यांगजनों को ट्राईसाइकिल भी वितरित की। प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों में कल विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन किया जाएगा। इन बैठकों में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत आवास प्लस 2.0 सर्वेक्षण से तैयार स्थायी प्रतीक्षा सूची का सत्यापन किया गया। ग्राम सभा की स्वीकृति प्राप्त होने के बाद अंतिम सूची को निर्धारित ऑनलाइन प्रणाली में दर्ज किया जाएगा। बैठक में 1 जुलाई से लागू हो रही विकसित भारत जी राम जी योजना के बारे में भी जानकारी दी गई। जशपुर पुलिस ने कल 24 जून को जिले के सभी 766 गांव के ने एक साथ जन चौपाल लगाकर हेलमेट जागरूकता अभियान चलाया। इस अभियान को गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। गौरतलब है कि सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों को कम करने और यातायात नियमों के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से जशपुर पुलिस द्वारा हेलमेट जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत कल इन गांव में जन चौपाल, विशेष ग्राम सभा और हेलमेट जागरूकता अभियान का आयोजन किया गया। वरिष्ठ आईपीएस बद्रीनारायण मीणा को बस्तर रेंज का नया पुलिस महानिरीक्षक नियुक्त किया गया है। वे बस्तर आईजी सुंदरराज पी की जगह लेंगे। इस संबंध में गृह विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। श्री मीणा पुलिस मुख्यालय नवा रायपुर में आईजी के पद पर तैनात थे। इससे पहले वे दुर्ग रेंज के आईजी के रूप में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव से ली गई विशेष भेंटवार्ता का प्रसारण आकाशवाणी द्वारा कल 26 जून को किया जाएगा। यह कार्यक्रम सुबह

0: 10 बजे से 10:25 तक प्रसारित होगा। प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रायपुर द्वारा तैयार इस कार्यक्रम का प्रसारण छत्तीसगढ़ के सभी आकाशवाणी केंद्रों से किया जाएगा। कल छत्तीसगढ़ सहित देश के विभिन्न भागों में मुहर्रम श्रद्धा और आस्था के साथ मनाया जाएगा। करबला में सत्य और न्याय की रक्षा के लिए पैगंबर मोहम्मद के नवासे हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों की शहादत की याद में मुहर्रम मनाया जाता है। इस मौके पर ताजिया निकाले जाते हैं और करबला के शहीदों के सर्वोच्च बलिदान की याद में मजलिसों का आयोजन किया जाता है। मुहर्रम के मौके पर राजधानी रायपुर सहित राज्य के कई शहरों में कल ताजिये निकाले जाएंगे। रायपुर के करबला में हजरत हुसैन की बड़ी कुर्बानी को याद करते हुए मजलिसों यानी धार्मिक बैठकों का आयोजन किया जाएगा। रायपुर जिले के अभनपुर में चल रहे जिला कांग्रेस के अध्यक्षों के 10 दिवसीय संगठनात्मक प्रशिक्षण शिविर में आज कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल और प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट शामिल हुए। उन्होंने जिला अध्यक्षों को संगठन को मजबूत बनाने से संबंधित दिशा निर्देश दिए। यह शिविर 29 जून तक चलेगा। छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक मर्यादित अपेक्स बैंक की सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले की बरमकेला शाखा में 18,13,00,000 रुपए के गबन के मामले में बैंक प्रबंधन ने कार्रवाई करते हुए 8 कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया है। इस मामले की जांच आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो ईओडब्ल्यू करेगी। वहीं बलरामपुर जिले के सहकारी बैंक में करीब 30,51,00,000 रुपए की वित्तीय अनियमितताओं की जांच प्रवर्तन निदेशालय ने शुरू कर दी है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के बिलासपुर मंडल में निपनिया भाटापारा सेक्शन में अंडरब्रिज निर्माण के चलते आज से 29 जून तक कई ट्रेनों का परिचालन प्रभावित रहेगा। रेलवे प्रशासन ने 10 ट्रेनों को रद्द करने के साथ ही 3 ट्रेनों को निर्धारित स्टॉपेज के पहले समाप्त करने का निर्णय लिया है। इस बीच यात्रियों की सुविधा के लिए भुवनेश्वर और मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनस स्टेशन के बीच एक फेरे के लिए स्पेशल ट्रेन कल 26 जून को चलाई जाएगी। यह ट्रेन कल भुवनेश्वर से रवाना होकर 28 जून को लोकमान्य तिलक टर्मिनस स्टेशन पहुंचेगी। इस ट्रेन का स्टॉपेज रायपुर और दुर्ग स्टेशन में दिया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में बहुमंजिला भवनों, कोचिंग संस्थानों, होटलों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की सुरक्षा व्यवस्था का विशेष ऑडिट कराया जाएगा। छत्तीसगढ़ सहित देशभर में आज मनाया जा रहा है संविधान हत्या दिवस। जशपुर पुलिस द्वारा एक साथ 766 गांव में चलाए गए हेलमेट जागरूकता अभियान को गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में स्थान मिला और कल छत्तीसगढ़ सहित देश के विभिन्न भागों में श्रद्धा और आस्था के साथ मनाया जाएगा मुहर्रम। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन हिंदी में कल सुबह 9:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
1: मीडियम वेव और एफएम बैंड पर हम आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, हम आपको याद दिला दें, आईसीसी T20 महिला विश्व कप क्रिकेट के अंतर्गत भारत और बांग्लादेश के बीच ओल्ड ट्रेफोर्ड मैनचेस्टर में खेले जा रहे मैच का आंखों देखा हाल आकाशवाणी दिल्ली से आप सुन सकते हैं। मीडियम वेव 238.09 मीटर यानी 1260 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम बैंड और न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर अब प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण। हम आपको पहले बता दें अपनी सभा के शेष मुख्य कार्यक्रमों के बारे में। अब से कुछ देर बाद 7:05 पर आप सुनेंगे सुगम संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा। 7:20 पर होगा चौपाल कार्यक्रम। आज इस कार्यक्रम में ग्रामीण श्रोता सुनेंगे प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना और लोकतंत्र की रक्षा, हर नागरिक की जिम्मेदारी, इन विषयों पर चर्चा। साथ ही किसानवाणी के अंतर्गत किसान संध्या क्रम होगा और इसमें किसानों और कृषि विशेषज्ञों से स्थल रिकॉर्डिंग पर आधारित कार्यक्रम श्रोताओं को सुनवाया जाएगा। इंस्टा फरमाइश, सोशल मीडिया पर आधारित इस फरमाइशी कार्यक्रम को लेकर हम आपके लिए हाजिर होंगे रात 8:00। चित्रपट संगीत का कार्यक्रम होगा रात 9:15 पर और ईमेल की गूंज रात 9:30। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम सूर्यावनी में रात 10:00 आप सुनेंगे पंडित मल्लिकार्जुन मंसूर का गाया राग विभास। फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मनभावन होगा रात 10:30 पर। ये तो थे हमारी इस सभा के शेष।

कल सुबह 6:05 पर होगा भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना। विचार बिंदु कार्यक्रम आप सुनते हैं सुबह 6:30 पर। रामचरितमानस का गायन हम आपको सुनवाएंगे 6:35 पर। मुख्य गायन स्वर ए हरिहरन का है, संगीत संयोजक हैं सतीश भाटिया। खेती की बात में कल सुबह 6:45 पर उन्नत बीजों का चुनाव कैसे करें, इस विषय पर ग्रामीण श्रोताओं को जानकारी दी जाएगी। गुंजे जंगल कार्यक्रम में कल सुबह 7 और गोधूली में शाम 6:20 पर आप सुनेंगे कुछ सादरी लोकगीत। नमस्कार सरगुजा, ये कार्यक्रम लेकर हम हाजिर होंगे आपके लिए। समय होगा सुबह 7:30, बातों और गीतों का कार्यक्रम गुंजन सुबह 9 और कार्यक्रम इनसे मिलिए आकाशवाणी रायपुर से रिले करेंगे सुबह 8:30 पर। छत्तीसगढ़ के स्कूल शिक्षा मंत्री श्री गजेंद्र यादव से विशेष भेंटवार्ता आप सुनेंगे सुबह 10, इसे हम रिले करेंगे आकाशवाणी रायपुर से। श्रोताओं के पत्रों पर आधारित कार्यक्रम चिट्ठी पत्री का प्रसारण समय होगा सुबह 11:05 पर। प्रायोजित शैक्षणिक कार्यक्रम उमंग आप सुनेंगे दिन में 12, एक ही शीर्षक पर आधारित फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चयन लेकर हम उपस्थित होंगे आपके लिए दोपहर 12:30 पर। ग्रामीण महिलाओं का कार्यक्रम घर गोसाइन होगा दिन में 1:10 पर, जिसमें बहने सुनेंगी मुहर्रम पर चर्चा और होगा क्रम कथा कहनी। ईमेल की गूंज कार्यक्रम होगा दोपहर 1:40 पर। गैर फिल्मी गीतों और गजलों का कार्यक्रम हम पेश करेंगे दोपहर 2:30 पर। हमारी सांध्यकालीन सभा आरंभ होगी शाम 5, प्रायोजित कार्यक्रम हमारा हाथी अमर गोट के साथ। इस कार्यक्रम के तुरंत बाद आप सुनेंगे भक्ति संगीत का कार्यक्रम भजन संध्या। रोजाना की तरह शाम 5:30 का समय युवा दोस्तों के कार्यक्रम युवाणी का। फिल्म संगीत का कार्यक्रम माधुरी हम आपके लिए पेश करेंगे शाम 6:30 पर। कार्यक्रम ईमेल की गूंज रात 9:30 पर। और शास्त्रीय रागों पर आधारित फिल्मी गीतों का कार्यक्रम राग प्रधान आप सुनेंगे कल रात 10। ये तो थे हमारे केंद्र से आज और कल प्रसारित होने वाले कुछ एक कार्यक्रम।

FM 100.2 MHz और न्यूज ऑन AIR ऐप पर हम आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 7:05 हो चुके हैं और ये वक्त है सुगम संगीत के कार्यक्रम रजनीगंधा का। कार्यक्रम की शुरुआत में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं भूपेंद्र सिंह की गई ये गजल।

एक बेरंग सा मंजर है जहां तक सोचूं, जिंदगी में तेरे बारे में कहां तक सोचूं। लीजिए पेश है कार्यक्रम की अगली गजल, शायर हैं कैसर उल जाफरी, आवाज मिताली सिंह की।

ललित अजीज की गई इस गजल के साथ ही सुगम संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा अब समाप्त हुआ। FM बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज़ और न्यूज ऑन AIR ऐप पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी अंबिकापुर का केंद्र। और इस वक्त शाम के 7:20 हो चुके हैं। समय है ग्रामीण श्रोताओं के कार्यक्रम चौपाल का।

0: बिनु भैया राम राम,
1: राम राम भजन भैया,
0: और चौपाल सुनोइया जम्मू हमर किसान भैया बहनी सब झनला के ही राम राम।
1: हाँ भजन भैया देखी भाई दे राम राम हो गईस जोहार हो गईस। बाकी मैं कहत रहन कि आजकल देखी चटिक बरखा पानी हर गिरी से तो कैसे कहत ही राउर काम बूता मन छत बदइन कि भिड़न काम बूता में की कैसे
0: भाई जरूरी है। या बरखा पानी देखिए आवत है तो खेती किसानी तो करनी

0: अभी नहीं, और ये कहे कि भाई अभी धान पान भाई लगाना है तो अभी ले खेत कर जुताई कोड़ाई करना जरूरी है।
1: तो राउर तरफ थरहा लायक गिरिस पानी की
0: चटिक नाजो अभी
1: नाजो ना तैयारी में ना है
0: बाकी, हाँ, बाकी तैयारी चलत है। बाकी ये है कि चटिक आषाढ़ नियर जैसे पानी गिरेल ना वो पानी हर नाजो पहुंचे
1: तो आषाढ़ो भर तो देखिए दो चार दिन है अजय। अब जैसे घुसी नहीं आषाढ़ तो मन हर तो कहता है कि भाई नगद दे धाका धक बरखा हर गिरी तेकर कहब नहीं तो तैयारी मन जे कसाय नहीं शर्ट ले दे थारा कर देबो।
0: बिल्कुल भाई। बाकी बिनु भैया मैं कहत रहे कि भाई हमन आज दिन विशेष कर गोइट करी तो देखिए भाई आज अगर बात करी हमन तो संविधान हत्या दिवस है। आज कर दिन 25 जून ला मनाल जाते ये जो है 2024 में ये निर्णय लेहल गए रही कि जब कोई आपातकाल समस्या आ जाते और कोई ऐसा समय सिचुएशन परिस्थिति आ जाते तो वैसे समय में कहना चाहिए हमन ला ये बात ला सुरता रखना है। और संविधान हत्या दिवस हमन ला ये सिखाएल कि भाई हमार जो लोकतंत्र है वो मजबूत रहे और संविधान में लिखल जो प्रावधान मन है ना जो नागरिक मन जो दायित्व है जो कर्तव्य है वो हर बढ़िया जो है चलत रहे।
1: सुगर रहा भाई देखिए जो हमार देश कर व्यवस्था मन चलत है ना ओकर पाछू देखी भाई सब जन कर बरोबर सहयोग है। और कभी कभी हमार दिमाग में इसे आयल कि देखिए हर सिर्फ सरकार कर काम है बस वही हर चला ही तो लोकतंत्र बस ये सरकार कर चलाए लेनी चले बल्कि ओकर बर देखी जागरूक नागरिक मन कर भी बहुत बड़ा यदि योगदान होयल उस जम झनला जागरूकता कर साथ होला अपन भागीदारी कर साथ हमर अपन संविधान ला मजबूत कर सकत है नहीं।
0: बिल्कुल भाई हमला देखिए जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है ओकर सम्मान करना है जो लोकतांत्रिक संस्था मन है ओकरो सम्मान करना है जो नियम और कानून कायदा बनी से है ओकर पालन ला करना है और संगे संगे वोट देना जरूरी है।
1: हाँ देखिए अगर एक छोटे कन बात में अगर कहीं नहीं तो हमार संविधान में जेतरा बात लिखी नहीं जो व्यवस्था में लिखी ना है नहीं तेकर पालन करना ही कहीं नहीं तो भाई हमार जिम्मेदारी है ओकरे से हमार जो लोकतंत्र है नहीं ओहर मजबूत हो ही।
0: भाई देखिए लोकतंत्र कर जब हमन गोइट करथन जनता बर जनता कर हमार सरकार नहीं तो यार सशक्त तब होई जब हमन नागरिक मन अपन अधिकार कर संग संग अपन कर्तव्य कर प्रति भी सजग रही।
1: हाँ नगद बात कहें काबर किए थे भाई हमर जो अधिकार है नहीं तेला तो आगू बैठ बैठ के सूरता कर कर के हमरे दे कहत रही कि हमार अधिकार है ओहर हमार अधिकार है ऐसे हमार अधिकार है लेकिन ओकर पाछू जो हमार कर्तव्य मन है नहीं तेला भुलाई जाती।
0: तो हमन ला अपन अभिव्यक्ति कर स्वतंत्रता जो मिली से है ओला भी हमन ला अपन बात ला रखना है साथ ही साथ कहीं नहीं जो हमार देश कर एकता कर गोट करथन अखंडता कर बात करथन तो ये जिम्मेदारी भी हमारे बने मिलजुल के हमार भारत जो है एक भारत श्रेष्ठ भारत जिला हमन कथन ओकर निर्माण में हमन सहभागी बनी।
1: देखिए कुछ महत्वपूर्ण बात है नहीं भजन भैया तेला हमन ला समझना चाहिए ओगला अगर हमरे समझ जाते ही नहीं तो हमर जो राउर कहन नहीं कि भाई लोकतंत्र है और ये जो हमर देश है भारत देश तेहर समूचा विश्व कर सबले बड़े लोकतांत्रिक देश है नहीं पूरा देखी समूचा विश्व मेला जानते हैं तो इसे में देखिए हमर जो छोटे छोटे बात है अगर वाला हमरे समझ जाए तो कहीं ना कहीं हमारे लोकतंत्र का सम्मान है। सबले पहले बात यह है कि संविधान और कानून कर हमन ला सम्मान करना है कानून कर पालन करना है और ये एक कही तो दायित्व तो नहीं बल्कि हमर जो लोकतंत्र है तेला मजबूत करे कर माध्यम है। और दूसर कहीं नहीं तो राउर जेकस कहन कि भाई वोट करना जरूरी है मतदान करना जरूरी है तो मतदान देखी हमला भाई अधिकार के रूप में भेटाई से तेला हमरे अगर कर्तव्य के रूप में समझ के अगर वोट डाले जाते ही नहीं तो यही हर बहुत जरूरी है।
0: देखिए हमर संविधान है ना जिए कर रास्ता बताते हमर मौलिक जो कर्तव्य है नहीं जो संविधान जो दही से है जो हमर कर्तव्य है जो मौलिक अधिकार है ओकर जानकारी भी रखना है और ओकर हिसाब से हमन जो है लोकतंत्र कर रक्षा बर चाहे गांव कर कोई भी भाई हमर लइका सियान जवान सब जन बर यह जरूरी है कि हमर गाँव बढ़िया एक सूत्र में बंधे रहे। अगर गाँव एक सूत्र में बंधे रही तो हमर ये कही कि शहर नगर और देश भी एक सूत्र में बंधे रही तो लोकतंत्र कर सम्मान करना और ये कही कि हर नागरिक करे दे जिम्मेदारी हवे। अभी संविधान हत्या दिवस हमन ला एक सुरता दिलाएल देखिए हमन कथन ना भाई कि

0: चीज अगर चोट लग जाए या कहीं कोई समस्या संकट आ जाए तो हर संकट हर हमन ला सुरता करवाएल और एक नवा सीख देल का कहती रहो।
1: नहीं बहुत बड़े बात राउर कहन देखी कब नहीं तो भाई समस्या आई तबे तो समाधान ला खोजबो ओहर निकल के आही नहीं तो ये है देखी भाई समस्या मन के ला अगर हमरे कही तो भाई सही तरीका से सोची नहीं तो भाई एक तरह से रास्ता दिखाकर काम है नहीं तो भाई ये है बहुत बड़े बात है। बाकी मैं कहत रहे कि अभी कर समय में एक बात हर बहुत जरूरी हो जाए ला वो है देखिए हमार सरकार कर द्वारा बनाल योजना मन अब उमे ले एगो सुघर कन योजना कर सुरता करता हूँ मैं अब वो है देखिए प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना कहीं तो अभी बात चलता है कि हमन ला अपन देश ला और अपन ला का कैसे बनाना है आत्मनिर्भर भारत के रूप में बनाना है तो यार एगो मॉडल के रूप में आया है देखिए प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना।
0: देखिए बहुत सुगर कहा था प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना कर जब रेगुलेट करा थी तो देखिए आत्मनिर्भर कर बात हुई जब हमारा आत्मनिर्भर भारत तब बनी जब हमन हमार जो पारंपरिक जो कहना चाहिए काम बूता मना है भाई जिसे बढ़ई कर काम होगी जैसे लोहार कर काम होगी कुम्हार कर काम होगी दर्जी सोनार मोची जो राजमिस्त्री मना है ये तरह से मतलब एक है कि जो हमारे पारंपरिक जो व्यापार है व्यवसाय है ओला जुड़ करके हमारे कारीगर मन लाभ ले सकते है और एक है कि भाई एमे योजना के तहत जो लाभ मिले गोइट करीब भैया तो देखिए यदि कौशल प्रशिक्षण दिहल जाए संगे संगे आधुनिक उपकरण कर बर सहायता भी दिहल जाए और आजकल जमाना मॉडल कर बात नमूना कर बात करथन तो ये कहे कि डिजिटल लेन देन भी होता है उकर बर भी प्रशिक्षण दिहल जाता है और सबसे बड़ा बात कि यदि बहुत कम ब्याज में जो है यदि ऋण उपलब्ध होता है
1: हाँ योजना कर विशेष बात ऐसे है नहीं भजन भैया कि जेमन लाभार्थी होता है नहीं तेमन ला बिना कोई गारंटी के देखी ब्याज और कम ब्याज में जैसे राउर कहें भी ऋण यदि भेटा ही और पहला चरण में कही तो 1,00,000 रुपया तक कर और दूसरा चरण में कही तो 2,00,000 रुपया तक कर ऋण हमन ला भेटा जाए।
0: अच्छा
1: एकर से कारीगर मन जो है अपन काम बूता शुरू कर सकता है और ओला बढ़ाए भी सकता है।
0: अच्छा
1: राउर जगह अगर छोटे व्यवसाय है शुरू ले पहले ले बाकी राउर चाहती कि ओला चटिक बड़े रूप में करी तो ओकर बर भी एमे मदद है और राउर भाई शुरू में ही गोट कहन कि भाई देखी इतरा इतरा काम है और हमर जो देश है तेहर तो पहले ले कारीगर और शिल्पकार मन कर देश रही से अब जितना काम लड़ा और गिनान नहीं ओमन कर बिना दे जीवन हर अधूरा है काम नहीं बने।
0: बिल्कुल भाई हमारी एक सामाजिक जो संरचना बनी से है उसमें बहुत बड़ा योगदान है भाई जैव विविधता हमन कथन पारिस्थितिक संतुलन कथन वही कसा है कहना चाहिए जो भी हमारा सामाजिक जीवन है सब एक दूसरे से जुड़ी न है। अभी देखिए भाई अगर हमन नादा पैना अगर लोहा निफर तो कैसे ना करला जो तो ओकर बर अमन भाई लोहार पाड़ा जाने पर ही ना करला फरवाने पड़े तो ये तरह से कोई बढ़ई काम हमन ला कुर्सी टेबल बनवाना है चाहे कहीं भाई पलंग बनवाना है
1: खटिया घर
0: खटिया बनाना है तो ओकर जब तक जानकार नहीं रही तो कैसे अपन बनाए पाबो तो मन जग जाने पर ही नहीं भाई कुम्हार है वही अगर माटी कर घड़ा लेना है तो उन्हें जग जाए पर ही लेकिन इस काल में देखा तो हूँ जब से ये जो प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना आई से है तब से बरन बरन कर दे प्रशिक्षण भेटावत है और ये कही कि नहीं दे कुम्हार मन घलू घड़ा घड़ा कर बात करी तो कोनो छोटे घड़ा तो कोनो बड़ा घट इस काल तो दे बाटल बनाता है
1: नहीं सोचे ही तेकस तेकस चीज
0: तो जरूरत है कि हमन ला भाई आधुनिक नवाचार के साथ जुड़ना है प्रशिक्षण लेना है और रवि अभी बड़ा सुघर बताएं कि भाई 15,000 से 1,00,000, 2,00,000, 3,00,000 तक जो है ऋण दे कर रहे सरकार का तीन योजना है कि नहीं तो एक फायदा घलुक हमन ला लेना है और जो हमारे पारंपरिक व्यवसाय है उन्हें आधुनिक स्वरूप देना है आधुनिक रूप में और उकर बाजार व्यवस्था बनाए कि भाई जो हमर परंपरा जो है हमर जो हमर संस्कृति है ओहुला बचाना है। ये देखिए योजना हर केवल कहीं नहीं साधन नहीं है बल्कि हमर सांस्कृतिक विरासत ला संरक्षण दे वाला है।
1: बहुत सुघर गोट करे ना राउर जेकस भाई गोटिया थी मन हर करता है कि सुनते च रहो बाकी देखिए दे बेरा हर होएगी सहाय यदि आवाज राउर जानत है कि भाई कोई न कोई गांव में जाए के गोट बात करे वाला कार्यक्रम है तो भाई मन करता है कि ओहुला सुनते ने दे भाई चटिक बताई भाई दे किसान वाड़ी में आज दे का कार्यक्रम हमरे दे सुना।
0: देखिए हमन किसान और कृषि विशेषज्ञ मन से जो स्थल रिकॉर्डिंग पर आधारित कार्यक्रम हमन जातन गांव में किसान संध्या और ये बार हमन गेरहन ग्राम बलसेड़ी वहां कर किसान

0: किसान वाड़ी सुनोइया जमो किसान भैया बहनी मन ला जोहार करत हन बिनु भैया।
1: हाँ भाई दे जोहार। आउ आज कर कार्यक्रम हर हमर चट्टी के दे आने कस रहेल, काबर की हमरे कोई न कोई गांव जाती नहीं। आउ एला हमरे दे भाई कथी की किसान मन कर बीच उनकर संग बैठ के गोट बात करे वाला कार्यक्रम। अब ये कार्यक्रम का नाम हमरे का रखती भजन भैया,
0: किसान संध्या।
1: हो तो किसान संध्या में सांझ कर बेरा में दे कौन गांव आए ही तेला चट्टी और बता।
0: किसान संध्या कार्यक्रम ला हम आज लेके आए हैं ग्राम बलसेड़ी।
1: हो
0: बीच पारा,
1: बीच पारा।
0: और यहाँ कर देखिए देखा था सियान मन घलुक आवत जाते हैं घलुक, और बहुत सियान मन घलुक बैठी है। और ये नवा नवा जो किसान है जिला युवा किसान का युवा किसान मन घलुक बैठी है, है ना। तो सबसे पहले मन जब जोहार भेंट कर ले थे।
1: हाँ तो जम झनला जोहार,
0: जय जोहार।
1: हाँ देखिए दे भाई जोहार होगी। बाकी मैं कहत रहन कि खेती पाती कर बात हमरे करब, आउ जुटत है और जुटत जात है और ये ढेरेच कन हो जाए नहीं तो बेरा हर हमर जब चट्टी कम हो जाए। तो मैं कहत रहन दे गोट बात ला रहा शुरू करते हैं भाई।
0: हाँ तो सबसे पहले दे गुट किसान दादा हमर जो बैठी है।
1: हाँ।
0: तो जानत है इनकर नाम है ना।
1: हाँ।
0: तो रौरे कर का नाम हवे?
2: मोर नाम देव प्रसाद।
0: तो खेती पाती में रौरे का दो करत है?
2: मैं अभी धान रोपा चालू करे वाला हूँ और उद्दा उद्दा बुनत हूँ।
0: अच्छा तो धान कर पहले गोट कर ली। हाँ। तो धान कर जो थरहा मन है तेमन मतलब लगे ढारिन की
2: नहीं शुरू करे वाला हूँ?
0: अच्छा तो धान कर जो खेती हुएल ओकर तैयारी रौरे कौन तरह से करती, कैसे जो है खेत मनक जोताई? देखी सबसे पहले तो नहीं खेत कर बात कौन खेत में बढ़िया होते?
2: तो बहरा खेत में
0: और चावर मन में? तो
2: चावर में भी लगा
1: तैयारी मन ला चटिक बता।
2: तैयारी कर थी ट्रैक्टर मन है और पटा लगरी भैंसा नागर में।
0: अच्छा तो भैंसा नागर घलो करौरे जगह है?
2: हां
0: हां तो वो तो अच्छा बलबलहार रेंगा तो
2: बलहार रेंगे दुई जे चेक बैठ था।
0: कई बह रौरे जोते हैं खेत?
2: तो दुई बह जोते हैं, तीसरा बह में लगा था।
1: अब जेकस पानी आता है तो भाई ये रोपा पर चिखला है दे हो पा रही की का सोचा थी?
2: वही डैम को पानी है जाए और ट्यूबवेल कह कर थी कम पड़े थी घरी
1: राउर सियान ही देखिए दे। और अभी कर समय में बरखा पानी हर कहते हैं कम है तो राउर समय में भी यही कस होत रही बीच बीच में की
2: यो घरी हो बकी चार साल तीन साल में धर हो एक कम बरखा।
1: हाँ।
2: तो बरखा बढ़िया हो बांध मुड़ा भर जाए।
1: हाँ।
0: देखिए पहले जंगल झाड़ी रुख राई मन घलुक ढेरे रही नहीं आज। हाँ। कल कटत जाते है भाई देखिए अब अमरिकापुर नगर नगर ले घलुक जितने हम आत रहे तो दिक्कत रहे कि रास्ता भेरे दे भाई कुछ रास्ता में दे जंगल पहाड़ देखी बाकी घर मन ढेरे बन गई है।
2: हाँ डांड होगी सब। अब कहा डांड दिखे अब सब गाँव है दिखे थोड़ा सा बरसड़ी बगल में बाची से वही है जंगल है।
0: तो देखिए अभिनव भैया।
1: हाँ।
0: देव प्रसाद भैया बढ़िया जो है खेती पाती करते हैं और धान पान मन लगाई न है और बहुत उर्दा भी लगाई न है। अमन भाई यही कहब कि इनकर धान कर फसल उर्दा फसल है बढ़िया होए और यदि आर्थिक लाभ ला कमाए।
1: हाँ।
0: है ना बाकी आओ किसान मन जंगल गोट बात करना है।
1: हाँ।
0: तो लगी दो
1: देखिए दे हमन ला यहाँ लाने वाला है नहीं पहले उनकर जब गोट बात करे थी चटी गाँव कर बारे में भी जानते हैं तो राउर नाम ला बताते हैं।
3: हमारे नाम शामिल है।
1: तो भाई ये गांव के बारे में बताई सटी कि अंबिकापुर ले कितना दूरी हुई है और कितना संख्या है जनसंख्या यहाँ पर हुई लगभग?
3: बलसेड़ी गांव से अंबिकापुर में लगभग वही 12-15 किलोमीटर में है।
1: और जनसंख्या यहाँ कितना हुई लगभग?
3: लगभग वही 12-1300 का लगभग है
1: नहीं।
3: हाँ।
1: तो राहुल भाई यहाँ लाने ही हमारे ला राहुल का काम बुता करती?
3: अब हम तो पंचायत में भाई रोजगार गारंटी में रोजगार सहायक के रूप में काम करती।
1: हाँ।
3: मैं ऐसे खलबा मोर मेन पंचायत है पहले आश्रित ग्राम यहाँ भी रही।
1: हाँ।
3: तो यहाँ भी काम

0: पुताला करें तो अपन भाई बोले तो मैं कहें अपन हिसाब से कहें कि भाई ले चलो वही
1: सुगर जगह लाने ही देखिए देने का जुटाए भी है किसान मन ला नहीं।
0: हाँ जब सबके तनी खबर उबर करे रहे हैं कि तनी कहिया खेती बाड़ी के बारे में बरखा पानी के बारे में कुछ बात ला करा मिल
1: के। बाकी राउर ये बताई कि ये गांव में ज्यादातर का फसल लेना पसंद करती है यहाँ का किसान मन।
0: यहाँ देखिए ज्यादा फसल यही हमार गन्ना हो गई है ना और धान

0: ज्यादातर का फसल लेना पसंद करते यहाँ का किसान मन?
1: यहाँ देखिए ज्यादा फसल यही हमार गन्ना हो गए है ना, और धान और थोड़ा बहुत गेहूँ
0: है ना।
1: हाँ, और अभी मक्का उक्का लगत है।
0: बरखा पानी कर का उम्मीद है?
1: बरखा पानी है तो असो तनी कमे च लागत है।
0: हाँ शुरू में दो तीन दिन तो बढ़िया देहीस।
1: हाँ
0: हाँ
1: एकर बाद तो अभी अब सब किसान मन के बकाइन है, दो तीन दिन ले पानी तिनको बरसते च नहीं है।
0: दिखाओ भाई किसे नहीं
1: टापा टिपी करता है तहां ले बंद हो जाए।
0: आओ देखिए आवाज शुरू शुरू में कहब नहीं तो देखा का कर संग तो नगद है इस।
1: हाँ एको दिन बढ़िया गिरीस तो किसान मन भाई तनी कमन कमन हरियर लगीस। खेती बाड़ी लहा बढ़िया हो, लेकिन अभी ऐसे लगता है कि पता नहीं पानी हर गिर ही कि नहीं गिर।
0: देखिए राहुल यहाँ भाई हम लाने ही तो ओकर बरते दे राहुल के धन्यवाद। बाकी दे राहुल गांव करे किसान मन है नहीं ते मन जगह हमरे गोद।
1: हाँ हाँ चले चले।
0: एको संदेश है भजन भैया ओला दे सुन ले हथी।
2: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना।

0: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3,000 रूपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रूपए से 200 रूपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: संदेश ला तो ये दे भाई सुने
4: भजन भैया।
5: हाँ
4: देखिए भाई ये दे बताएं शामिल राम जी हमन ला तो भाई बढ़िया है जगह खेती पाती करते हैं तो चट्टी का किसान भैया बहनी में बैठी ना है तो गोट बात ला करिए।
5: देखिए बड़ा सुंदर गोट करी ना गांव कर बारे में घलुक बताइन और यहां कर जो भाई आबादी है हाँ, कते का है और बढ़िया जो है गांव कर मिलजुल के सब रहते
4: हाँ,
5: बड़ा एकता है गाँव नी
4: हाँ,
5: बड़ा मिलजुल के जो है अपन काम भूता ला करते हैं। तो एक गोटाऊ किसान भैया है उनकर जब भेंट करते है का नाम है राउर कर
6: गोकुल सुनपाकर।
5: गोकुल भैया तो भाई बताइए अभी का खेती पाती में रौरे करत है।
6: तो धान उन अभी बोआ थी
5: तो धान कर बीजा देखी सबसे पहले बात कथे कि भाई कोनो चीज कर बीज बढ़िया रहेल तो कर फसल कर बढ़िया है नहीं
6: हाँ।
5: तो रौरे बीज कर व्यवस्था ला कहाँ लेकर है
6: तो यही अंबिकापुर ले
5: अच्छा
6: खरीदे रहे
5: हाँ हाँ तो प्रमाणित बीज हवे
6: हाँ।
5: थरहा मन लगाए धारे हैं कि सूखा बुने हैं
6: तो अभी नहीं बुने है एक तैयारी चलत है।
5: अच्छा खेत मल्ला जोत धरे हैं
6: हाँ
5: खेत ला कै वह जोते पड़े
6: खेत ला वही जमीन देख के 3 ब चाहे 2 ब जोते पड़े।
5: तो बरखा मन तो अभी तेहेंग देखो हो जाता है
6: हाँ।
5: तो किसे बकस में पानी वानी कर व्यवस्था रोड़े जगता है
6: तो है ट्यूबवेल उब
5: अच्छा ट्यूबवेल खुदाए हैं
6: हाँ।
5: अच्छा तो मैंने पानी कर दिक्कत नहीं है
6: हाँ पानी कर दिक्कत नहीं है
5: हाँ हाँ। तो और धान कर संगे संगे रोड़े और का लगाए कर विचार करे हैं
6: तो वही मकई जोंडरी उन्डरी
5: अच्छा
6: बुने का तैयारी है
5: हाँ हाँ। तो अभी जोंडरी ना जो बुना है तो अभी कथे कि पहले पानी गिरे के बाद तो जोंडरी ले बुन देना चाहिए अच्छा इधर जामेल कथे
6: हाँ।
5: तो अभी ना जो चटिक पछुआ है
6: हाँ पछुआ है अभी
5: अच्छा कतक में लगाए कर विचार है
6: तो वही एक एकड़ में
5: बिनु भैया देखिए हाँ। किसान भैया जो है धान कर फसल घलुक कराता है और मकई कर घलुक
4: हाँ।
5: और वही कहते हैं कि भाई गोट बात हम ढेरे किसान मन है तो चटिक आगु गोट ला बढ़ा
4: हाँ, हाँ, हाँ। देखिए दे सरगुजा नहीं हाँ। और सरगुजा का है दे छत्तीसगढ़ ला कहीं नहीं हाँ। तो जोड़ी और धान जम झन दे लगभग लगभग चटिक मटिक में लगाई चले थे नहीं हाँ बकिए दे बैठी ना है हमारे जगह वो किसान गोट बात करते नहीं तो राहुल नाम ले बताते हैं
7: मोर नाम जोगेश्वर पैकरा हो गए
4: तो राहुल का लगा थी
7: अभी हमन के धान थारा हो इसे करे एक आध सप्ताह में शुरू करब लगाए बर
4: बाकी थारा हर कितना दिन में तैयार है
7: तो थारा है करीब हम जो 20-22 दिन लग जाए
4: है नहीं थी चटिक देरी हो जाए तो मैं का नुकसान है
7: अरे हम तो तन कोई पानी पाछ हुआ इसने तो हमारे जग हो बेड़ा जाए जाए बड़ी
4: है नहीं
7: वो नुकसान रहे मझारे पैर जाए और आजकल बैला वाला तो हले नहीं हवे ट्रैक्टर मिले खेती है रहो है
4: नहीं
7: अब जगह बेड़ा जाए तो फिर कहाँ ले ट्रैक्टर घुसी ओ में परेशान
4: तो जोड़ी
7: जोड़ी लगाए कहीं घाव जो बारी नहीं हवे
4: नहीं है
7: नहीं हवे ते कुछ गन्ना मला नगद लगाए ही और कुछ व्यवस्था है ते वहाँ कुछ खीरा उरा ड्रिप माध्यम से

0: लगावत है, ओकरो तैयारी होवत है,
1: ड्रिप है राउंड जग व्यवस्था
0: आसवे शुरू करे हबी,
1: तो का सोच के करे भाई?
0: अब लइका मन कहिन के अरे इते तो फीरा लगाए के नगदी पैसा कमात है,
1: कैसे
0: तो कहिन हम मन कमाए देखी,
1: तो नली से भी तो पटाए सकत रहे ड्रिप का
0: पानी है तनी कमजोर होगी से ट्यूबवेल का, तो ड्रिप में कहीं तनी कम है पानी ले, तो बगरा जगह पोसी
1: जड़ी तरी जाए,
0: जड़ी तरी जाए कम कम टपक टपक टपक करे, तो कहीं लगावा भाई नहीं, अब हम तो बुढ़वा जागर होता है तो लेके उनका भैया नहीं,
1: हाँ भैया नाली लाए दे बांधा समेटा है तो बाबू भैया नहीं, देखी सुगर बाकी जैसे धान होगी जोड़ी होगी खीरा मन होगी तो बाजार भी तो चाहिए, कहाँ से पहुँचाती तो
0: हमारे तो वही मंडिये में जाते अभी,
1: हाँ
0: अभी तो तनी मनी परवल हो रहा है,
1: बिहन कहाँ ले लानती जम जात कर,
0: कुछ धान के बिहन तो मैं घरे रखे रह हम, कुछ ईवज के बिहन लाने रहन बाजार ले खरीद के, तो उतनी है जागा वो कम कमे कमे है ना, सभी बाटल लो भाती
1: पुराना किसी मन ला रखे ही जे मने दे आरी पड़ोसी में महक जाए रंधा हुए तो,
0: अरे हमारे गौ मथिला नहीं रंधन खान और कमाए सकन हमारे वही उस चावल डाल कर सिन खेत रहवे वो तो बाहर मधे खोजे
1: देखी पहले बासमती रही जीरा फूल रही मौके भाई मोहल्ला में जान जाए कि फलाना घर है तो बना
0: था चल रहा था भाई मोहर मोहर मोहर मोहर करे
2: अपन मोहन हर जो ललचाए उठे
0: वो दे डगरे पैर में रहेंगे तो धान हर मौके
1: हाँ तो
0: ये पातर धान है
1: हाँ,
2: लेकिन इसके अलावा देखा तो हम कि उकर उपज घरों कम होता है और उकर भाई मांग तो है ज्यादा
0: ज्यादा,
2: लेकिन उकर कमाई जो है वह कम हो जाता है, बाकी ठीक है रौरे जो है गन्ना घलुक लगाए रहे तो गन्ना में तो फायदा अपन भेटे रही
0: भेटा है लगते है कि अपन घर जितना करिए मजूरिया में करिए तो नहीं दिखे उतना फायदा, ढेरे काम लगे मेहनत ज्यादा लगे
2: भाई नांगर जांगर करते जांगर अगर बढ़िया रहे तो नांगर घलुक हरुहार चली
0: हो
1: चली देखी राहुल इतना सुघर जानकारी दे बहुत सुघर लागे भाई तो भजन भैया देखी भाई दे जानकारी घलो सुघर दे है और सुघर दे गोट बात भी करता है नहीं
2: कहा है ना बीनू भैया देखिए किसान मन कर बीच में जब हम आथन
1: हाँ।
2: किसान संध्या कर जो समय रहे हमारे देखिए अभी दे पहुंचे हैं ना सब किसान मन देखिए अपन दिनचर्या में रहते हैं बिहार ले काम बूता करते हैं सांझ आते हैं घरे और मन जो अनुभव करे दे खजाना है
1: हाँ भाई
2: और यही बात हमर उद्देश्य है कि किसान संध्या में हमर जो सुने वाला जो श्रोता भैया बहनी मन है वो मन सुने जाने और नवाचार करें खेत
1: हाँ,
2: ताकि बढ़िया लेकिन लाभ कमाए बकिए दे और किसान मन गलू कमर बैठी नहीं
1: हाँ, तो लगी राउरे दे गोट करी भाई राउर लाही जो होता है
2: बाकी एक किसान दादा हमारे जग ये बैठी नहीं तो जाना थे इनकर जग बात करे थे का नाम
3: मोर नाम सोहन राम पैकरा गाँव बलसड़ी कर
2: हाँ सोहन भैया देखिए भैया अभी ढेरे किसान मन जुटी न है अपन अपन बात ला रखत है तो रौरे अभी का जो है खेती पाती में तैयारी कर रही थी और का विचार लगाए हैं कि का करना है कैसे करना है
3: अमन तो अभी थरा उरा करे हमन और पानी है कम बरसत है तो अनुसार खेत में चढ़ी पानी पत्थर कम है तो बीड़ा तो हमार तैयार होगी से चढ़ी बोर उर करवाए हैं तो अगर पानी ला डाल लेगा डोली से कर कर के लगावत हन
2: तो भूतियार मन तो बनिहार मन भेटे जाते हैं
3: तो बनिहार भूतियार भेटाते हैं दी गो तीन गो चार गो में काम चल जाते हैं अभी क्योंकि पानी कम है तो कम मनिहार लगे
2: मैंने अभी यही कही कि जम्मो कति अभी नाझो
3: नाझो
1: शुरू करे तो नांगर व्यवस्था का है राउर जग
3: भाई ट्रैक्टर जाए ते जे ट्रैक्टर में छड़ी ढटलू आ थो और ट्रैक्टर जाए सके ते जे नांगरो में जोत थो
1: तो कै नांगर व्यवस्था है
3: मजा है दुई डांगर
1: है नहीं और छेरी मन भी रखे है
3: छेरी दुई ठे है एक ठे बकरी है बछुआ है पर
1: देखिए रे पशुपालन भी करत हूं गाय
3: गाय एक ठे है छुआ भी दई से अभी दू थो
1: अच्छा ये तो सुपर बात
2: हाँ। देखिए खेती किसानी के संग आजकल कर समय है कि भाई पशुपालन कति घलुक ध्यान देना है भाई मछली पालन हो इस पशुपालन हो इस है ना ये सब में भी देखिए धीरे धीरे करके हमन जे आर्थिक लाभ ला कमा सकते हैं ना अपन जीवन स्तर ला सुधार सकते हैं नहीं बाकी रौरे जग तो भाई आधुनिक मशीन ट्रैक्टर में ट्रैक्टर में खेती करते हैं आधुनिक नवाचार करते हैं तो आधुनिक खेती कर गोट करी तो रौरे खाद पानी कर व्यवस्था कर ले
3: खाद पानी वही अब हमार सोसाइटी सरगावा है वहाँ से ले लान था साहब मन देते हैं अभी उधारी देते हैं बीजोला देते हैं और खादोला तो ओला नवंबर दिसंबर में धान देथन चटी मड़ी तो कट जाए।
2: अच्छा, बढ़िया बात है भाई। मैंने ये है कि समस्या नहीं होता है, खाद कर व्यवस्था हो जाए।

0: जाता है,
1: हो जाते हैं।
0: तो खाद कर व्यवस्था भी है, बाकी और वेट करी साग भाजी कर। अभी ये बरखा में देखी ढेरे महंगा बाजारे जाते
1: नहीं
0: साग और भाजी जेन कहा महंगा, तो अभी कहीं लगाए?
2: अभी तो लगाए हो, परवल चटी का है 50-60 ढोड़गा, हफ्ता में 20-40 किलो ले बाजारे। जहाँ बोल जाते भाई शनिचर बाजार है, सोमवार बाजार ही मैंने बेचता हूँ।
0: बढ़िया बात है भाई, मैंने नकदी फसल भी नहीं।
1: हाँ, और महंगा कर बात कहन नहीं, तो ये समय देखी बाजारे पहुँचाते हैं तो लाभ भी बेटा थे काबे की हमर कस दे मनसे मन दे बेसाय पर जाती नहीं साग भाजी, ते दे जेबा मन टमड़ा हो जाते भाई। हाँ, एकस महंगाई तो भाई बढ़िया दे भाई कमा थी, लाभ बेटाता है
2: ना आता है।
1: हाँ,
2: अभी तैयारी करत वही बादाम उदाम एक जोड़ी तो जमी नजर नहीं सका थे, तस जोड़ी अभी नहीं बुनो। अभी चली लगा हो ही खीरी खीरा चली जोतवा थो पनी डुबुआ थो तो बाजार से भी लान थो करे उपचार करे तैयारी कर थी खीरा।
0: तो बादाम कर बीज व्यवस्था रोरे कर पा है कि ना वाला?
2: मैं कृषि विभाग ले संपर्क कर लेता तो गर्मी में मिले रही, आषाढ़ महीना में अब नहीं मिला था तभी
0: पहले ही मतलब
2: पहले ही व्यवस्था कर ले रहे हैं।
1: तो भजन भैया।
0: हाँ विनु भैया,
1: ये देखो गो गीत सुनवाओ की गोठे बात कर आवाज।
0: देखे भाई गीत बिगड़ तो हमारा किसान संध्या जो है अधूरा हो जाए
1: है नहीं। तो राउर कहती तो ये दे जम झन के सुनवात हुए दे झुमुक लाल देवांगन और उनकर संगता मन कर गाल ये सुघर कन देखिए दे किसानी गीता है
0: तो लगी दे सुनी।
1: हाँ

0: बाकी ये भजन भैया मैं कहा था को किसान बैठी ने देख अगरे टारस धर के तो चोटी पूछी भाई टारस धर के कहा बुला
1: लगी ना जय जोहार
0: जय जोहार
1: रउरे कर नाम बताई
2: उत्तम प्रसाद पैकरा
1: तो उत्तम भैया देखिए हमारे कार्यक्रम में रउरे के बहुत बहुत स्वागत है अभी समय में जो है तो पानी मंदो कैसन गिरता है तुम्हारे पारा
2: पानी तो नहीं गिरत है अभी हमारा ठीपा थोड़ा थोड़ा गिरत है तभी में तो खेती नहीं हो ही

0: तो ऐसा में तो बड़ा संशोध है जाते हैं
1: है।
0: तो रोबे का ये दो साल खेती पाती में कैसे कैसे तैयारी करे विचार का है?
1: तब खेती पारी तो खेती बाड़ी अब धान उनका फसल अभी थारा उरा करे हन।
0: अच्छा
1: अब एक पानी गिरी तो लगाबो
0: और धाने फसल नहीं तो धान फसल रोरे कर खेत मन तैयार होगी से
1: पानी गिरी तो तैयार होगी।
0: अच्छा
1: पानी गिर तो तैयार कहाँ हो
0: तो धान कर बीज कर व्यवस्था करी तो कहाँ लेकर रही रहा?
1: मैं तो कल्याणपुर से लाने हूँ।
0: अच्छा बीज व्यवस्था कर ले हैं जैसा भाई पानी यदि गिरिस
1: शुरू हो जाएगी लगाएंगे।
0: बाकी पहले मानसून तो आएगी से पानी मन चटी को भाई जमीन मन भीगी से
1: लेकिन रोपा लायक नहीं हुई
0: तो धान कर गोट करी तो कौन कौन बीज कर व्यवस्था करती?
1: पहले तो मैं लोकले धान लगात रहे अब दो साल से चटी अब फिर हाईब्रिड में ले धानी का।
0: अच्छा
1: तो धानी पर लगाए रहे तो पुटू आएगी धान में वो काला काला।
0: अच्छा
1: तो कोई छोड़ दे ना बस यूएस लगात हूँ अब ये का होएल
0: नहीं देखिए हाइब्रिड उन्नत प्रजाति कर किसी में रहल ना तो कर पैदावार घलुक अच्छा होते और हम उम्मीद करते हैं कि राउर कर पैदावार भी अच्छा होए। अच्छा मन लगा के मेहनत करी है कि नहीं और साग भाजी कर गोट करी तो का का
1: साग भाजी तो नहीं कर पान।
0: अच्छा
1: लकड़े सुकटी है चले हमारे गरीब मन का
0: नहीं भाई फिर भी देखिए भाई गाँव गाँव में खेती पाती में भाई साग भाजी लगाना भी जरूरी
1: थोड़ा थोड़ा लगा ले नहीं तो ज्यादा वही सूखी भाजी हमार कमाई का
0: वो तो है ही है भाई तो ओकर मजे को
1: अलग है।
0: तो चला रहो रे से एक गुड बात है इस तौर के बहुत बहुत धन्यवाद बिनु भैया।
1: हाँ
0: देखिए भाई किसान मन बढ़िया नहीं यहाँ कर बहुत जागरूक है।
1: हाँ
0: और देखिए सब व्यवस्था करी ना है।
1: हाँ
0: आगू ले यदि कोई भी खेती कर बात करी चाहे कोई भी काम योजना बना के जब करती ना तो ओकर यदि फायदा हर दिखेल
1: भाई
0: हमारे देखा था कि सब कोई देखिए गोट बात करने तो बढ़िया जो है अपन जानकारी ले देता है।
1: देखिए राउ रागु गोठिया ओकर ले पहले भाई ये देगो संदेश आए तेला में सुनवा।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं,
2: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
3: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
4: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा।
5: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान, अब आपकी है बारी।
4: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
5: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
4: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
6: हमारे जब कुछ हमारे दीदी मन घलू कहे तो इमन जगह भेंट कर रहे थे, जाना थे इमन काका भी इधर खेती पाती में करते
7: हैं। हाँ भाई, लगी भाई गुठिया भाई।
6: जय जोहार दीदी।
8: जय जोहार।
6: रविकर का नाम
8: बाल कुमारी।
6: तो बाल कुमारी दीदी भाई, देखी अभी कर दे समय हमारे किसान दादा मन जग तो बात करें तो महिला किसान करना थे रवरे जग भी हम जानना चाहब कि अभी समय में का खेती कर तैयारी रवरे करत है।
8: रोपा जगाए का तैयारी करत ही। अच्छा। अब पानी है तो गिरत नहीं है, वही ला तो देख के ना हमन थोड़ा सा घबराए गए ही।
6: बाकी भाई देखी कहत है वैज्ञानिक मन के फिर अब मानसून है 2-4 दिन में गिरे वाला है, बाकी पानी कमी तो है नहीं।
8: हाँ।
6: घरे और कौन कौन है रउरे कर?
8: मोर माँ है और मोर पापा।
6: अच्छा, तो माँ तो बढ़िया भाई बिहाने खाना पीना बनाए देते हुई नहीं।
8: हाँ।
6: चलो बढ़िया बात है। खेती पाती में बिनु भी देखिए महिला मन कर बहुत बड़ा योगदान,
7: बहुत बड़ा भाई। देखिए दे घर कर सवांग है देखेते हाँ भाई मन बड़े थे भात मन लाने ही कौन है रांधी और कौन है पहुंचा ही तो ओकर जिम्मेदारी है घर कर दे घरदारी मन कर महिला मन कर रहे नहीं।
6: बाकी रउरे का कहत रही की अभी खेती पारी में साग भाजी भी लगाई है तो साग भाजी में का रउरे लगाए हैं?
8: बरबट्टी और भिंडी।
6: अच्छा, तो बरबट्टी भिंडी कब लगाए रहे?
8: अभी 2-4 दिन होता है।
6: अच्छा, अभी शुरुआत कर रहे हैं। चला दीदी रउरे से गुड बात है, राउर के बहुत बहुत धन्यवाद।
8: धन्यवाद।
7: तो भजन भैया देखी भाई अब बेरा हर होता है कि किसान भैया बहनी मन से विदा ले ये दे बलसेड़ी गांव कर भी और हमर जग गोट बातला जे रेडियो में सुनत है ते किसान भैया बहनी मन जग ले भी विदा लेकर बेराहर होता है नहीं तो जा में दे तो बलसेड़ी

0: गाँव कर जम किसान भैया बहनी ला कहत ही कि भाई आने दिने दे फिर आबो राउर मन से भी गोट बात करबो राउर मन कर गोट बात ला दे हमारे रेडियो में सुनने वाला किसान भैया बहनी मन से भी सुनवाबो नहीं तो भाई चलल जाए बलसेड़ी गाँव ले नहीं
1: विदा लेहल जाए कहल जाए सब जना राम राम,
0: राम, राम।

0: हाँ देखी भजन भैया भाई सुघर ते हमार कार्यक्रम किसान संध्या में बढ़िया है। देखो बात होत रही और देखी दू चार झन किसान मन कहता है नहीं कि चटी कोमन कर हिसाब से बरखा पानी हर अजे नहीं ऐसे। अब यही गोठला हमरे भी करत रहन कि देखिए जे थरहा करे कर तैयारी में तो हन बाकी चटिक बरखा हर हमर हिसाब से उतरा नहीं है कि ये दे थरहा ला हमरे कर पाए।
1: लेकिन ये है कि भाई आए वाला जो समय है देखिए वैज्ञानिक मन घलू कहते हैं कि भाई बरखा होई कहे कि भाई हमला आशा कर के रहना पड़ी भाई कथे भाई कि खेत कर जब बात होते तो हमला चिंता करना तो जायज है लेकिन एक भाई हमला उम्मीद घलू रखना है कि पानी गिर ही और बढ़िया हमन खेती किसानी ला करबो।
0: हाँ भाई देखी अजय तो आषाढ़ घोषित भी नहीं है भाई दो चार दिन आगू पाछू तो देखिए दे होबे करेल बाकी अभी पछुआए नहीं ही समय हर सही है और जमन जग चटिक मट्टी का अगर व्यवस्था है नहीं तो मन तो देखी भाई थारा कर भी दही नहीं जमन जग पानी कर सुविधा है और कहब नहीं तो कर बात सही समय में देखी 20-22 दिन कर आतर करके तेकर तो रोपाला शुरू कर देते हैं तो देखी भाई हमें अपन स्तर से तैयार रहना है और कब हो यदि ऐसे हो सकता है कि यदि भाई घुटी तक पानी हो चिखला करें तेकर यदि थरहा
1: बिल्कुल सुघर कहते हैं भाई खेती ले आसरा नहीं भाई ले भरोसा का तो भाई हमन ला आसरा तो करने पड़ी आसरा ला नहीं छोड़ना है और जैसन बढ़िया पानी आईस वैसन जो है खेती किसानी कर दिशा में काम करना है। बाकी देखिए घड़ी कंटा कहता है चपाल ले गलुक बिदा ले बाकी यही कहब कि भाई किसान भैया बहनी मन स्वस्थ रहे और बढ़िया काम बूता ला करें और अपन स्वास्थ्य के प्रति ध्यान जरूर दे।
0: तो चल जाए अब कहल जाए राम राम।

ग्रामीण श्रोताओं के लिए अभी चौपाल कार्यक्रम का प्रसारण किया जा रहा था। FM 100.2 मेगाहर्ट्ज़ और न्यूज ऑन AIR ऐप पर हम आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोता, हम आपको बता दें, ICC T20 महिला विश्व कप क्रिकेट के अंतर्गत भारत और बांग्लादेश के बीच ओल्ड ट्रेफोर्ड मैनचेस्टर में मैच खेला जा रहा है और इस मैच का आंखों देखा हाल आप सुन रहे हैं हमारे मीडियम वेव 238.09 मीटर यानी 1260 किलोहर्ट्ज़ पर। तो चलिए, अब देर न करते हुए शुरू करते हैं कार्यक्रम, आपका बेहद पसंदीदा कार्यक्रम इंस्टा फरमाइश। कार्यक्रम का ये पहला गीत जो है उसे सुनना चाहा है आप सभी श्रोताओं ने। खरगोन सनावत से मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना वर्मा, अनुज वर्मा, आयुषी वर्मा, रमेश चंद्र वर्मा, शेख मूसा भाईजान, राजकुमार बोड़ाना और खंडवा से लक्ष्मी, नंदनी, रोहित, ऋतु और मुकेश जगताप। धुर्राबांधा भाटापारा से प्रमोद साहू, देव कुमार साहू, नवीन साहू, युवराज साहू। जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, मोहनी चौहान, कल्पित चौहान, गर्वी और हिमाक्ष। गिरिडीह झारखंड से मोहम्मद यासीन अंजान, साइमा नवाज, हसन नवाज, अहद मिफ्रा नवाज, चाहत सादिया और उनके साथी। सोलापुर महाराष्ट्र से विष्णु मिस्किन, रितिका मिस्किन, वाणी आरव, चंद्रकला काशीनाथ, गणेश, सोनी आरोही और प्रिया।

अंशी बालजी और मुंगेली से उत्तरा दिवाकर, परमेश्वरी दिवाकर, भानुप्रिया दिवाकर, योगिता दिवाकर, नितिन दिवाकर और वंशिका दिवाकर। अंबागढ़ चौकी छत्तीसगढ़ से रिजवान खान, आयशा सबिया, अनस और रेहान। यवतमाल महाराष्ट्र से संतोष खड़से और विनोद खड़से। छत्रपति संभाजी नगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश और शीतल। नवापारा बलौदा बाजार से ये श्रोता हमारे हैं नंद कुमार ठाकुर, प्रमिला ठाकुर, खुशबू और ज्योति ठाकुर। मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप। कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज और बिट्टा बजाज। दिल्ली से लाल बाबू दीवाना, उमा भारती, दिव्या भारती। और बिहार से वसीम अक्रम, बेबी जोई और गुड़िया खातून। चनोरा फिरोजाबाद से बनवारी लाल कुशवाहा, मंजुलता कुशवाहा, राम श्याम, रवि आर्यन, रंजीत और रामानंद कुशवाहा। छत्तीसगढ़ से नरेश कुमार, संदीप कुमार पांडे, कृष्ण कुमार, चितरंजन यादव, सुनील कुमार, तेज कुमार साहू, रविशंकर पांडे, मनीष कुमार साहू, गंगेश्वरी भास्कर, कविता माझी, सेवता, कुलदीप और सूची कश्यप। और अड़ार नाथघाट से माखन वर्मा, चांदनी, राहुल और गोपी वर्मा। इसी गीत को सुनना चाहे गुजरात पाटन से धीरज वी रबारी। अमागासी चौक नवापारा लखनपुर से हमारे श्रोता है मुनेश राम, शालिनी, रुचिका, अनिका, मनीष, सुचिता, चांदनी, दीप्यांशु और उनके परिवार के सभी सदस्य। नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी गोस्वामी, जोगेशपुरी, ट्विंकल, डिंपल, मीनाक्षी, निशा, तुलसी और दिशा गोस्वामी। और जलगांव जंक्शन से दिनेश काले, वंदना काले, डॉक्टर सहानुभूति चक्रधर, आदेश कुमार काले, प्रोफेसर वसुधा वज्रसेन। आप सभी श्रोताओं की पसंद पर सुनते हैं कार्यक्रम का पहला गीत जो है फिल्म बड़े दिलवाले से, आवाज़ है किशोर कुमार और लता मंगेशकर की।

आइए श्रोताओं, आप सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत और इस गीत को सुनना चाहा है आप सभी श्रोताओं ने। डुमराव से वली उल्ला अंसारी, असमा नाज अंसारी, शबनम बानो। बक्सर से राज एस डी अंसारी, फातिमा नाज। दिल्ली से डॉक्टर सोनम और डॉक्टर अदीबा। और इसी गीत को सुनना चाहा है आप सभी श्रोताओं ने सिरको तंगा। लहपटरा से योगेश कुमार राजवाड़े, श्याम राजवाड़े, परमान राजवाड़े, लल्लू बल्लू, घनु, हमीद कुमार, अभिजीत, गोविंद, तरुण, सकल राम, प्रियांशु, राजकुमारी, नेहा, नायरा, समायरा, खुशी, सौम्या, उमेश्वरी, मुन्नीबाई, सोनामती, माया, सिमरन और उनके परिवार के सभी सदस्य। वड़िंगखेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली और आरती अरोड़ा ने भी इस गीत को सुनना चाहा है। सारसताल सोनगरा, सूरजपुर से प्रेम साय राजवाड़े, सुमार साय, मेर साय, श्री भगत, हेमंत कुमार, राम खेलावन सिंह पैकरा, सिद्धमा बाजार परा, बलरामपुर से धनेश्वर निषाद, दीपिका निषाद, शिवांश निषाद, राम भरोस पैकरा, नरेश सिंह उनके परिवार के सभी सदस्य। रायगढ़ से रोहित जयलक्ष्मी, देवीगंज रोड अंबिकापुर से राजकुमार नेपवानी, संगीता नेपवानी, आकाश, आयुषी, सागर, यशी, हनी, पूजा, सीता और उनके परिवार के सभी सदस्य। स्वरूप आनंद सरजाल, जोड़ा पीपल अंबिकापुर से, श्रीगंगानगर राजस्थान से भी हमारे श्रोता हैं। दतरंगी भाटापारा से हमारे श्रोता हीरा मणि वर्मा, पारस मणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा, नोखेलाल वर्मा। उदयपुर खोंदला सरगुजा से जीवधन सिंह पैकरा, घुड़नी पैकरा, करिश्मा पैकरा, सुमार साय, कलेश्वर सिंह, सुखराम पैकरा, हीरा मणि पैकरा, ऐश्वर्या पैकरा और उनके साथी। बाबा कुटीर रायगढ़ से शिव कुमार चौहान, संक्रांति चौहान, रितेश कुमार, राजेश्वरी चौहान, उत्कर्ष चौहान और डुगू। उमरिया से संतोष कुमार राव, भारती राव, बेला बाई सिंह, विकास सिंह, ओम प्रकाश, शुभम विश्वकर्मा और अरुण विश्वकर्मा। सकालों से पूरन सिन्हा, अनूपपुर मध्य प्रदेश से अंजलि केवट, रुद्राणी केवट, कृष्णा केवट, चंचल केवट और जयमंत्री केवट। अमरावती से सईद भाई, सूफियान, अनस, आयजा, अल्फिया और यहीं से कमरुल्ला ठेकेदार, नसीम बेगम, आयसा खान, हदीहा खान और मुस्तबा खान। सावरगांव महाराष्ट्र से हमारे श्रोता रघुनाथ पाटिल नारे और पुष्पाताई नारे। लक्कड़ बाजार खंडवा से मोहम्मद रफीक पवार, बेनजीर कौसर, मोहम्मद साकी पवार, अलमा

मेजबानों छोटू पवार, शंकरलाल गंगराड़े, वनीता गंगराड़े और मोहम्मद हसनैन। परभणी महाराष्ट्र से रूपेश संघई, महेश संघई, प्रज्ञेश संघई, प्रीतेश संघई और उनके परिवार के सभी सदस्य। बेड़ी छिंदवाड़ा से नानाजी लामसे, मीना लामसे, तेजस जय लामसे और हर्षिता लामसे। मानपुर मुरादाबाद से शेख जियाउर रहमान, शेख अताउर रहमान, शेख हबीबुर रहमान। आप सभी श्रोताओं की पसंद पर सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, जो है फिल्म इज्जत से। आवाज है लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की।

श्रोताओं, आकाशवाणी अंबिकापुर के FM 100.2 मेगाहर्ट्ज और न्यूज ऑन AIR ऐप पर इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम इंस्टा फरमाइश। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, और इस गीत को सुनना चाहा है आपसे अपने श्रीगंगानगर राजस्थान से मेहर अरोड़ा, ममता अरोड़ा, कीर्ति अरोड़ा, भूमिका अरोड़ा, मलोट से डॉक्टर रमेश कुमार जाजौरिया, गीता रानी जाजौरिया, गगनदीप जाजौरिया, आरजू और गुड्डू जाजौरिया, मुबारकपुर आजमगढ़ से दिलशाद हुसैन, डोंगरगांव से राष्ट्रपाल गजबी है, राधिका गजबी है, अनिष्का और तन्मय गजबी है, रिंगनी से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा, अररिया बिहार से फैजल इमाम, मोहम्मद अफजल, मोहम्मद अकमल और नफीसा प्रवीण, पथरिया भरेवा से चंदूलाल सिंगरौल, नारायणी सिंगरौल, नोमेश सिंगरौल, नेहा वान्या सिंगरौल, राजापुर सूरजपुर से मानिक राम प्रजापति, सविता प्रजापति, घनश्याम राम, हरिशंकर, रत्नेश कुमार, प्रशांत प्रजापति और कालापारा सरगुजा से रामचंद्र गुप्ता और पांडे राम राजवाड़े। रुद्री धमतरी से हमारे श्रोता हैं चंद्रकांत, सीमा साहू, सूर्यकांत, राकेश साहू, शुभम, सावित्री और शिखा शेफाली। कुंभार गली श्रीरामपुर से अशोक डाले, सविता डाले, अनिकेत डाले, रोहिणी डाले, ऋषिकेश डाले, जीविका, सनिका और पुणे से अजय सोनवनी, करिश्मा सोनवनी, अविका सोनवनी और विशाखा सोनवनी। ये श्रोता हमारे नेपा नगर मध्य प्रदेश से हैं सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल शाह, नीति शाह, सुरभि, अश्विन, मंगलाबेन और राजेंद्र जी शाह। नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से PS नवहारकर, निर्मला नवहारकर, विशाल नवहारकर, सोपन ताइडे और नारायण इंगले। दूल्हापुर उत्तर प्रदेश से मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू सुरेश, राजपाल पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहनी, ऋतिक और बलबीर सिंह। सत्यम क्लब फुलकोना प्रेमनगर से अरविंद कुमार यादव, रुस्तम, हिमांशु, अनुष्का, मनोज और मिथिलेश यादव। बोरसरा नैला से प्रमोद कुमार साहू, बीमा वैभवी, विनोद विभूति, अंशु बबली और प्रियांशु साहू। कोल सिटी बरकाकाना से अफजल ताज, शाहीन सुल्ताना, सोनू तस्नीम, निपी सानी और मोहम्मद अफजल मलिक। ग्राम हिंगड़ी आलोट रतलाम से जगदीश धाकड़, नायमा रंजूबाई, युवराज सिंह और शिवांगी। और हनुमानगढ़ राजस्थान से रज्जाक मोहम्मद, समीम बेगम, इमरान खान और इरफान खान। आप सभी श्रोताओं की पसंद पर आइए सुनते हैं लता मंगेशकर और अमित कुमार का गाया फिल्म रोमांस का ये गीत।

श्रोताओं, इस वक्त आकाशवाणी अंबिकापुर से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम इंस्टा फरमाइश। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, और इस गीत को सुनना चाहा है आप सबने। नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसवीर जस्सी और उनके साथी। बटिंडा रोड मंडी डबवाली से राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग, मोहित नारंग।

नारंग और तानिया नारंग, झज्जर हरियाणा से बिट्टू भाटिया, रीता भाटिया, रजत भाटिया और मयंक भाटिया, बराड़ा अंबाला हरियाणा से रवि कुमार, राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश, राहुल, प्रियंका, मन्नत, गुरकीरत, गुरशब्द सिंह, राहुल, धमतरी से रामचंद्र माखीजा, काफिर भाई, सविता माखीजा, स्वाति माखीजा, महेश कुमार कुकरेजा, संध्या कुकरेजा, माही, पूजा छुटकी, शरद कुमार और उनके परिवार के सभी सदस्य, संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव, ओजस्वी यादव और उनके साथी, मुजफ्फरपुर बिहार से राजू कुमार, बिट्टू कुमार, अर्चना कुमारी, कल्पना कुमारी, मुन्नी कुमारी, चांदनी, नंदनी और उनके साथी, ये श्रोता हमारे हैं। आष्टी जालना मराठवाड़ा से सैयद यूनुस, सैयद नुमान, तनवीर मसरत, सैयद निजामुद्दीन, राम भाऊ तांदले और दशरथ सागुते, अनुष्का सागुते, बिहार से प्रदीप कुमार मंडल, आशीष मंडल, कुंदन मंडल, करीना कुमारी, पूजा कुमारी, आरती और सुनीता देवी, मऊनाथ भंजन से राजेश कुमार वर्मा, प्रीति वर्मा, कार्तिक वर्मा, आयरन वर्मा और हकीकतपुरा, मऊ से मुन्ना भाई स्वर्णकार, पिंकी स्वर्णकार, आयरन, कृष्णा, पीहू और उनके साथी, ये श्रोता हमारे सादुल शहर से हैं, राजस्थान से राम कुमार रेवाड़ और चंद्रकला रेवाड़, वाराणसी से अजान कुमार सिंह, वंदना सिंह, विनती, विनायक, मोहनी और मोहित सिंह, खंडवा से ममता मारकंडे, संजय मारकंडे, बिट्टू मारकंडे, करनाल से ज्ञान भूषण शर्मा, सोमनाथ कालिया और उनके साथी, और उत्तर प्रदेश बागपत से संजय ढींगिया, नमन ढींगिया और अपार ढींगिया। आप सभी श्रोताओं की पसंद पर आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, जो है फिल्म सीता और गीता से, आवाज़ है आशा भोसले और किशोर कुमार की।

लीजिए सुनिए श्रोताओं कार्यक्रम का अगला गीत और इस गीत को सुनना चाहा है आप सबने। अंबई सिल्लोड़ संभाजी नगर महाराष्ट्र से अनिल कुमार घोड़के, वैशाली अनिल प्राजक्ता घोड़के, वैष्णवी घोड़के गायत्री और यज्ञेश घोड़के, यवतमाल से राहुल मनवर, सरला मनवर, विशाल, चेतन, रोशनी और प्रियांशी मनवर, पीतरामल उज्जैन से विनोद मूड़त, नेहा जैन, दीपक, मयंक मूड़त, चेतन नाहटा, हरिद्वार उत्तराखंड से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, महराज जहां, गंज डुंडवारा उत्तर प्रदेश से फरमाइश भेजी आफ्ताब अंसारी, रियाज अंसारी, मोहम्मद कैफ अनवर, मास्टर लुबना अंसारी, आलिया अंसारी, पटियाला पंजाब से सोमदत्त कैरव, ज्योति रानी, गुरमंत कौर मनु और उनके साथी, खोखरा वाली श्रीगंगानगर से विनोद बारासा, विशाल बारासा, विकास रोशनी और शगुन बारासा, मेरठ से हमारे श्रोता दिग्दर्शन और कविता गौड़, मुरादाबाद दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इसरार और नरगिस खातून, भनपुरी रायपुर से प्रियेश गुप्ता, श्रेयांश गुप्ता, शशांक गुप्ता, दुर्ग से अनंत जैन, हंसित जैन, प्रीति जैन और उनके साथी, और कोदवा साझा छत्तीसगढ़ से रामस्वरूप गुप्ता, विवेक गुप्ता, एचडी गुप्ता, सहारनपुर से राधा नामदेव, अर्पणा नामदेव, अभिषेक नामदेव और हर्षित नामदेव, करनाल से विनोद लखनपाल, बघेरा दुर्ग से संतोष नामदेव, सार्थक नामदेव, समर्थ नामदेव और शौर्य नामदेव, कोटवा नारायणपुर बाबापट्टी बलिया से ओम प्रकाश रॉय, उषा रॉय, अमित कुमार रॉय और हैप्पी रॉय, दुबिहा नेवादा से प्रतीक रॉय, रोशनी रॉय और प्रांजल रॉय, खंडवा अहमदपुर से कैलाश फूलवाली और जबलपुर से सोनाली दुबे, मोनिका तिवारी और राडू। आप सभी श्रोताओं की पसंद पर सुनते ही कार्यक्रम का अगला गीत जो है लता मंगेशकर की आवाज़ में, फिल्म का नाम है गाइड।

प्रस्तुत हूँ और अब पेश है कार्यक्रम का आखिरी गीत और इस गीत को सुनना चाहा है आप सबने मजनू का टीला से कमल बालूजा मधु बालूजा और सागर बालूजा सतना मध्य प्रदेश से उमंग मलिक और आकांक्षा मलिक दुर्गा कॉलोनी हांसी से राजू मिगलानी बबीता मिगलानी सुभाष योगी बब्बू डब्बू हरियाणा से नानक खन्ना चंचल खन्ना लवली खन्ना रजत खन्ना लव खन्ना कुश खन्ना और उनके परिवार के सदस्य उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गंवाड़कर सरिता गंवाड़कर परिणीता गंवाड़कर अर्जुन गंवाड़कर नागपुर से शैलेश गंवाड़कर सुमित गंवाड़कर ध्वनि परी प्रिंस और एकांक्ष गंवाड़कर मिठूमुड़ा दुर्गा चौक से गेंद लाल श्रीवास कौशल श्रीवास कृष्ण कुमार यादव लक्ष्मण वाधवानी और गेंदू भाई झारखंड पाकुड़ से उत्तम कुमार भगत श्वेता भगत किसु तासु अर्णव आनंद और सत्यम आनंद पलारी से नीतेश कुमार देवांगन दुर्गा प्रसाद देवांगन पराग टेलर तनुजा देवांगन और ईशांत देवांगन राजस्थान से विक्रम कड़वासरा सचिन सतीश योगेश और युधव कड़वासरा चंडीगढ़ से सतीश अनेजा विमला अनेजा चकरभाटा कैंप से टी आर नारवानी रवि चांदनी खुशी नारवानी वाराणसी से अरुण कुमार मालवी और उनके साथी यमुनानगर हरियाणा से विनय मोहन खार मीनाक्षी और डॉक्टर ईशानी पंजाब से भूषण खेड़ा विशु खेड़ा विशाल लाडी खेड़ा शालिनी और टिवांशी खेड़ा तेलंगाना निजामाबाद से शेख अल्लाह बख्श बेगम राबिया शेख दरियापुर बाबली से गजानन येले नवदीप येले विश्वदीप येले और नीलेश येले ऊंचे गांव नांदेड़ से देवानंद शिंदे और उनके साथी दिल्ली से सुखविंदर सिंह जौड़ा सिटी दीवाना और बागपत से जगमोहन सिंह मुनेश देवी अर्जुन भारती अंजलि नितिन जगमोहन सुधीर नूतन भुवनेश्वरी और दिल्ली से ही रामनाथ प्रजापति सुमन देवी गांधीनगर गुजरात से सुरेश राठौड़ मंजुला राठौड़ विशाल निशा जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी नजमा बेगम सिद्दीकी रियाज रिफाकत मोहम्मद रिहान समरीन परवीन और माहिरा नूर लक्ष्मीपुर सूरजपुर से तीजन सिंह मरावी सुषमा सिंह मरावी देवालाल मरावी और घोघरा पारा से लालू प्रसाद उइके आप सभी श्रोताओं की पसंद पर पेश है कार्यक्रम का यह आखिरी गीत जो है फिल्म अपना देश से आवाज है किशोर कुमार और लता मंगेशकर की।

0: फिल्म अपने देश के इस गीत के साथ ही श्रोताओं कार्यक्रम इंस्टा फरमाइश आज बस यही तक। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर हम आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 8:45 बस होने ही वाले हैं। समाचार संध्या आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता वैश्विक अर्थव्यवस्था को नई रफ्तार देगा। वेनेजुएला में भीषण भूकंप से मरने वालों की संख्या 164 हुई, राहत और बचाव कार्य जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शोक व्यक्त किया और बचाव तथा राहत कार्यों के लिए समर्थन की पेशकश की। उत्तर प्रदेश में राम मंदिर की दान राशि के कथित गबन मामले में एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट के बाद प्राथमिकी दर्ज। सरकार ने 36 पृष्ठों वाले नए पासपोर्ट बनवाने या पुनः जारी करने का शुल्क 1 जुलाई से बढ़ाकर 2,500 रुपए किया। तत्काल पासपोर्ट का शुल्क 6,000 रुपए होगा। भारत बांग्लादेशी नागरिकों के लिए 28 जून से पर्यटक वीजा फिर से शुरू करेगा। आईसीसी क्रिकेट T20 महिला विश्व कप में बांग्लादेश ने भारत को 137 रन का लक्ष्य दिया और फीफा फुटबॉल विश्व कप में कुराकाओ का मुकाबला आइवरी कोस्ट से होगा। अब समाचार विस्तार से। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और ब्रिटेन के बीच हुआ मुक्त व्यापार समझौता अब तक भारत द्वारा किए गए सबसे व्यापक समझौतों में से एक है। लंदन में इंडिया ग्लोबल फोरम के यूके इंडिया वीक कार्यक्रम में श्री गोयल ने कहा कि इस समझौते से दोनों देशों को मिलने वाले आर्थिक लाभों की संभावनाएं बहुत अधिक हैं। श्री गोयल ने कहा कि इस समझौते से दोनों देशों के बीच करीब 48 अरब पाउंड के वार्षिक व्यापार को और बढ़ावा मिलेगा।
2: The United Kingdom Free Trade Agreement has...
3: भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता हमारे उद्योगों को नई दिशा दे रहा है। दोनों देशों के उद्योग वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में साथ काम करेंगे। ये समझौता दोनों अर्थव्यवस्थाओं को मजबूती प्रदान करेगा। भारत और ब्रिटेन मिलकर वैश्विक स्तर पर नई संभावनाएं पैदा करेंगे।
2: And together becoming a force multiplier.
1: श्री गोयल 3 दिन की ब्रिटेन यात्रा पर हैं। इस दौरान वे 15 जुलाई से लागू होने वाले भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते की तैयारियों की समीक्षा करेंगे।

0: रहे हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत और ब्रिटेन रक्षा और महत्वपूर्ण खनिजों जैसे क्षेत्रों में भी सहयोग बढ़ा रहे हैं।
1: पार्टनरशिप विद यूके इज टेकिंग मेनी मोर डायमेंशन।
2: ब्रिटेन के साथ हमारी साझेदारी कई नए आयाम ले रही है। प्रौद्योगिकी, निवेश, रक्षा और महत्वपूर्ण खनिज क्षेत्रों में सहयोग बढ़ रहा है। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई हमारा साझा उद्देश्य है। वैश्विक शांति और स्थिरता के लिए दोनों देश मिलकर काम कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी भारत और ब्रिटेन की साझेदारी मजबूत हो रही है। हमारा प्रयास है कि वैश्विक व्यापार निष्पक्ष और समान अवसरों पर आधारित हो।
0: उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर दान राशि के कथित गबन मामले में विशेष जांच दल SIT की प्रारंभिक रिपोर्ट के आधार पर 8 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। ये कार्यवाही राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन के शिकायत पर की गई है। सूत्रों के अनुसार आरोपियों के खिलाफ गबन, धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश से संबंधित धाराओं के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया है। दान राशि के कथित दुरुपयोग के आरोप सामने आने के बाद श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अनुरोध पर उत्तर प्रदेश सरकार ने 13 जून को SIT का गठन किया था। SIT मामले की विस्तृत जांच कर रही है। सरकार ने पासपोर्ट आवेदन शुल्क में वृद्धि की है। अब 36 पृष्ठों वाले नए पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने के लिए ₹2,500 शुल्क देना होगा। विदेश मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार पासपोर्ट संशोधन नियम 2026 पहली जुलाई से प्रभावी होंगे। नई शुल्क संरचना के अंतर्गत तत्काल श्रेणी में 36 पृष्ठ वाले नए पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने की लागत ₹5,000 होगी। 60 पृष्ठों वाले साधारण पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने की लागत ₹3,500 होगी और तत्काल श्रेणी के पासपोर्ट के लिए लागत ₹6,000 होगी। वर्तमान में 36 पृष्ठ वाले पासपोर्ट की लागत ₹1,500 और 60 पृष्ठों वाले पासपोर्ट की लागत ₹2,000 है। खोए या क्षतिग्रस्त 36 पृष्ठ वाले पासपोर्ट के बदले में नया सामान्य पासपोर्ट जारी करने के लिए ₹5,000 का शुल्क देना होगा। वहीं खोए या क्षतिग्रस्त 60 पृष्ठ वाले पासपोर्ट के बदले में नया सामान्य पासपोर्ट जारी करने के लिए ₹6,000 का शुल्क लिया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डिल्सी रोड्रिगेज ने आज कहा कि देश में आए दो शक्तिशाली भूकंपों में 164 लोगों की मौत हो गई है और 971 अन्य घायल हो गए हैं। रेक्टर स्केल पर भूकंपों की तीव्रता 7.2 और 7.5 मापी गई। एक रिपोर्ट।
4: ये भूकंप एक सदी से भी अधिक समय में वेनेजुएला में आए सबसे शक्तिशाली भूकंप हैं। वेनेजुएला की राजधानी काराकास से लगभग 1,700 किलोमीटर दूर ब्राजील के अमेजन क्षेत्र तक के इलाकों में इमारतों को खाली कराया गया है। इन भूकंपों के बाद वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति ने देश में आपातकाल की घोषणा कर दी है। आपातकालीन दल कई स्थानों पर राहत और बचाव अभियान चला रहा है। विश्व भर के नेताओं ने वेनेजुएला के लोगों के प्रति एकजुटता व्यक्त की और विनाशकारी भूकंप के बाद सहायता का आश्वासन दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वेनेजुएला में आए भीषण भूकंप से हुई तबाही पर गहरा दुख व्यक्त किया है। श्री मोदी ने हर संभव सहायता देने का आश्वासन दिया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के लिए समर्थन व्यक्त किया है। अल सल्वाडोर के राष्ट्रपति नायब बुकेले ने कहा कि 300 बचावकर्मी और पैरामेडिक्स 50 टन सामग्री के साथ राहत कार्यों में सहायता के लिए रवाना होने को तैयार हैं। समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
3: वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डिल्सी रोड्रिगेज ने भूकंप के बाद भारत की ओर से व्यक्त की गई एकजुटता की सराहना की है।

0: सुश्री रॉड्रिगेज ने कहा कि भारत की ओर से व्यक्त की गई एकजुटता कठिन समय में भारत और वेनेजुएला के लोगों के बीच सहयोग की भावना को दर्शाती है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा व्यक्त की गई संवेदनाओं का स्वागत किया। बांग्लादेश में भारत के नवनियुक्त उच्चायुक्त दिनेश त्रिवेदी ने आज ढाका में अपना कार्यभार संभाल लिया। उन्होंने राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन को परिचय पत्र सौंपे। राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह के बाद श्री त्रिवेदी ने ढाका स्थित भारतीय वीजा आवेदन केंद्र का दौरा किया और वहां की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। वीजा केंद्र में बड़ी संख्या में आवेदकों को देखकर संतोष व्यक्त करते हुए उन्होंने बांग्लादेशी नागरिकों के लिए सामान्य वीजा सेवाएं फिर से शुरू करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि 28 जून से पर्यटक वीजा के लिए आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। इस फैसले से भारत आने के इच्छुक हजारों बांग्लादेशी यात्रियों को राहत मिलने की उम्मीद है। साथ ही इससे दोनों पड़ोसी देशों के बीच पर्यटन, व्यापार, पारिवारिक संपर्क और आपसी संबंधों को भी बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारत में अमेजोन के 48 अरब डॉलर के रिकॉर्ड निवेश का स्वागत किया। श्री मोदी ने नई दिल्ली में अमेजोन के सीईओ एंडी जेसी से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस निवेश से युवाओं के लिए नए अवसर पैदा होंगे। उन्होंने कहा कि भारत में निवेश करने के लिए दुनिया भर में बढ़ती रुचि को दर्शाता है। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा की सभापति सीपी राधाकृष्णन ने आज संसद भवन में राज्यसभा के 10 नवनिर्वाचित और पुनर्नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई। शपथ लेने वालों में आंध्र प्रदेश से तेलुगु देशम पार्टी के सना सतीश बाबू, विजय चिंटकायला और बाश्यम रामाकृष्ण तथा जनसेना पार्टी के लिंगम नेनी रमेश शामिल हैं। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश से भाजपा की ताई तागाक, कर्नाटक से भाजपा की देवोशीष सामंतराय और कांग्रेस के प्रवीण चक्रवर्ती तथा गुजरात से भाजपा के राजेश परमानंद शुक्ल ने भी शपथ ली। झारखंड से झारखंड मुक्ति मोर्चा के बैद्यनाथ राम और निर्दलीय सदस्य परिमल नथवानी ने भी राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण की। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने तेलंगाना, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना की प्रगति, गुणवत्ता और रखरखाव की समीक्षा की है। इन परियोजनाओं में तेलंगाना के लगभग 4,931 किलोमीटर, जम्मू कश्मीर के 2,035 किलोमीटर और लद्दाख के 804 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग शामिल हैं।
1: नई दिल्ली में समीक्षा बैठक के दौरान श्री गडकरी ने अधिकारियों और निर्माण एजेंसियों को निगरानी व्यवस्था मजबूत करने तथा सभी कार्यों को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। केंद्रीय मंत्री ने अधिकारियों और निर्माण एजेंसियों को निगरानी व्यवस्था मजबूत करने, काम समय पर पूरा करने तथा आधुनिक निर्माण तकनीकों और बेहतर तरीकों को अपनाने के निर्देश दिए। सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा भी इस समीक्षा बैठक में उपस्थित थे। समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे newzoneair ऐप पर भी उपलब्ध हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 से 29 जून तक सेशल्स की राजकीय यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री की सेशल्स की दूसरी यात्रा होगी। इससे पहले उन्होंने वर्ष 2015 में सेशल्स का दौरा किया था। विदेश मंत्रालय के अनुसार समारोह में भारतीय सशस्त्र बलों का एक दल और भारतीय नौसेना के 2 युद्धपोत भी भाग लेंगे। प्रधानमंत्री सेशल्स की राष्ट्रीय सभा को भी संबोधित करेंगे। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ. पैट्रिक हार्मनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा है कि तकनीक आधारित युद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा की परिभाषा बदल रहे हैं। उन्होंने कहा कि भविष्य की राष्ट्रीय सुरक्षा AI, क्वांटम तकनीक और जैव प्रौद्योगिकी तथा अंतरिक्ष क्षमताओं के मेल से तय होगी। नई दिल्ली में राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालय में वरिष्ठ अधिकारियों और प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे अधिकारियों को संबोधित करते हुए डॉ. सिंह ने कहा कि उभरती सुरक्षा चुनौतियों का सामना करने और देश के रणनीतिक हितों की रक्षा के लिए भारत को नई तकनीक में आगे रहना होगा। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि दुनिया में हथियारों के बढ़ते उपयोग, जोखिम लेने की प्रवृत्ति में वृद्धि और सोशल मीडिया युग के अनुकूल राजनीति देखने को मिल रही है। दक्षिण कोरिया में शांति और समृद्धि पर जेजू द्वीप में आयोजित सम्मेलन को संबोधित करते हुए डॉ. जयशंकर ने कहा कि अपनी विशिष्टताओं को मुखर करने की प्रवृत्ति अधिक है और क्षमताओं का उपयोग भी कम संकोच के साथ किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि COVID-19, आतंकवाद या चरम जलवायु घटनाओं के प्रभाव जैसी चुनौतियों का सामना करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग आवश्यक है।

0: कृषि और किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज उत्तर प्रदेश में बागवानी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए लखनऊ में एक क्लीन प्लांट सेंटर स्थापित करने की घोषणा की। इस केंद्र के माध्यम से किसानों को उच्च गुणवत्ता वाले और रोग मुक्त पौधों की सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी। इसमें बागवानी खेती का विस्तार होगा और किसानों की आय बढ़ाने में मदद मिलेगी। लखनऊ के योजना भवन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य की कृषि योजनाओं, केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन तथा ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की समीक्षा की। फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप ई के मुकाबले में कोराकाओ का मुकाबला आइवरी कोस्ट से होगा। इसी ग्रुप के एक अन्य मुकाबले में इक्वाडोर और जर्मनी आमने सामने होंगे। दोनों मुकाबले रात 1:30 बजे से खेले जाएंगे। इस बीच प्रतियोगिता में स्विट्जरलैंड, मोरक्को, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील, मेक्सिको और बोस्निया हर्जेगोविना ने अपने अपने मुकाबले जीते। मैनचेस्टर में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में बांग्लादेश ने भारत को 137 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक भारत ने तीसरे ओवर में बिना किसी नुकसान के 23 रन बना लिए हैं। राधा यादव ने सर्वाधिक 3 विकेट लिए, वहीं श्री चरणी ने 2 विकेट अपने नाम किए। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं सोनू सूद।
1: सेंसेक्स 109 अंक बढ़कर 77,100 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 34 अंकों की तेजी से 24,056 पर बंद हुआ। सेंसेक्स में आज के उच्चतम स्तर से 700 अंकों से अधिक की गिरावट दर्ज हुई, वहीं निफ्टी में ये गिरावट 200 अंक रही। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया डॉलर के मुकाबले 26 पैसे मजबूत होकर 94.40 रुपए प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता वैश्विक अर्थव्यवस्था को नई रफ्तार देगा। वेनेजुएला में भीषण भूकंप से मरने वालों की संख्या 164 हुई, राहत और बचाव कार्य जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शोक व्यक्त किया और बचाव तथा राहत कार्यों के लिए समर्थन की पेशकश की। उत्तर प्रदेश में राम मंदिर की दान राशि के कथित गबन मामले में SIT की प्रारंभिक रिपोर्ट के बाद प्राथमिकी दर्ज। सरकार ने 36 पृष्ठ वाले पासपोर्ट बनवाने या पुनः जारी करने का शुल्क 1 जुलाई से बढ़ाकर 2,500 रुपए किया। तत्काल पासपोर्ट का शुल्क 5,000 रुपए होगा। भारत बांग्लादेशी नागरिकों के लिए 28 जून से पर्यटक वीजा फिर से शुरू करेगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम सुभद्रा रामचंद्रन विद द न्यूज एट 9। The headlines. India-UK free trade agreement most comprehensive agreement so far, says Commerce and Industry Minister Piyush Goyal. Death toll rises to 164 after massive earthquakes hit Venezuela. Prime Minister Narendra Modi expresses condolences and offers support for rescue and relief operations. FIR registered in Ram Mandir donation embezzlement case after recommendation of Uttar Pradesh SIT's preliminary report. Fees for 36-page fresh passport or reissue hike to 2,500 rupees from 1st of July. Tatkal to cost 5,000 rupees. India to resume tourist visas for Bangladeshi nationals from 28th of June. Bangladesh set target of 137 runs against India in ICC Women's T20 World Cup at Manchester. And in FIFA World Cup, Curaçao to take on Ivory Coast in Group E match at Philadelphia tonight. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal has said India-UK Comprehensive Economic and Trade Agreement will act as force multiplier to support the global economy. Addressing the India Global Forum IGF UK India Week in London today, Mr. Goyal said Free Trade Agreement FTA with the United Kingdom is the most comprehensive agreement that India has entered into so far. The minister reached the UK on a 3-day visit to review the preparedness of both countries for the implementation of the India-UK Comprehensive Economic and Trade Agreement CETA, which will enter into force from July 15. Mr. Goyal added that the agreement will further integrate both countries into global value chains and open new avenues for economic cooperation and growth.
3: Partnership with UK is taking many more dimensions. So now we have a very highly strategic partnership, whether it comes to technology, investments, defense, and

0: दिन।
1: आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। गीतकार है राहत इंदौरी, संगीत अनु मलिक का है, आवाज कुमार सानू और संजीवनी की, और फिल्म का नाम है करीब।

0: पहचान।
1: कार्यक्रम के आखिर में आइए सुनते हैं जतिन ललित के संगीत निर्देशन में आनंद बख्शी का लिखा गीत। आवाज है कुमार सानू की और फिल्म का नाम है जब प्यार किसी से होता है।

फिल्म जब प्यार किसी से होता है, आवाज़ कुमार सानू की। और इस गीत के साथ ही चित्रपट संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। FM 100.2 MHz और न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर हम आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 9:30 हुए हैं। लीजिए पेश है आपका बेहद पसंदीदा कार्यक्रम ईमेल की गूंज। आज के इस कार्यक्रम का सफर आप तय करेंगे अपने रेडियो दोस्त मृदुल के साथ। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का पहला गीत। और इस गीत के लिए हमें ईमेल मिले हैं आप सभी श्रोताओं के। डोंडी लोहारा बालोद से आशा रानी जटोलिया, दिल्ली से रेशमा अंसारी, शकीला अंसारी और निशा, पाटन दुर्ग से बालकरण वर्मा, अंजनी ज्योति वर्मा, निधि और निखिल वर्मा, पलेरा टीकमगढ़ से हमें ईमेल भेजा है ब्रजेंद्र विश्वकर्मा और आशीष विश्वकर्मा ने, बीड शहर महाराष्ट्र से हमारे श्रोता है नंदकिशोर घटे, संगीता घटे, साक्षी घटे, जयश्री महत्रे, अंजलि करवा और बाला साहब करवा, महादेवपारा से ईमेल भेजने वाले श्रोता मीरा, सिमरन, योगेश कुमार राजवाड़े और उनके साथी, धाड़ी नांदुरा महाराष्ट्र से श्री कृष्ण बाठे, संदीप बाठे और अमूल्य बाठे, यवतमाल से हमें ईमेल भेजा है राहुल मनवर, सरला मनवर, विशाल, चेतन, रोशनी और प्रियांशी मनवर ने, बुड़गहन छत्तीसगढ़ से रामदुलारी प्रजापति, रामशरण, चंद्रेश कुमार, चंद्रकला और शशिकांता प्रजापति, राजकोट से प्रेमा रानी जाटव डोली और सुरेश, वीरमगाम गुजरात से प्रमिला राजसोनी और श्वेता राजसोनी, मोरबी से प्रमिला जेटली, दीपक और आशु जेटली का ईमेल भी हमें मिला है। ये श्रोता हमारी उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गवहाणकर, सरिता गवहाणकर, प्रिंस एकांश, अर्जुन गवहाणकर और टुकटुक। आप सभी श्रोताओं की पसंद पर पेश है कार्यक्रम का पहला गीत जो है लता मंगेशकर की आवाज़ में। फिल्म का नाम है जाने मन।

पेश है कार्यक्रम का अगला गीत, और इस गीत को सुनने के लिए हमें ईमेल भेजे हैं आप सभी श्रोताओं ने। चंडीगढ़ से सतीश अनेजा, विमला अनेजा, मुंगेसापुर से मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरुन निशा, शविस्ता मोहम्मद, नसीब पलक लुबना और यश मंसूरी, तखतपुर इंदिरा चौक से मिश्री लाल विश्वकर्मा, मीरा देवी, विशाल मानस और गंगा देवी विश्वकर्मा, अड़ाड़ नांदघाट से माखन वर्मा, चांदनी गोपी और राहुल वर्मा, पजौनिया जालौन से सत्येंद्र कुमार चंसौलिया, आदर्श सार्थक अलौकिक चंसौलिया। ये ईमेल हमें मिला है डुमराव से असमा अंसारी, अमना परवीन टुकटुक अंसारी, लड्डू अंसारी, वलीउल्ला अंसारी का, गाजियाबाद से सीमा गांधी, मनोहर लाल गांधी, डोंडीलोहरा बालोद से मास्टर कबीर डोम और राधिका डोम, धमतरी से रामचंद्र माखीजा, सविता माखीजा, स्वाति माखीजा, महेश कुमार कुकरेजा, संध्या कुकरेजा, माही पूजा चुटकी, शरद कुमार डोडवानी। श्रीरामपुर से हमें ईमेल भेजा है डी अशोक कुम्भार, अविका जीविका, सानू कुम्भार और अर्चना ने। पुनावले से अजय सोनवड़े, करिश्मा सोनवड़े, अविका और साइशा सोनवड़े का ईमेल भी हमें मिला है। कोका भिलाई से हमारे श्रोता है उत्तम सिंह जंगेल, मोरस जंगेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष और नंदिनी जंगेल, धमता सुखरी से अमित जंगेल, शकुन जंगेल, आरुषि, ओशिका, आदित्य और अंजलि जंगेल, दमदम एयरपोर्ट कोलकाता से बसंत कुमार सिन्हा,

रेखादेवी शॉ, अजय कुमार गुप्ता, रिम्मी तनुषी, अनविका तनुषी, पीहरा बाजार झुमरी तलैया गिरिडीह से अभय कुमार सनातनी, शिवानी, प्रियंका, गुड्डू, मुन्नी, जयप्रकाश, रिया, जिया, टूसी, आयुषी और अनिरुद्ध। आप सभी श्रोताओं की ईमेल पर आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, जो है लता मंगेशकर की आवाज़ में। फिल्म का नाम है गीता मेरा नाम।

0: राहुल, ये अपनी डायरी में बार बार 230, 600 क्या लिख रहे हो? कोई लकी नंबर है क्या?
1: लकी ही समझो रिया, ये वो जादुई नंबर है जो मेरे बिजनेस को रातों रात पूरे अंबिकापुर में हिट कर देगा।
0: अच्छा, वो कैसे?
1: अरे बाबा, ये आकाशवाणी अंबिकापुर की पहचान है। यहाँ विज्ञापन देने का मतलब है अंबिकापुर का हर घर, हर दुकान और हर चौक चौराहा सिर्फ मेरी दुकान का नाम सुनेगा।
0: ओ, समझ गई। यानी 230-600, पर इस पर कॉल कैसे लगेगा?
1: बहुत सिंपल है, अंबिकापुर का STD कोड लगाओ 07774 और मिला दो 230-600।
0: अरे वाह, 07774 230-600, ये तो सच में लकी नंबर है। तो फिर देर किस बात की? अभी पधारो आकाशवाणी कार्यालय और अपने व्यापार को दो नई उड़ान।
1: बिल्कुल, आकाशवाणी अंबिकापुर मेरे और आपके व्यापार की सफलता का सच्चा साथी।
2: श्रोताओं, आपने अपने रेडियो सेट पर इस वक्त ट्यून किया है आकाशवाणी अंबिकापुर और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम ईमेल की गूंज। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। और इस गीत के लिए हमें ईमेल मिले हैं आप सभी।

श्रोताओं के। गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसवीर जस्सी, सीता और गीता। उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज रिफाकत, मोहम्मद रिहान और समरीन परवीन। लक्षनपुर से विश्वनाथ साहू, पंकज साहू, तिरुपति साहू। उदयपुर से हमें ईमेल भेजा है रमेश नाचानी, भारती नाचानी और विनीत नाचानी ने। गिरिडीह झारखंड से मोहम्मद यासीन अंजान, सैमा नवाज, हसन नवाज, शरीफ नवाज और उनके साथी। अनारकली बाजार जगराओं से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गाव्या मल्होत्रा, सुचा सिंह पाठक और जयपाल यादव का ईमेल भी हमें मिला है। मिट्टू मुड़ा दुर्गा चौक रायगढ़ से हमारे श्रोता गेंदलाल श्रीवास, कौशल श्रीवास, कृष्ण कुमार यादव और गेंदू भाई। रायगढ़ से रोहित जयलक्ष्मी, पथरिया भरेवा से चंदूलाल सिंगरौल, नारायणी सिंगरौल, नोमेश सिंगरौल, नेहा और वान्या सिंगरौल का ईमेल भी हमें प्राप्त हुआ है। और जालंधर से हमारे श्रोता रोशन जहां, मन्नत जहां। सौराष्ट्र राजकोट से जगदीश गुजराती, प्रेमला गुजराती। उमरखेड़ से सिराज खान और आमिर खान। और आप सभी श्रोताओं की ईमेल पर आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, जो है अनुराधा पौडवाल और भूपेंद्र सिंह की आवाज़ में। फिल्म का नाम है दूरियां।

0: फैल सकेगा आपका काम और होगा आपका नाम ही नाम।
1: दशकों से घर घर में गूंजती आवाज के साथ जुड़ेगा आपका भी नाम।
0: दीजिए आकाशवाणी अंबिकापुर पर विज्ञापन और बनाइए अपनी पहुंच लाखों करोड़ों दिलों तक।
1: चाहे हो शुभकामना संदेश या हो आपके व्यापार का नाम,
0: उसे दें ऊंची उड़ान और बनाएं अपनी नई पहचान। करवाएं विज्ञापन मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी अंबिकापुर से। संपर्क करें 0777423060। नंबर एक बार फिर 0777423060।
2: ग्राम पंचायत खोंदला उदयपुर सरगुजा से जीवधन सिंह पैकरा, घुरनी पैकरा, करिश्मा पैकरा, सुमार साहेब, कलेश्वर सिंह, सुखराम पैकरा, हीरामनी और ऐश्वर्या पैकरा। पटना बिहार से वसीम अकरम, सालेहा खातून, गुड़िया खातून। दिल्ली से लाल बाबू, दीवाना, उमा राज और दिव्या भारती। जालंधर से संदीप कौर, प्रभा कौर और मेरठ से राधिका कौर, आरती कौर। डुमराव से वली उल्ला अंसारी। रघुनाथपुरा, श्रीगंगानगर, राजस्थान से हमें ईमेल भेजा है लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हिना, हर्षित और खुशी गोस्वामी ने। इंदिरा विहार, दिल्ली से बेबी अंसारी, निशा परवीन, डब्लू अंसारी, उमरखेड़ से अजीता मदारी और प्रमिला मदारी। पाकुड़, झारखंड से हमारे श्रोता उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, किसु तासु, अर्णवानंद और सत्यमानंद। बोड़ागाछी, पश्चिम बंगाल से मुन्ना भगत और गुड्डी भगत का ईमेल भी मिला है हमें। मछली गोदाम, रायगढ़ से पुरुषोत्तम सिंह, उषा सिंह, ऋषभ सिंह, प्रियंका, पूजा, लीलू और रितु सिंह। सहारनपुर से सोनाली नारंग, आशा नारंग और सुरेश नारंग। मिलाईगढ़ से रोशन लाल देवांगन, कौशल्या देवांगन और हेमलता डिंपल देवांगन का ईमेल हमें मिला है। किरण शर्मा, नितिन, मयंक शर्मा, नरेंद्र शर्मा, आप हैं कलानपुर से। आप सभी श्रोताओं के ईमेल पर आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, जो है लता मंगेशकर की आवाज़ में। फिल्म का नाम है तुम्हारे लिए।

लीजिए श्रोताओं, आप पेश है कार्यक्रम का आखिरी गीत। इस गीत के हमें ईमेल मिले आप सभी श्रोताओं के, बोर्ड सरा नैला से प्रमोद कुमार साहू, बीमा वैभवी, विनोद विभूति, अंशु बबली और प्रियांशु साहू, देवीगंज रोड अंबिकापुर से राजकुमार नेपानी, संगीता नेपानी, आकाश, आयुषी, सागर, यशी, हनी, पूजा, सीता और उनके परिवार के सभी सदस्य, डुमराव बिहार से अस्मा परवीन, दुखना रानी, सदफ, आरजू, वली भाई अंसारी, मुंबई से इकबाल मोगा, अफसरी मोगा और अहमद मोगा, लक्कड़ बाजार खंडवा से मोहम्मद रफीक पवार, बेंजीर कौसर, मोहम्मद साकी पवार, अलमास बानो पावर पवार, छोटू शंकर लाल गंगराड़े, साफिया अरहान खोकर, जलगांव जंक्शन से दिनेश काले, वंदना काले, प्रोफेसर वसुधा वज्रसेन, आदेश कुमार काले, कुरावली से हमें ईमेल भेजा है राशिद हुसैन अंसारी, नसरीन अंसारी, नौरीन आसना और मोहम्मद कैफ अंसारी ने, परभणी महाराष्ट्र से रूपेश संगई, महेश संगई, प्रज्ञेश संगई और प्रितेश संगई, और बराड़ा हरियाणा से रवि कुमार, राहुल, रणजीत कौर, मन्नत, गुरकीरत, राहुल और गुरशप सिंह राहुल का ईमेल भी हमें मिला है। और ये श्रोता हमारे हैं अकोला से रमेश कटनकर, वैशाली कटनकर, नसीम बेगम, कमरला ठेकेदार और उनके साथ ही। आप सभी श्रोताओं की पसंद पर पेश कार्यक्रम का यह आखिरी गीत जो है फिल्म त्रिशूल से आवाज़ है लता मंगेशकर, किशोर कुमार और यशुदास की।

0: लता मंगेशकर, किशोर कुमार और यशुदास के गए फिल्म त्रिशूल के इस गीत के साथ ही आज का ईमेल की गूंज कार्यक्रम समाप्त करने की अपनी रेडियो दोस्त मृदुल को आज्ञा दीजिए।
1: बस खा दे तेरा दिल जो बरसों से।
0: FM 100.2 मेगाहर्ट्ज़ और न्यूज ऑन AIR ऐप पर हम आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 10 बजे हैं। प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम सूर्यामणि। आज इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे पंडित मल्लिकार्जुन मंसूर का गायन राग विभास।

सूर्यामिनी कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे पंडित मल्लिकार्जुन मंसूर का गाया राग विभास। इसी के साथ शास्त्रीय संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। मीडियम वेव 238.09 मीटर, FM 100.2 मेगाहर्ट्ज और न्यूज ऑन AIR ऐप पर हम आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 10:30 हुए हैं। लीजिए पेश है फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मन भावन। सुनते हैं कार्यक्रम का पहला गीत और इस गीत के लिए ख्वाहिश की है हमारे श्रोताओं ने। पुणे से पंकज वाड़ोदे, आर्या वाड़ोदे, बीटी वाड़ोदे, चंद्रप्रभा वाड़ोदे। मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, जयवीर सिंह ठाकुर, डॉक्टर अमनदीप, अनिल शर्मा। कालका से शुभचंद्र बजाज, बिट्टा बजाज। गडिया मौजी उस्तू से प्रदीप कुमार मंडल, आशीष मंडल, कुंदन मंडल, करीना कुमारी, पूजा कुमारी, आरती कुमारी और सुनीता देवी। गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर विरक, जयतेक विरक और मीका विरक। आप सभी श्रोताओं की पसंद पर पेश है कार्यक्रम का पहला गीत फिल्म धर्मात्मा से, आवाज़ कंचन और मुकेश की।

औरंगाबाद से राजेश साबले पाटिल, शीतल राजेश, राजदीप राजेश और राशि राजेश सेनावत। मध्य प्रदेश से दिलीप मालाकार, योगेश मालाकार, सुनीता मालाकार और मुस्कान मालाकार। धुरबंधा भाटापारा से प्रमोद साहू, देव कुमार साहू, नेत्राम साहू और भूपेंद्र साहू। पथरिया भरेवा से चंदूलाल सिंगरौल, नारायणी सिंगरौल, नोमेश सिंगरौल, नेहा और वान्या सिंगरौल। भाटापारा दतरेंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक वर्मा, जावेंद्र कुमार वर्मा। महादेवघाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारनी ठाकुर, सूरज ठाकुर, सुजला ठाकुर, ज्योति और रियांश ठाकुर की पसंद पर। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, जो है मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। फिल्म का नाम है हवस।

लीजिए अब सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। इस गीत को सुनना चाहा है आप सबने। देवीगंज रोड अंबिकापुर से राजकुमार नेवानी, संगीता नेवानी, आकाश, आयुषी, सागर, यशी, हनी, पूजा, सीता और उनके परिवार के सभी सदस्य। राजनांदगांव सोमनी से नारायण लाल साहू, कुलवंतीन साहू, देवेंद्र साहू, नेहा देवी, मिलिंद कुमार, रजनी देवी और प्रणय साहू, रुद्रांश प्रताप साहू। ग्राम लोहारी खंडवा से राजेश कुमार धंजे, राहुल धंजे, विशाल धंजे, शीला धंजे और गायत्री धंजे। मानपुर से विजय वैद, रानी वैद, महिमा वैद और नीतू वैद। जतुका किशनपुर से आलम दिलकश, शबाना नाज, रिजवान राही, इमरान राजा, आलम शेख, शबाना आलम, विजय कुमार विजय और नवागढ़ कटई से नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांत वर्मा, सीमा शारदा, दामिनी वर्मा। बेमेतरा से सुरेश कुमार सारथी, कमलकांत सारथी, वीरेंद्र और ब्रिजकांत सारथी। आप सभी श्रोताओं की पसंद पर सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत जो है फिल्म हाथी मेरे साथी से। आवाज़ है किशोर कुमार और लता मंगेशकर की।

श्रोताओं, इस वक्त आपने अपने रेडियो सेट पर ट्यून किया है आकाशवाणी अंबिकापुर और आप सुन रहे हैं फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मन भावन। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत और इस गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद हैं आप सब। डाबर तालाब लोनी से रजा अहमद, आरिश हुसैन, ईशान हुसैन, मरियम बुशरा और उनके साथी बेलर गांव सिहावा पर्वत से मिथिलेश देवांगन, मधु देवांगन, हिमांशु और अंकित देवांगन, बेल्डी से राजेश सोनी, कंचन सोनी, गायत्री ढोमने, वैष्णवी ढोमने, चंचल ढोमने, अर्जुन गवनेकर और धीरज सवा सेरे। और ये श्रोता हमारे हैं लेवई से गुलाबदास मानिकपुरी, लच्छनपुर से विश्वनाथ साहू, रिंगनी से दिनेश वर्मा, भिलाई से मुकेश शर्मा और दतरंगी से भागवत वर्मा। आप सभी श्रोताओं की पसंद पर सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत जो है किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ में। फिल्म का नाम है देवता।

कार्यक्रम के आखिर में आइए सुनते हैं ये गीत, सुनना चाहा है आप सबने। मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गंवाड़कर, सरिता गंवाड़कर, प्रिंस एकांश गंवाड़कर, बदलापुर मुंबई से सिद्धांत गंवाड़कर और प्रणीता गंवाड़कर, नागपुर से वैशाली शैलेश गंवाड़कर, श्वेता सुमित ध्वनि गंवाड़कर और टुकटुक गंवाड़कर, बगबुड़ुआ पथरिया से नरेन नेताम, कुसुम नेताम, प्रोनिका प्रोनामिका और उत्कर्ष नेताम। ये श्रोता हमारे हैं इंदौर से लाल फतेह चंदानी, लीला फतेह चंदानी, संगीता, सुनीता, पिंकेश, साक्षी, मनन और तानिया। इंदौर से ही स्वाति प्रयाग चौधरी, मालती चौधरी, भाऊ मराठा, गणेश दादा मराठा, कार्तिक भाऊ मराठा, परी संजना मराठा और ललिता नारायण खर्चे। डोंडीलोहरा बालू से आशा रानी जटोलिया, दिल्ली से रेशमा अंसारी, शकीला अंसारी और निशा, देवरी भाटापारा से के आर साहू, आकाश, कमलेश, गंडूलाल रजक और मुरली क्षत्रिय, पैठड़ से सुरेश जाधव, अनीता जाधव, आरती पूजा प्रसाद जाधव, सोनल जाधव, बेबी सिया जाधव, और जालना शहर से सोमनाथ जाधव, गीता जाधव, ओम जाधव, सुभाष चंदन एकनाथ और संगीता जाधव। ये श्रोता हमारे हैं चकुंटी बुलंदर शहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन अब्बासी, शाहनवाज अब्बासी, सरफराज अब्बासी, फरदीन अब्बासी, सुहान अब्बासी, अरजान अब्बासी और अबान अरबासी। यमुनानगर हरियाणा से विनय मोहन खार, वन मीनाक्षी प्लोमा और ईशानी, दुर्गा कॉलोनी हांसी से राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी, सुभाष योगी और बब्बू डब्बू, चंडीगढ़ से सतीश अनेजा और विमला अनेजा, तेलंगाना निजामाबाद से शेख अल्लाबख्श, बेगम राबिया शेख और उनके साथी, गांधीनगर गुजरात से सुरेश राठौर, मंजुला राठौर और विशाल राठौर, बटिंडा रोड मंडी डबवाली से राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग, मोहित नारंग और तानिया नारंग, और मुजफ्फरपुर बिहार से राजू कुमार, बिट्टू, अर्चना, कल्पना, मुन्नी, चांदनी, नंदनी और उनके सभी साथी।

स्वरूप आनंद सरजाल, आप हैं जोड़ा पीपल अंबिकापुर से, बाबा कुटी रायगढ़ से, शिव कुमार चौहान, संक्रांति चौहान, राजेश्वरी, उत्कर्ष, रितेश कुमार चौहान, आप सभी श्रोताओं ने सुनना चाहा है किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज़ में फिल्म प्रेम नगर का ये गीत।

0: किशोर कुमार, आशा भोसले और साथियों के गाए फिल्म प्रेमनगर के इस गीत के साथ ही फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मन भावन समाप्त हुआ। मीडियम वेव पर आकाशवाणी अंबिकापुर है, रात्रि के 11 बजे हैं, समाचार आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और ब्रिटेन के बीच हुआ मुक्त व्यापार समझौता अब तक भारत द्वारा किए गए सबसे व्यापक समझौतों में से एक है। लंदन में इंडिया ग्लोबल फोरम के यूके इंडिया वीक कार्यक्रम में श्री गोयल ने कहा कि समझौते से दोनों देशों के बीच करीब 48 अरब पाउंड के वार्षिक व्यापार को और बढ़ावा मिलेगा।
2: यूनाइटेड किंगडम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट,
3: भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता हमारे उद्योगों को नई दिशा दे रहा है। दोनों देशों के उद्योग वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में साथ काम करेंगे। ये समझौता दोनों अर्थव्यवस्थाओं को मजबूती प्रदान करेगा। भारत और ब्रिटेन मिलकर वैश्विक स्तर पर नई संभावनाएं पैदा करेंगे।
2: एंड टुगेदर बिकमिंग अ फोर्स मल्टीप्लायर।
1: श्री गोयल 3 दिन की ब्रिटेन यात्रा पर हैं। इस दौरान वे 15 जुलाई से लागू होने वाले भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते की तैयारियों की समीक्षा कर रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज कहा कि आत्मनिर्भर देश संकट काल में आर्थिक स्थिरता बनाए रखने और विकास प्राथमिकताएं पूरी करने में अधिक सक्षम होता है। राष्ट्रपति ने सैन्य इंजीनियरिंग सेवा के 2023 और 2024 बैच के प्रशिक्षु अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि आत्मनिर्भरता राष्ट्रों के लिए रणनीतिक आवश्यकता बन गई है। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ये स्पष्ट हो गया कि स्वदेशी रक्षा क्षमताएं, उन्नत प्रौद्योगिकी और मजबूत घरेलू औद्योगिक आधार किसी राष्ट्र की परिचालन तत्परता और रणनीतिक प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए अति आवश्यक हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि सैन्य इंजीनियरिंग सेवा देश के रक्षा ढांचे की रीढ़ है। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने आज कहा कि देश में आए 2 शक्तिशाली भूकंपों में 164 लोगों की मौत हो गई है और 971 अन्य घायल हो गए हैं। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 7.2 और 7.5 मापी गई है। राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने भूकंप के बाद भारत की ओर से व्यक्त की गई एकजुटता की सराहना की है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा व्यक्त की गई संवेदनाओं पर आभार जताया। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन ने आज संसद भवन में राज्यसभा के 10 नवनिर्वाचित और पुनर्निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई। शपथ लेने वालों में आंध्र प्रदेश से तेलुगु देशम पार्टी के सना सतीश बाबू, विजय चिंटकायाला और बाश्यम राम कृष्ण तथा जनसेना पार्टी के लिंगम नेनी रमेश शामिल हैं। केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज नई दिल्ली में आपातकाल के 50 वर्ष पूरे होने पर वर्ष भर आयोजित कार्यक्रमों के समापन समारोह में भाग लिया। ये कार्यक्रम उस दमनकारी दौर को याद करने और लोकतांत्रिक मूल्यों को सुदृढ़ करने के लिए आयोजित गतिविधियों की श्रृंखला का समापन समारोह था। उन्होंने कहा कि ये आयोजन इस बात की याद दिलाता है कि अहंकार और अत्याचार क्षणिक होते हैं और आखिरकार उनका अंत होता ही है।